आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। आप खुद को नहीं बदल सकते, मगर खुद को बदलकर औरों में बदलाव जरूर ला सकते हैं।

परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई 2026 सुबह के 5:53 और 29 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

10:30 पर आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 का समय रहेगा कार्यक्रम तस्वीर का। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 1:10 का समय होगा प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का।

3:10 का समय रहेगा। AIR@90 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। शाम 5:10 का समय रहेगा गाते गुनगुनाते का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो चला है 6:12 और ठीक 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी अर्पण, जिसमें आज आप

मैं पूनम के साथ, नमस्कार, सुप्रभात। तो एक शुभ प्रभात जिसमें कि हम पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन वो जो अच्छा बीतना है ना, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और वो ये समझना कि विनम्रता हमारे पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। जानते हैं, संत तुकाराम ने भी कहा कि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा है। तो अगर विनम्रता आ जाए तो सोचिए कि पूरा दिन अच्छा इसीलिए बीतेगा क्योंकि आप हर एक से जब पोलाइटली या अच्छी तरह या ह्यूमिलिटी के साथ बात करेंगे, विनम्रता के साथ बात करेंगे, तो पूरा दिन सब आपको बहुत आदर और सम्मान से देखेंगे। आपका हर काम पूरा हो जाएगा, आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा और आप मुस्कुराते हुए ही लौट कर आएंगे। तो ये ताकत है विनम्रता की। अब इस विनम्रता को हम अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं, ये तो हमें ही समझना पड़ेगा, या कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है ये भी हम ही देखेंगे। पर अगर अपनाना आ जाए तो जीवन बहुत सारा बहुत बदल सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हम सालों से चाह रहे हो जाए लेकिन हुआ नहीं। एक हफ्ते भी अगर आप ये अभ्यास कर लेंगे ना, तो वो बदलाव आप अपने अंदर स्वयं महसूस करेंगे, हमारे कहने से नहीं बल्कि अपने आप करने से।

जी हाँ, तो बात हो रही थी विनम्रता की कि कैसे ये जो गर्व भरा मस्तक है ना हमारा, जिसके लिए हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, हमें लगता है कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, और ऐसा सोचकर हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी, कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो मैं हमारा रह जाता है ना, ये अहंकार ये कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम हमेशा इसी एक भ्रम में जीते रहते हैं कि सब कुछ हमारे ही आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूमे। तो अगर ऐसा हमारा भाव या ऐसी मनोस्थिति सुबह सुबह ही होगी तो फिर पूरा दिन तो ऐसे ही बीतेगा। और सच कहें कि आध्यात्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो विनम्रता केवल झुकना या कायरता नहीं है, बल्कि अहंकार का अभाव है, परमेश्वर के प्रति समर्पण है। और ये स्वीकार करना है कि हम सिर्फ एक छोटी सी रचना है, जो सर्वोच्च शक्ति है वो कहीं ऊपर है, कहीं बड़ी है। और तब ऐसा समझने से हमारे अंदर जो अहंकार है या मैं और मेरा का भाव है वो धीरे धीरे हटने लगता है। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस, प्रयास, अभ्यास हर रोज करने की जरूरत होती है। हर सुबह अपने आप को ये याद दिलाना होता है।

देखिए दोनों चीजें हैं, जब हम विनम्र होते हैं तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना आसान हो जाता है, और जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं तो विनम्रता अपने आप आ जाती है। इसीलिए सुबह का समय ऐसा माना जाता है जिसमें कि हम अपने आप को विनम्र बनाने के लिए, इस बात के लिए प्रेजेंट हों, इस बात को समझें, और जब समझ लेते हैं तो घमंड अपने आप खत्म हो जाता है। विनम्रता बढ़ती है तो ज्ञान शक्ति उपलब्धियां ये हमारे पास होती हैं, लेकिन इनके लिए गर्व खत्म हो जाता है, हम अपनी सीमाओं को पहचानने लगते हैं। और वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही शक्तिशाली है जो विनम्र है। विनम्र होने से दूसरा एक फायदा ये होता है कि हम दूसरों की मदद भी करने लगते हैं, हम दूसरों को प्राथमिकता भी देने लगते हैं। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन इतनी ज़रूरी है कि जीवन की दिशा और हमारा सोचने का तरीका, नज़रिया सब बदल देती है, और तब हम जीवन के मर्म को समझ भी पाते हैं, उसे भरपूर तरीके से जी भी पाते हैं और खुश भी रह पाते हैं। अब बने कैसे ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बहुत ही सुंदर सा शब्द आप सुनिए।

जहां तो बात हो रही थी विनम्रता की कि कैसे हम अपने आप को ऐसा विनम्र बना सकें कि सब चीज़ें आसान हो जाएं और हमारा जो स्वभाव है उसमें भी बदलाव आ जाए और उससे हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएं, बेशक वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए हो, यानी ईश्वर परमात्मा परमेश्वर से हो, या फिर

अपने आप से या फिर दूसरों से। जानते हैं, इसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है, कि तृणापि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णु न अमानि न मानदेन कीर्तने सदाहरि। यानी ये एक मूल मंत्र है जो हमें विनम्र बनाता है। इसका अर्थ है कि तृण से भी ज्यादा अधिक विनम्र होना, तृण से भी यानी घास से भी ज्यादा अधिक विनम्र होना, क्योंकि घास को जब पैरों से रौंदा जाता है तो भी वो विरोध नहीं करती, ना चिल्लाती है, ना पलटवार करती है। तो अपने आप को कम मानना लेकिन दूसरों को ज्यादा सम्मान देना, ये कोई हमारी आत्मसम्मान का अभाव नहीं है, हीनता नहीं है, बल्कि हमारे मन की कोमलता है, और ये कोमलता ही सबको हमारे प्रति आकर्षित करती है। वृक्ष के समान सहनशील रहना। देखिए, वृक्ष कटता है फिर भी छाया देता है, सूख जाता है फिर भी वो लकड़ी देता है, जब वो होता है तो भी उससे फल मिलते हैं। कोई पत्थर मारे, पानी दे, तो भी वो अपने आप को बदलता नहीं। तो ऐसे ही निंदा, अपमान, उपेक्षा, ये सब कुछ होता रहे लेकिन फिर भी अगर सहनशीलता बढ़ जाए तो जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता। अपने सम्मान के लिए हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन ये अहंकार हो जाता है कई बार। तो वो अहंकार हटाकर हम जब दूसरों को सम्मान देना सीख जाते हैं तो ये भी हमें पवित्र करता है और अच्छा बनाता है। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन हम शायद उन्हें ढूंढने में समय लगा रहे हैं। पर सुबह का समय इसे ढूंढने में बहुत आसानी से मिल जाता है और हम आसानी से इस बात को समझ भी सकते हैं।

जी हाँ, जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं सब कुछ हमारे पास है, हमारे अंदर है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर समझने की ज़रूरत होती है, और सुबह का समय इसी के लिए है। अब बात हो रही थी विनम्रता की, तो विनम्रता भी तो हमारे अंदर ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा और हमारे दो हाथ और दो पैर अलग से लगा देगा और कहेगा कि अब से आप विनम्र हैं। तो जब ऐसा होता नहीं तो अंदर खोजने की ज़रूरत है, और खोजेंगे तो ये पाएंगे कि हम अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं करते, इस वजह से हम विनम्र नहीं हो पाते। हम कई बार सिर्फ बोलते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं। तो विनम्र होने का एक ये भी तरीका है कि आप दूसरों को सुने, और सम्मान दिखाने का, उन्हें समझने का ये सबसे अच्छा तरीका भी है। विनम्र होने का एक आसान सा, सबसे आसान सा तरीका यह है कि धन्यवाद कहना सीखें, दूसरों की मदद के लिए कृतज्ञ होना सीखें। एक और तरीका हो सकता है कि आप अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की बजाय इसमें योगदान देने वालों की सराहना करें। तो हम जब ये सोचते हैं कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, हमें ये डिग्री मिल गई, हमारे साथ ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमने पूरा बिजनेस बना दिया, लेकिन जो डिग्री मिली उसमें माता पिता का हाथ था, जो बिजनेस बड़ा कर लिया उसमें आपकी पूरी टीम का हाथ था, सब लोग जो आपके साथ जुड़े रहे, तो बस उन्हें सम्मान देना, सबके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना ही हमें विनम्र बनाता है। और हाँ, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें कि हर व्यक्ति से, हर चीज से, हर वस्तु से, प्रकृति से कुछ न कुछ नया सीखा जा सकता है। तो ये भी विनम्रता की ओर जाने का एक कदम हो सकता है। और अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से पहचाने, क्योंकि जब तक आईना नहीं देखेंगे, खुद को पहचानेंगे नहीं, तो बदलाव कहां से आएगा। तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम उनके बारे में सचेत नहीं होते, समझते नहीं, जानते नहीं, और इसीलिए अपने आप को बदलने की जो

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। और आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसंबंधं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ

0: अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशतिः परगणा मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिका प्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः, परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः, अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने द्वादशवादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः, 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
2: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

0: इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, 2 ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and 1 each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. Most of the positions in the cabinet are likely to be given to familiar faces from BJP and JDU. However, a few new faces may also be included. From JDU, the name of Nishant Kumar is being discussed. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North 24 Parganas district of West Bengal. According to reports, miscreants on motorbikes opened indiscriminate fire at his car in Doharia last night. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Bera, also sustained multiple bullet injuries and has been shifted to Kolkata Hospital in critical condition. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan yesterday evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The President said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. Yesterday, India and Vietnam

7:10 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात यानी सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक शुरुआत, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जो कल था वो बीत गया, जो आज है वो अपना है, तो बाकी सब सपना है। इसी बात पर मुस्कुराइए और इस प्यारे से सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर अभी तक आप जागे नहीं हैं तो जगाने के लिए एक प्यारा सा गाना चलेगा ना, तो सुना दें आपको। फिल्म हिमालय की गोद से ये गाना है और इस गाने के साथ मैं हूँ पूनम आपके साथ में। स्वागत आप सभी का दिल से। इस गाने को एंजॉय कीजिए और जल्दी से उड़ जाइए।

जी हाँ, तो अगर कोई ऐसे जगह है ना तो अपने आप जागने का मन कर जाए, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी जगा रहा तो कोई बात नहीं, अलार्म तो है ना, वो तो आपको जगा ही रहा है, उसे स्नूज कर करके क्यों आप बंद कर देते हैं। देखिए, सुबह की जो पहली किरणें जब खिड़की से कमरे में दाखिल होती हैं तो एक नया पन्ना हमारे सामने होता है, कोरा, शांत और संभावनाओं से भरा। तो इसे सजाना हमारा ही काम है ना, सजाएं सकारात्मक सोच से, एक प्याली चाय से और थोड़ी सी मुस्कान के साथ, बस इतना ही काफ़ी है। और ये सब कुछ लेकर सूर्य देवता सुबह सुबह हमारे पास आ ही जाते हैं। आज आ गए थे 5:36 के आसपास और जाएंगे शाम को 7 के आसपास। मौसम खूबसूरत है, अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 39 के आसपास है और न्यूनतम 25 के आसपास रहने का अनुमान है आज। तो ये जो अनुमान है ये हमने इसलिए बताया कि सुबह सुबह की जो आबोहवा होती है, मौसम होता है, वो पूरे दिन के मूड को तय करता है। इस समय मूड आपका अच्छा है क्योंकि आबोहवा अच्छी है, बाहर निकल कर देखिए सब कुछ अच्छा अच्छा आपको लगेगा। और साथ ही साथ अगर संगीत भी हो तो बात ही क्या, तो एक और प्यारा सा मीठा सा गाना, बहुत ही पुराना, शायद आपने कम ही सुना हो या फिर उसे सुने हो गया होगा ज़माना, आपको सुनाते हैं फिल्म अनुपमा से ये गीत।

जी हाँ, सुबह सुबह सूर्य देवता तो आ ही जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो सब आना शुरू हो उससे पहले आप अपने आप से तो मिल लीजिए। और अपने आप से मिलने के लिए हम आपसे कहते हैं कि सुबह सुबह आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, या कुछ भी ऐसा जो आपको हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे। पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, योग है चित्तवृत्ति निरोधा, के योग केवल शरीर को मोड़ने या सांसों को रोकने की विधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, और ये कला सुबह सुबह ही सीख लेनी चाहिए। सुबह के समय किया गया योग और व्यायाम आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, पूरा दिन आपकी ऊर्जा को संचालित रखता है। तो हम आपको बताते हैं बहुत सारे आसनों के बारे में, जैसे भुजंगासन के बारे में आपको बताया, वज्रासन के बारे में बताया। इनके साथ साथ कुछ प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है या कपालभाति है। ये हमारी जो ब्रीदिंग है यानी श्वास क्रिया है उसको बेहतर बनाती है, हमें क्लैरिटी देती है, हमें मानसिक स्पष्टता देती है और शरीर को अंदर से स्वस्थ करती है। तो अगर समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट ये प्राणायाम आप कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं तो ब्रिस्क वॉक या सीढ़ी चढ़ना भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो सुबह सुबह वॉक करना भी अच्छा है। देखिए, जो भी समय आप अपने शरीर को देंगे ना सुबह सुबह, वही समय जो है वो आपको एक अच्छा हेल्दी जीवन देगा। इसीलिए अपने आप को सुबह सुबह समय ज़रूर दिया कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से दें, पर ये है बहुत ज़रूरी। और ऐसा भी तो है ना कि हमारा जो शरीर है वो हमें बहुत कुछ कह रहा होता है, हम उसे सुनते नहीं हैं। अब जब आप योग करते हैं या सुबह सुबह उसको थोड़ा सा समय देते हैं तो वो भी खुश हो जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो शायद वो भी ऐसा ही कुछ सोचता है जैसे कि इस गाने में है।

देखिए इतना प्यारा गाना है, वैसे मेरे पास बातें भी बहुत सारी हैं करने के लिए, ये बताने के लिए कि और क्या क्या सुबह आप कर सकते हैं, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद मेरे मन में आया कि अगर हमें इस बात का जवाब देना होता कि अगर हमारी बॉडी हमसे कहती कि पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले झूठा ही सही, तो हम क्या कहते, तो उसी का जवाब शायद ये होता। तो चलिए इसे सुनते हैं।

तो अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। पूनम चलती है, आप कहीं नहीं जाइएगा, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, सुप्रभात। आज की ये सुबह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के साहस, संकल्प और सैन्य शक्ति को नमन करने का अवसर भी है। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। वे अभियान जिसने दुनिया को भारतीय सेना के अदम्य साहस, सटीक रणनीति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिचय कराया।

0: कि देश की ओर उठने वाली हर चुनौती का जवाब भारत पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ देना चाहता है। इसी गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार वैष्णवी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज योर ओन मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज 7th ऑफ मे। इट्स एक्सट्रीमली स्पेशल फॉर मल्टीपल रीजंस, the first anniversary of Operation Sindoor or multiple things that have been happening in India. And we'll be talking about who has taken birth on this particular day and who left for their heavenly abode on this particular day and a lot more. So let's begin our program with the news headlines. Defence Minister Rajnath Singh and Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will grace the second edition of Joint Commanders Conference in Jaipur today. The two-day conference on the theme Military Capability in New Domains assumes significance as it coincides with the first anniversary of Operation Sindoor. The Defence Ministry said that the conference will provide a pivotal forum to evaluate the challenges in emerging domains of cyber, space and cognitive warfare and chart a roadmap for capability development for resilient and future-ready force with a decisive edge. The conference will also feature a demonstration of futuristic applications developed in-house and release of new doctrines pertaining to future warfare concepts and operational strategies.
0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।
1: And now let's move towards a very heart-touching news story. The Ministry of Health and Family Welfare has highlighted a remarkable case of multi-organ donation at Command Hospital Chandi Mandir in Haryana, where a family of a brain-stem dead woman saved 4 lives through organ donation. The Health Ministry said that the 41-year-old woman, wife of a serving Indian Army colonel, was declared brain-stem dead on 2nd of May following a severe brain hemorrhage. In a courageous decision amid personal grief, her husband and 2 daughters consented to donate her organs, including the heart, kidneys, liver and pancreas, enabling life-saving transplants for 4 critically ill patients, including a 14-year-old boy. And this is a wonderful case, and this is an inspiration to multiple more people. And we also have another news as part of our series People's Padma on Akashwani. In our upcoming episode, we speak to Shiv Shankari, an eminent writer. She'll be honored with the prestigious Padma Shri.
2: When I heard the news, the first reaction was gratitude. Gratitude to God, gratitude to my parents. I was a Sanskrit student, I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. This, my becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals. There is no writer's block. If my thoughts are ready, I'm ready to write. If the thoughts are not ready, however much you try, that quality will not be there. For me, there is no lucky pen, no lucky sari, no lucky table. I'm not superstitious at all.
1: To listen to this conversation, tune in to 100.1 MHz Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
0: तन्वी, कुछ खेल खबरों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
0: आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000 से 23,000 रुपये से बढ़ाकर अब प्रति माह 38,100 रुपए हो गया है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपए से बढ़ाकर 35,420 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
1: Let's move towards Chennai. The Madras High Court has said that engineering degrees obtained from deemed to be universities in period without AICTE approval are not valid. A division bench of Justice S.M. Subramaniam and Justice K. Surendra passed the order on a review application moved by the Tamil Nadu Transport Corporation seeking review of an order passed by the court on 25th of June last year. The issue pertains to pleas moved by three employees of the corporation seeking to include their names in the seniority list of assistant engineers taking into consideration their BE degrees.
0: महाराष्ट्र के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में जल परिवहन सेवाओं के लिए एकीकृत ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को जल्द शुरू किया जाएगा। श्री राणे ने कहा कि इस पहल से टिकट के लिए लगने वाली लंबी कतारें खत्म होगी, प्रक्रियाएं तेज होंगी और बढ़ती यात्री मांग के बीच पारदर्शिता में भी सुधार आएगा। वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि नगर निगमों और नगर परिषदों में शामिल किए गए गांवों में पारंपरिक 7x12 भूमि अभिलेखों की जगह अब प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों के निवासियों को लाभ पहुंचाना और भूमि दस्तावेजों को शहरी व्यवस्था के अनुरूप बनाना है।
1: And about Bengaluru, a month after towing for illegal parking resumed, Bengaluru Traffic Police has removed nearly 600 vehicles, mostly cars, bringing some relief to congestion across key city roads. The drive is currently active in Central, West and North divisions with 6 tow trucks and authorities plan to expand operations to more areas soon. Backed by the Greater Bengaluru Authority, each towing unit operates with a small crew under police supervision. Vision ensuring coordinated enforcement. Officials said the strategy is flexible with tow trucks deployed based on real-time congestion. Focus areas include busy CBD stretches and major corridors like the Outer Ring Road where wrongly parked four-wheelers frequently disrupt traffic flow.
0: वहीं कोलकाता की ओर रुख करते हैं। राज्य के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी से जुड़े पुलिस कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को तुरंत उनकी मूल सरकारी जिम्मेदारियों पर वापस भेजने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डीआईजी द्वारा जारी ये

0: आदेश राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और विशेष इकाइयों जैसे सीआईडी, एसटीएफ और विजिलेंस कमीशन को भेजा गया है.
1: And about Hyderabad, a study by researchers at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology found that two snake species, the spectacled cobra and the Indian rat snake, accounted for 76% of all rescues across 232 identified hotspots in the Hyderabad metropolitan region. The study also revealed that 54% of recorded rescues involved venomous species, and these snakes appear to be particularly well adapted to densely populated urban environments, highlighting their ecological flexibility. These findings contribute significantly to understanding snake ecology in densely populated areas and help predict future human-snake interactions. So these were the updates from six metro cities.
0: और अब बात आज के मौसम की. राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़कने की संभावना है. शहर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और बात करें कोलकाता की, तो आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बिजली कड़कने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
1: And Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 27 degrees and maximum will be around 37 degrees. Bangalore is also expected to have thunderstorm accompanied with lightning or gusty winds of 30 to 40 km per hour. The minimum temperature was 22 degrees and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 28 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius. And now moving towards our next section, what all happened on this particular day in history. Let's talk a particular day, and today is World Athletics Day. It's being celebrated today globally, and this day promotes the sport of athletics and encourage physical fitness among youth worldwide. The observation of this day was started in 1996 by the International Association of Athletics Federation, also known as World Athletics. Its main objective was to connect students to track and field sports at school and even college level. Now, if we talk about sports and athletics, mm-hmm. do you think it is recommended for everyone to give 1 hour at least to their bodies?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, जब हम स्पेशली हर समय डेस्क जॉब पे ही ज़्यादातर लोग रहते हैं या बच्चे भी अधिकतर फ़ोन में ही लगे रहते हैं. तो मुझे लगता है बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और बाहर जाके किसी ना कोई ना कोई तरह की एक्टिविटीज़ में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए.
1: ट्रू, बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट फिटनेस, बी इट जिम, एनीथिंग एट ऑल, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन फिटनेस. एंड नाउ व्हाट ऑल हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, लेट्स बिगिन विद द ईयर 1663. द थिएटर रॉयल, नाउ नोन एज द ड्रूरी लेन थिएटर, वॉज ओपन्ड इन लंडन एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश थिएटर स्टिल इन यूज.
0: 1824 में जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन की प्रसिद्ध नवमी सिम्फनी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वियना में हुआ. ये रचना आज भी विश्व संगीत की महानतम कृतियों में गिनी जाती है.
1: इन द ईयर 1849 बीथोवन कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कोलकाता फॉर वुमेन्स एजुकेशन. इन द ईयर 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज अवार्डेड द पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन व्हिच ही नेम्ड द टेलीफोन. इन 1907 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे service commenced in Mumbai. And in 1946, Sony Corporation, a major Japanese manufacturer of consumer electronics products, was founded by Ibuka Masaru and Morita Akio.
0: वहीं 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ, जिसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया. वहीं 1998 में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने iMac कंप्यूटर पेश किया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की दुनिया में नया बदलाव लाया.
1: And let's go a little back, talk about 1960. The Border Roads Organization, BRO, was established, crucial for strengthening road infrastructure in India's border areas. And in the year 1973, the foundation stone was laid at Itanagar, the new capital of Arunachal Pradesh.

0: वहीं 2000 की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, जिससे देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ।
1: इन द ईयर 2004, मरीन बायोलॉजिस्ट रिचर्ड थॉम्सन पब्लिश्ड एन आर्टिकल इन द जर्नल साइंस डिटेलिंग द ट्रबलिंग अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स एंड फाइबर्स दैट ही एंड हिज टीम हैव डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड मरीन हैबिटेट्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
0: अल्लूरी सीताराम राजू। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा चेहरा थे। उन्होंने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया और गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। राजू जी केवल एक सेनानी ही नहीं बल्कि आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले नेता भी थे। उनके बीच रहते, उनकी समस्याओं को समझते और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करती रही और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर गोली मार दी गई। उनका बलिदान आज भी साहस और देशभक्ति की मिसाल है।
1: And today is the birth anniversary of K.N. Shankar, a space scientist from India. He was the director of ISRO's Space Applications Center, Ahmedabad, and ISRO Satellite Center, Bangalore. He was the director of Satellite Communications Program Office and Program Director, INSAT, and was looking after overall planning and direction of communication satellite program. His work in the field of transponder design and development led to a boost in India's communication satellite technology. For his contribution in the field of satellite technology, Shankar was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2004. He is said to be the person who conceptualized Chandrayaan, India's first venture to moon.
0: कुछ आवाजें वक्त के साथ धीमी नहीं पड़ती, बल्कि हर दौर में और गहरी होती चली जाती है। ऐसी ही एक पहचान है प्रेम धवन, जिनके गीत आज भी दिलों में वैसे ही गूंजते हैं जैसे पहली बार सुने गए हो। प्रेम धवन हिंदी सिनेमा के उन खास गीतकारों में रहे जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें जिया भी। उनके गीतों में देशभक्ति की सच्ची भावना और इंसानी जज्बात की गहराई साफ महसूस होती है। ऐ मेरे प्यारे वतन हो या कर चल हम फिदा, उनके लिखे हर गीत में एक सादगी है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि संगीतकार और नृत्य निर्देशक भी थे जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार पल दिए। 2001 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही जीवित हैं। हर बार सुनने पर कुछ नया एहसास छोड़ जाती है। और अब इन्हीं भावनाओं को महसूस करने के लिए आइए सुनते हैं प्रेम धवन का लिखा गीत।

एहसास को सुरों में ढालने वाले कलाकार थे वनराज भाटिया। वनराज भाटिया भारतीय सिनेमा के उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनका संगीत साधारण होते हुए भी बेहद खास था, धीमा, गहरा और असरदार। तमस जैसे धारावाहिक में भी उनका संगीत कहानी की भावनाओं को और गहरा कर देता है। उन्होंने फिल्मों के अलावा विज्ञापन जगत में भी कई यादगार जिंगल्स तैयार किए। उनका संगीत ऐसा था जो धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है और लंबे समय तक साथ रहता है। 2021 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हर बार सुनने पर एक नया एहसास छोड़ जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं वनराज भाटिया के संगीत का ये खूबसूरत हिस्सा।

अब हम बात करेंगे नारायण सुब्बा राव हार्डिकर के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की, जो युवाओं को अनुशासन, संगठन और देश सेवा के लिए तैयार करने का एक सशक्त मंच बना। हार्डिकर जी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए जागरूक और प्रशिक्षित नागरिक आवश्यक है। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सोच और कार्यशैली ने देश के युवाओं को नई दिशा दी थी। पन्नालाल पटेल गुजराती साहित्य के उन लेखकों में शामिल है जिन्होंने गांव देहात की जिंदगी को शब्दों में जीवंत कर दिया। आज ही के दिन 1912 में जन्मे पन्नालाल पटेल की रचनाएं आम इंसान के संघर्ष, प्रेम और सामाजिक परिस्थितियों को बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत करती है। उनकी प्रसिद्ध कृति मनवीनी भावाई के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी भाषा सरल थी लेकिन असर गहरा, जो पाठकों को सीधे कहानी से जोड़ देती है। उन्होंने साहित्य को समाज का आईना बनाया। पन्नालाल पटेल की लेखनी आज भी पाठकों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। 1910 में जन्मे शांति देव घोष कला की उस परंपरा के वाहक थे जो सुर, ताल और अभिनय को एक साथ जोड़ती है। वे रविंद्र संगीत के प्रमुख उस्तादों में गिने जाते हैं। शांति निकेतन से जुड़े रहते हुए उन्होंने संगीत और नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कई नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन भी किया था।

0: मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉकिंग अबाउट गुरुदेव.
1: गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया. वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते. वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते. वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते. उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही.
2: गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे. अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे. जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
3: श्रोता, रविन्द्रनाथ टैगोर को दो देशों के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त हुआ था. उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी रचा था. सिर्फ साहित्य ही नहीं, शिक्षा जगत में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा था. शांति निकेतन की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा को एक नई सोच दी, जहां प्रकृति के बीच सीखने की परंपरा विकसित हुई. आज भी उनकी कविताएं और गीत दुनिया को ये सीख देती हैं कि चुनौतियों का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनका सामना करो, भले ही अकेले क्यों ना हो.

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
2: যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা।
0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड

0: रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने

0: उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया।

0: प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, 2 ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and 1 each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Kerala, meeting of the newly elected legislatures of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship positions. Congress sources hinted that an

0: Suspect ISI plot as twin blasts rock Jalandhar, Amritsar. DGP says IED is used. The disruptions have come ahead of Operation Sindoor anniversary, writes the paper. In its editorial piece titled Amid Disruptions, a Timely Lifeline, the Indian Express says the government's launch of Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0 is a timely and welcome response to the economic disruptions caused by the West Asia conflict, particularly for MSMEs and airlines facing rising costs and supply chain stress. It argues that the scheme can ease short-term liquidity pressures, but also cautions that if disruptions continue or worsen, further policy support may be required. The editorial concludes that the government must remain alert, flexible, and ready with additional measures. And finally, in news that is sure to make wildlife enthusiasts happy, a rusty spotted cat, one of world's smallest species of wild cats, and classified as near threatened, has been sighted along with her tiny offspring in the Aravali scrublands at the doorstep of Delhi, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. Bengal BJP leader Subhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz, and Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना पार्टी लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमेरिका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहरे अहमर में तैनात कर दिया है। और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का मुंहतोड़ जवाब था। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम मुजाहरा था, जिसे फौजी और गैर फौजी जराये के इश्तराक से अंजाम दिया गया। इस कसीर जैती ऑपरेशन ने दहशतगर्दाना खतरात को असरदार तरीके से नाकारा बना दिया। पाकिस्तानी जारियत पर रोक लगाई और दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया। इस ऑपरेशन के दौरान बैन अल-अक़वामी हिमायत हासिल करते हुए स्ट्रेटेजिक तहम्मुल को बरकरार रखा गया। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और इसका मंसूबा बनाने वालों को सजा देने के लिए चलाया गया था, ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज ने दहशतगर्दी के मंजरनामे का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुतादिद दहशतगर्द कैंपों और तरबियती मकामात की निशानदेही की। ये ऑपरेशन अपनी कामयाबी की खुद गवाही देता है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के 9 बड़े कैंपों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के 11 फजाई अड्डों पर हमला किया गया और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों का खात्मा हुआ। ये हमले बहुत शदीद थे और भारत ने उन्हें पेशावराना अकदार और तामुल से अंजाम दिया, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना अहदाफ को भी निशाना बनाया गया था और आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया गया। इस भारी नुकसान के बायस पाकिस्तान जंगबंदी पर मजबूर हो गया। नई दिल्ली ने यह ऑपरेशन न सिर्फ कामयाबी के साथ अंजाम दिया, बल्कि इससे भारत की फौजी ताकत और उसकी तीनों अफवाज, भारतीय फजाई फौज, भारतीय बर्री फौज और भारतीय बहरिया की मरबूत कार्रवाई का भी मुजाहरा हुआ। इस ऑपरेशन ने जदीद दिफाई निजामों की बरामद में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों को भी उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौकिफ और उसकी तबाहकुन फौजी ताकत का इजहार है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी पर भारत की बरवक्त तो मौसर जवाबी कार्रवाई को पेश किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क की पुख्ता जवाबी कार्रवाई को उजागर किया है और मुल्क के इक्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज़ के तई अपने अज़्म का इआदा किया है।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला फौज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ला फौज की जुरतमंदी, हौसला मंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई बेमिसाल दुरुस्ती, बाहमी हमाहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए एक नई मिसाल कायम की। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और एनडीए के कई सीनियर लीडरान आज से पहर पटना में गांधी मैदान में होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: काबीना में तौसी साबिका हुकूमत में अपनाए गए फार्मूले की बुनियाद पर की जा रही है। उम्मीद है कि तकरीबन बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 असेंबली अरकान वज़रा की हैसियत से हलफ लेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक असेंबली मेम्बर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तवक्को है कि काबीना में बेशतर ओहदे बीजेपी और जेडीयू के जाने पहचाने मेंबरों को दिए जाएंगे। अलबत्ता कुछ नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। जेडीयू से निशांत कुमार के नाम पर भी बहस जारी है। पटना से निधि श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वालों में एलजेपी रामविलास के संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है, जबकि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एमएलए स्नेह लता को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। केरलम में कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज तिरुवनंतपुरम में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस की क्यादत वाले यूडीएफ ने रियासत की 140 रुकनी असेंबली में 104 सीटें जीती हैं और ये रियासती गवर्नर के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे मुलाकात करेगा। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, जो तमिलनाडु की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, इस वक्त चेन्नई में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में शिमाली परगना जिले के मध्यम ग्रम में नामालूम हमलावरों ने बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी साथी चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक कर दिया। इतला

के मुताबिक मोटरबाइक पर सवार हमलावरों ने कल रात दोहारिया में उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ को शदीद जख्मी हालत में एक मकामी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनका ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गोलियां लगने से जख्मी हो गया और उसे जख्मी हालत में कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। चंद्रनाथ का ताल्लुक मशरकी मिदनापुर से था और वो काफी तवील अरसे से मध्यम ग्राम के रिहायशी थे और वो बीजेपी उस टीम का हिस्सा थे जिसने भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के लिए काम किया था। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक करने की तहकीकात शुरू कर दी है। डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी पहले ही बरामद कर ली है। बताया जाता है कि हमलावर चार बाइक पर सवार होकर आए थे। बीजेपी के लीडरों ने इस बहिमाना हरकत के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को मौरिद इल्जाम ठहराया है। कांग्रेस बाएं बाजू और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के जाति मुआविन को हलाक किए जाने की मजम्मत की है। इसी दौरान बीजेपी के एक दूसरे कारकुन रोहित राय को शिमाली 24 परगना जिले के बासिरहाट में गोली मार दी गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगरबी बंगाल में नौ मुंतखब बीजेपी की हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के कई वजराए आला शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर शमिक भट्टाचार्य ने जोर देते हुए कहा है कि अगर ममता बैनर्जी वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा नहीं देती हैं तो हलफबरदारी की तकरीब आईनी तकाजों के मुताबिक पूरी सख्ती से अंजाम दी जाएगी। अमेरिका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मुसवदे पर बातचीत सरगर्म अमल दिखाई देती है। 14 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक वसी तर समझौते की जानिब मुजाकरात हो सकें। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज़ का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को कंट्रोल में बताया है, लेकिन खबरदार किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने मुज़ाकरात की पेशरफ्त के सिलसिले में अमरीकी अहलकारों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवाह में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की है। जंगबंदी के बाद से लबनान की राजधानी में इस तरह का ये पहली फौजी कार्रवाई है। इससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। फ्रांस ने आबनाई हुरमुज को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहरे अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसके साथ इटली और डच का जंगी जहाज भी है, जुनूबी बहरे अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि एक बार सूरत हाल मुस्तहकम होने या तनाज़ हल होने की सूरत में आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाज़ों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राह हमवार की जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में कमांडरों की दूसरी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दो रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है नए शोबों में फौजी सलाहियत ने अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। वजारत दिफा ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस साइबर खला और इदराकी जंग के उभरते हुए शोबों में दरपेश चैलेंजों का जायजा लेने और एक मजबूत मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग और फैसला कुन बरतरी रखने वाली फोर्स की सलाहियतों की तरक्की के लिए लाए अमल फराहम करेगी। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगी, जिसमें 35 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का इम्कान है। इस चैंपियनशिप का एहतमाम दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया है। चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनाकिद होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली की खेलों की बैन अलावी तकरीबा की मेजबानी करने की एक तवील तारीख रही है और आइंदा होने वाली चैंपियनशिप दुनिया के खेल के नक्शे में दिल्ली शहर की हैसियत और वक़ार को मजीद मुस्तहकम करेगी।

0: इस चैंपियनशिप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जुनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, कीनिया, जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के मुल्कों के टेबल टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कोनेन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वियतनाम के सदर तोलाम के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, भारत और वियतनाम ने नायाब मादनियात, दिफा, काबिले तजदीद तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 12 अहम शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक साइंस और सेहत के शोबों के लिए भारत और जापान ने कई अहम मुआहदे किए। इसी अखबार ने भारत और अलजजायर के दरमियान दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक होने की भी खबर दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकानी असेंबली आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने अपना हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहर अहमर में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 55 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। बेशक आप रास्ते में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर जल्दबाजी में हैं, भाग रहे हैं, या फिर सबको भेजकर फुर्सत में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन हर दिन हर एक के लिए एक नया अवसर होता है, एक नई शुरुआत, बीती बातों को भूलकर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का दिन। तो बस ऐसे ही एक और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत और शुरुआत म्यूजिकल दिल लगी के इस प्यारे से गाने के साथ। मैं हूं पूनम, स्वागत आप सभी का दिल से।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं हम म्यूजिकल दिल लगी। और म्यूजिकल दिल लगी के लिए ये जो समय होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि इस समय हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए, या किसी सामान को लेने के लिए। और जैसे ही बाहर निकलते हैं हमें बड़ा गुस्सा आता है गंदगी को देख कर, और हम सोचते हैं अरे लोग ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं, अरे यहाँ पर इतनी गंदगी है, अरे कोई कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम खुद क्या करते हैं, हम कौन से कदम बढ़ाते हैं साफ सफाई के लिए। देखिए, जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम बाहर देखें तो सब साफ सफाई नजर आए, वो इसीलिए है कि ये हमें मानसिक शांति भी देती है।

0: हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जो जगह है उन्हें ठीक रखें, साफ सुथरा रखें। और वैसे अव्यवस्था जो है उसे हटाना भी ज़रूरी है। जैसे आप घर में भी हैं या ऑफिस पहुंचते हैं तो भी आप देखते हैं कि बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है और जो ज़रूरी है वो भी अपनी जगह पर नहीं है। तो इसे करना भी, इसे ठीक करना भी हमारे जो स्वच्छ मिशन है उसका एक हिस्सा हो सकता है, ताकि आप अपने आप को मेंटली भी फ्री रख पाएं। और जब आप ऐसा करते हैं कि आप जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं उन्हें हटाते हैं, जो ख़राब हो गई उन्हें हटा देते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, अनावश्यक सामान को बाहर निकालते हैं लेकिन तरीके से, और जो साफ़ सफाई है उस पर ध्यान देते हैं, तो इससे आपका तनाव कम होता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, स्पष्टता आती है और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वैसे भी सोचिए कि जब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो हमें उन्हें ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता, और साथ ही साथ पैसे की बचत भी होती है, क्योंकि आपकी जो चीज़ खो गई आप उसको फिर से ऑर्डर करके नया मंगा लें उसकी बजाय उसे ही संभाल कर रख लें। तो कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं लेकिन हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है लाइफ है ऐसे ही चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन लाइफ को और अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से चलाना ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। बस इस जिम्मेवारी को निभाएंगे तो फिर मानसिक शांति अपने आप बोनस में पाएंगे।
1: हंसो मत, बोलो

तो ऐसे ही खूबसूरत सी सुबह में अच्छा सा मूड बनाए रखिए, जैसे ये गाना था ऐसे ही, और एफएम गोल्ड के साथ रहिए। कुछ ही देर में आप जानेंगे देश और दुनिया का हाल, और उसके बाद नीतू होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल्लगी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो पूनम चलती है, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की दृढ़ प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला और देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत

0: घोषित कर दिया। फ्रांस ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रही हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य फिर शुरू हो सकती है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे और दक्षिण कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गरजने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May the 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. The Indian Army today shared a video marking a year of Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted the country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding the country's sovereignty and the citizens.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: Defense Minister Rajnath Singh has hailed the valor and sacrifices of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. In a social media post, the Defence Minister underlined that the courage and dedication of the country's armed forces continue to safeguard the nation. He said Operation Sindoor stands as a powerful symbol of the nation's resolve and preparedness, showing that the Indian Armed Forces are always ready to act decisively when it matters most. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. The cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party, Ram Vilas, and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. Most of the positions in the cabinet are likely to be given to familiar faces from BJP and JDU. However, a few new faces may also be included. From JDU, the name of Nishant Kumar is also being discussed. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ जब आप किसी से मिलते हैं, यूं ही आप पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपकी वाइब्स ना मैच नहीं होती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो ठीक है, होने दीजिए, हर किसी से आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी ये मान के चलिए। तो बस अपने आप के साथ खुश रहना सीखिए। फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल।

रात को तो चांद से रोशनी हो जाती है, लेकिन दिन में सूरज ना हो तो क्या होगा? और अगर सूरज है तो फिर उसकी रोशनी का भरपूर फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। और आप सोचते हैं सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, तो फिर आपको इस योजना के बारे में जान लेना चाहिए जो कि है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए योजना है। इसके तहत 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए 100 इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत की 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आप चाहते हैं इस योजना में का लाभ उठाना, तो फिर इस योजना के बारे में पढ़िए और फिर अप्लाई कर दीजिए। बस यही एक तरीका होता है।

0: प्यार।
1: जिस तरह से जलवायु संकट बढ़ रहा है ना, तो ऐसे में हम भी किसी ऐसे आइडिया का इंतजार कर रहे हैं कि जिससे संकट से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि इस संकट की वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। दुनिया में जो सबसे महंगा परफ्यूम है उसमें खास तरह की गोंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मिर कहते हैं। लेकिन ये गोंद जिस पेड़ से मिलती है, अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, साथ ही उन लोगों की रोजी रोटी पर भी जिनके लिए यही गोंद कमाई का मुख्य जरिया है। ये पेड़ इथियोपिया में पाया जाता है, मगर वहां भी जलवायु संकट के चलते सूखा पड़ा है और उसकी वजह से ये पेड़ भी सूख रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा आइडिया सोचा जाए। आप भी सोचिए, और जो लोग सोच सकते हैं, जिनको आइडिया नए नए आ सकते हैं, वो सब सोचें कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस दुनिया में हरी भरी रहे और हर तरफ अच्छी आबो हवा हो और हर वक्त चंदन सी महकती खुशबू हमारे आसपास।

पहले फोन का जो डेटा होता था वो फिल्म देखने, गाने सुनने में खर्च होता था, फिर गेम खेलने, सोशल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म पर खर्च होने लगा। इन दिनों अगर आपको लग रहा है कि आपके फोन का वही डेटा और भी जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह हो सकता है AI प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना। आजकल बहुत से लोग AI की हेल्प से अपने काम निपटा रहे हैं और AI आपका डेटा खा रहा है। फोन में भी तो जो एप्स हमारे पास होते हैं, अब वो भी बैकग्राउंड में AI का इस्तेमाल करते हैं और वो भी डेटा खाते हैं। इसीलिए इन दिनों अगर आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल डेटा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह AI हो सकती है। तो आप सोचिए कि आप कैसे उसको कम कर सकते हैं, उस इस्तेमाल को।

आज हम याद कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था और दलित आदिवासी लोगों के लिए करिश्माई नेता बन गए थे। 1922 के मान्यम विद्रोह, जिसे रंपा विद्रोह भी कहते हैं, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ करीब 500 आदिवासियों की एक सेना तैयार की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिशर्स को मद्रास प्रेसिडेंसी से बाहर निकालना। वो असाधारण गुरिल्ला योद्धा थे और जो ग्रामीण थे उन्होंने उन्हें मण्यम वीरुडू की उपाधि दी थी, यानी जंगल का नायक। ऐसे जो शहीद हैं उन्हें हालांकि 1924 में गिरफ्तार कर लिया था और एक पेड़ से बांधकर सबके सामने गोली मार दी गई थी, लेकिन ऐसे शहीदों को याद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष

0: चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on 22nd of April last year. Prime Minister Narendra Modi has said that the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said that the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a befitting reply to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valor. In his Sanskrit Subhashitam, the Prime Minister also said that the extraordinary victory achieved by India in Operation Sindoor is an inspiring example of the remarkable valor and patriotism of the brave soldiers of the country. The Indian Army today shared a video marking a year to Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding country's sovereignty and the citizens.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: Terror or talk ek saath nahi ho sakta. Terror or trade ek saath nahi chal sakte. Aur pani aur khoon bhi ek saath nahi beh sakta.
1: Defence Minister Rajnath Singh has hailed the valour and sacrifices of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. In a social media post, the Defence Minister underlined that the courage and dedication of country's armed forces continue to safeguard the nation. He added that their actions during the operation reflected unmatched precision, seamless jointness and deep synergy across services, setting a benchmark for modern military operations. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. BJP State President Sanjay Saraogi informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP National President Nitin Naveen, along with several NDA senior leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna. In Kerala, meeting of the newly elected members of Congress will be held at Thiruvananthapuram today morning. In the meantime, AICC observers who reached Thiruvananthapuram last night will continue discussions with individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various parties in the UDF is also progressing. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership. In Tamil Nadu, DMK chief MK Stalin has said that his party respects the people's mandate for the new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumors that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. Delhi will host Commonwealth Table Tennis Championship 2026 at the Tyagaraj Stadium with players from more than 35 countries expected to participate. Jointly organized by Delhi Government and Table Tennis Federation of India, the championship will be held from July 27th to August 2nd. Chief Minister Rekha Gupta announced that Delhi has a long legacy of hosting international sporting events, and the championship will further strengthen the city's position on the global sporting map. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Punjab Kings by 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad last night. And that is the end of this news bulletin.
4: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
5: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने सशस्त्र बलों की तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। श्री मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने बलों के बीच बढ़ते जुड़ाव को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा प्राप्त असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की दृढ़ प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला और देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स।

0: एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में आज कई अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।
2: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के अंतर्गत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत जन समुदाय जुड़ाव की नींव पर टिके हैं और दोनों देश इन्हें और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: We have a deep and trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सूरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
3: In its developmental journey.
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला यह मसौदा 30 दिनों की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमरीका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्लाह के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोकने और उसे निष्क्रिय करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार MT हसना नाम का ये टैंकर अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी तोड़कर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी शामिल है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्थिति स्थिर होने या संघर्ष के समाधान के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। अमरीका और ईरान पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम तन्वी खुराना विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India marks first anniversary of Operation Sindoor launched in response to Pahalgam terror attack. Vietnam President Tu Lam to address India-Vietnam Business Forum in Mumbai today. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting reply to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on 22nd of April last year. Today, we look at New Delhi demonstration of zero terror policy towards terrorism.
7: Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized terrorist threats, deterred Pakistani aggression, and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism. The operation maintained strategic restraint while gaining international support. The operation was conceived to punish perpetrators and planners of terror and aimed to destroy terror infrastructure across the border. The operation spoke volumes, resulting in the destruction of 9 major terror camps, an attack on 11 Pakistani air bases, and the elimination of high-profile terrorists. While the strikes were heavy, India performed them with operational ethics and restraint, neutralizing only terror targets and avoiding civilian harm. Inflicted by this heavy damage, Pakistan was compelled to resort to a ceasefire. Operation Sindoor remains the highlight of India's firm stance against terrorism and a demonstration of its destructive military power. Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
6: The Indian Army today shared a video marking a year to Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding country's sovereignty and the citizens.
8: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
0: Terror or talk ek saath nahi ho sakta. Terror or trade ek saath nahi chal sakte. Aur pani aur khoon bhi ek saath nahi beh sakta.
6: Prime Minister Narendra Modi has said that the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said that the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a befitting reply

100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर शुरू हो गया है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम पूरी करते हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू, और ये पहला गाना आप तक पहुंच रहा है। इस गाने के बाद करते हैं हम बाकी की बातें।

तूफान की चेतावनी तो हर दूसरे तीसरे दिन आ ही रही होगी आपके फोन पर भी और हमारे फोन पर भी आ जाती है। और वाकई में आंधी आ जाती है, बिजली भी कड़कने लग जाती है, मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। कभी तो भयंकर गर्मी हो रही है और कभी इतनी अच्छी हवा। अभी भी मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रही हूँ तो सारे पेड़ पौधे हिलते हुए दिख रहे हैं, खूब तेज हवा चल रही है। और सुबह तो बहुत ठंडी हवा थी, बहुत प्यारी हवा, और मौसम वाकई अच्छा है। और इसी अच्छे मौसम को देख हुए फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा और एमएस अब्बासी ने हमें ये मेल भेजा था जिसमें उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी। तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। अब बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ। आज लगता है मौसम का असर सभी पर हो रहा है, सभी ने कुछ ऐसे गाने भेजे हैं हम तक जिनमें कुछ कुछ वादियों की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। ये गाना भी कुछ ऐसा ही है। सुरेश नारंग और आशा नारंग ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म वासना से।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप। और अब आने वाला है एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसमें दो आवाज़ें हैं और वो दोनों ही आवाज़ें बहुत ही प्यारी हैं। गाना तो खैर है ही अच्छा, और इस गाने की फरमाइश जिन्होंने की है उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है दिल का मेल बॉक्स जिसमें आपकी फरमाइशें होती हैं पूरी, आपकी रिक्वेस्ट आप हम तक पहुँचाते हैं ईमेल के ज़रिए। ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com और इस पर जब आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और वक्त हुआ, सहूलियत हुई, गाना हुआ तो आपका गाना पूरा हो जाएगा, आपको सुनाई देगा, हम सब भी सुनेंगे और मिलकर सुनेंगे। और अभी हम मिलकर सुनने जा रहे हैं जिनकी फरमाइश, वो हैं उग्रसेन यादव, शकुंतला और गरिमा। इस मेल में थोड़ी सी बात ऐसी है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या थोड़ी सी चिंता है कि आखिर जो भी सुनते हैं हम उसका आकलन कैसे किया जाए, ऐसा इन्होंने लिखा है। सच्चाई क्या है, कैसे पता करें, ये पता कैसे करना होता है ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर ये सिर्फ दिल की बात है तो आप दिल से सोचें, दिल से समझें, सारे फैक्ट्स को सामने रखेंगे तो शायद आपको सच्चाई का अंदाज़ा हो जाए। फिलहाल इस गाने के साथ वो सच्चाई बिल्कुल नहीं जा रही है, तो हम गाने के मूड को बरकरार रखते हैं और आपकी पसंद का उत्सव फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

उग्रसेन यादव, शकुंतला और गरिमा, आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा और आपको अगर ये गाना याद है तो इसमें दो बेहद खूबसूरत हीरोइंस हैं, रेखा और अनुराधा पटेल, और ये दोनों ही एक और फिल्म में भी एक साथ थी अगर आपको याद हो तो, वरना मैं याद दिला देती हूँ, इजाज़त फिल्म में उसके भी गाने बहुत अच्छे थे और दोनों बहुत ही अच्छी लगती हैं, साथ में हो या अलग अलग स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये जो फिल्म थी उत्सव, ये संस्कृत के एक नाटक पर आधारित है, मृच्छकटिकम, अगर आपने पढ़ा है वो तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही गहन स्टोरी है। और ये फिल्म अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, मुझे बेहद पसंद है उसकी कहानी भी, और एक छोटे सी मिट्टी की गाड़ी के इर्द गिर्द जो कहानी बुनी गई है और जिस तरह से फिल्म बनाई गई है वो कमाल की है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो गाना सुनना चाहा है ये है मृदुल शर्मा, श्रीचंद, राजू गुप्ता और आशीष ठाकुर, ये सुनना चाहते हैं।

मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़ाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान की पसंद का ये आखिरी गाना आप सुन रहे हैं और इसी के साथ नीतू को इजाज़त दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे तस्वीर में। आप इस गाने का लुत्फ उठाइए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला डटकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे दुश्मनों को ये संदेश देता है कि वे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, वे हमसे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। राज्यपाल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अमरीका और

वक्त हो गया है कि आप कहीं घूमने फिरने की बातें कर ली जाए, जो कि हम सबका फेवरेट टॉपिक होता है। भले ही कहीं जा पाए ना जा पाए, लेकिन बातें कर तो कर ही सकते हैं ना। और अगर आप भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत आध्यात्मिक यात्रा की तलाश में हैं, तो फिर आज की डेस्टिनेशन आप ही के लिए है। ये है अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला। बोमडिला जो है ये नॉर्थ ईस्ट है में है, और नॉर्थ ईस्ट जो है अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो आज चलिए जान लेते हैं बोमडिला के बारे में। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ।

बिल्कुल सही बात है, जो सफ़र आराम से प्यार से कट जाए वही सफ़र यादगार बन जाता है और वही सफ़र ना अच्छा भी लगता है। और आराम से कटे आपका सफ़र, इसीलिए हम आपको बताते हैं बहुत सारी बातें अलग अलग जगहों के बारे में जो कि हमारे अपने देश में है। ऐसी ही है पूर्वी हिमालय की गोद में बसा हुआ बोमडिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले का एक प्यारा सा हिल स्टेशन है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठों, स्थानीय हस्तशिल्प और सेब के बागों के लिए बहुत ही मशहूर है ये शहर। मेट्रो सिटीज़ की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक ताजगी भरा अनुभव ये जगह आपको देगी। पहाड़ों की ठंडी हवा, हिमालय के मनमोहक नज़ारे और ज़िंदगी की धीमी और सुकून भरी रफ्तार इसे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है जो शांति, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव की तलाश में है। तो आप अगर प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो बोमडिला एक बेहतरीन विकल्प है।

बॉम डीला चलें, क्योंकि वो एक जगह नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव है, जहां पर हर मोड़ पर प्रकृति की खूबसूरती और हर हवा के झोंके में सुकून छिपा है। यहाँ का जो प्रमुख आकर्षण है वो है बोमडिला मोनेस्ट्री, जो तिब्बती वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यहाँ की प्रार्थना, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और शांत वातावरण आपको भीतर तक सुकून से भर देते हैं। ये मठ तीन हिस्सों में बटा हुआ है। अपर गोम्पा, जहाँ एक बुद्ध मंदिर है, प्रार्थना कक्ष है और युवा भिक्षुओं के लिए एक स्कूल है। मिडिल गोम्पा, जो कि यहाँ का सबसे पुराने हिस्सों में से एक है, और यहाँ पर होती है पूजनीय ब्लू मेडिसिन बुद्ध, यहाँ पर विराजमान है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें रोग निवारण की यानी बीमारियाँ ठीक करने की शक्तियाँ हैं। और लोअर गोम्पा, जो कि इसका मुख्य केंद्र है, यहाँ पर है एक विशाल प्रार्थना कक्ष जो शांत चिंतन के लिए एकदम उपयुक्त है। वैसे भी आप अकेले भी अगर कहीं बैठे हो ना, तो ऐसा होता है कि आप आराम से पूरा ऐसी ऐसी ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल अकेले नहीं होते हैं। तो चिंतन और इस तरह के ख्यालात की दुनिया में खोने में फ़र्क होता है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं बोमडिला की। बोमडिला के सेब के जो बाग हैं वो अरुणाचल प्रदेश के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक हैं। बोमडिला और आसपास के इलाकों जैसे कि टीपी या शेरगांव में बहुत बड़े भूभाग पर ये बाग फैले हैं, और ये सर्दियों के महीनों में ना पूरी तरह से खिल उठते हैं, क्योंकि उन महीनों में हर तरफ सेब के पेड़ जो

हैं वो फलों से लद जाते हैं। आप इन सुंदर बागों में इत्मीनान से टहल सकते हैं, पहाड़ों की ताज़ी हवा का लुत्फ उठा सकते हैं और स्थानीय बागवानों से सीधे ताज़े ऑर्गेनिक सेब बेहद किफ़ायती दामों पर खरीद भी सकते हैं।

बोमडिला की बातें कर रहे हैं हम और वहीं पर है सेसा ऑर्किड अभयारण्य जो कि 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ आप ऑर्किड की सैकड़ों प्रजातियां देख सकते हैं। यहाँ के सुंदर ट्रैकिंग रास्तों और गाइडेड टूर का आनंद ले सकते हैं जो कि आपको प्रकृति के करीब आने का अवसर देते हैं, और साथ ही ऑर्किड संरक्षण के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। ये अभयारण्य जो है वसंत के मौसम में और गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, जब ऑर्किड अपनी पूरी शान के साथ खिलते हैं। घने जंगलों, कलकल करते झरनों और शांत धाराओं से घिरा हुआ सेसा ऑर्किड अभयारण्य जो है वो विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसे आप बिल्कुल देखना मिस नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि आप ये गाना सुनना भी मिस नहीं करना चाहेंगे।

अगर मौसम साफ हो ना तो आप बोमडिला से हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों का नज़ारा भी देख सकते हैं, और इसके लिए जो परफेक्ट जगह है वो है आरआर हिल्स। यहाँ अगर आपको प्रकृति का साथ पसंद है या फिर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए ये और भी ज़्यादा बेहतरीन जगह है। इस ऊंची पहाड़ी से आप उन घुमावदार पहाड़ी रास्तों को, सड़कों को साफ साफ देख सकते हैं जो तवांग और भूटान की सीमा की ओर जाती हैं। ये नज़ारा ना सुनने में भले ही आपको कैसा भी लग रहा हो, शायद बहुत अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जब आप देखते हैं ना एक ऊंची सी पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की गोल गोल घूमती हुई सड़कों को, तो वाकई बहुत शानदार लगता है। इसके अलावा इस पहाड़ी से यानी आरआर हिल से आप सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे भी देख सकते हैं जो कि एकदम जादुई से लगते हैं।

कितने खूबसूरत कितने प्यारे बोल थे ना आपने, सुना बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है, मतलब ऐसा ना कोई आम इंसान तो लिख ही नहीं सकता है। खैर हम बोमडिला की बात कर रहे हैं जो वाकई में आम नहीं है और ख़ास जगह है, तो इस जगह का जो हस्तशिल्प है वो भी बहुत ख़ास है। यहाँ की स्थानीय जनजाति मोम्पा अपनी ख़ास संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इन परंपराओं को आप नज़दीक से जानना चाहें तो जाइए क्राफ्ट सेंटर एंड एथनोग्राफिक म्यूज़ियम, ये लोअर गोम्पा के ठीक सामने है, जहां आप 767 एथनोग्राफिक कलाकृतियों को देख सकेंगे। इनमें हाथ से बुने हुए कालीन हैं जिनमें मशहूर ड्रैगन डिज़ाइन होता है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे कालीन जिन पे ड्रैगन का डिज़ाइन बना होता है वो यहीं बनते हैं। इनके अलावा पारंपरिक मुखौटे, वॉल हैंगिंग, स्क्रोल पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन और वाद्य यंत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम अरुणाचल प्रदेश की विविध जनजातियों के जीवन, रीति रिवाजों और कलाकारी की एक झलक दिखाता है। और इसके बगल में है क्राफ्ट सेंटर, जहां आप कुशल कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं और अपने साथ उनके हाथ से बनी हुई अनोखी यादगार चीज़ें लेकर आ सकते हैं।

बोमडिला का नाम स्थानीय जनजाति मोम्पा की भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गुप्त मार्ग या हिडन वैली। ये तवांग जाने वाले रास्ते में पड़ता है, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ तवांग भी कहा जाता है। आप अगर बोमडिला जाना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट है तेजपुर में और नजदीकी रेलवे स्टेशन है रंगपारा में। दोनों ही जगह से आपको टैक्सी लेनी होगी और आप बोमडिला पहुंच जाएंगे। बोमडिला जाने के लिए सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से अप्रैल तक। इस दौरान नज़ारे एकदम साफ दिखेंगे और ठंडा मौसम घूमने के लिए हमेशा परफेक्ट होता है। सर्दियों में ना यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी होती है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा रोमांटिक और आकर्षक बना देती है, और फिर तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा कहीं और जाने के लिए।

आपको भी अगर बोमडिला जाना है तो बस तैयारी शुरू कर लीजिए अभी। इस मौसम में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर सर्दियों तक का इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जाते जाते एक मासूम फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल कह लीजिए, गीत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पर ये बहुत अच्छा है, वो आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। तो नीतू को इजाज़त दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्रिपद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में

0: घर आंगन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड चैनल यानी FM 100.1 MHz पर। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 kHz पर भी। कार्यक्रम घर आंगन के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुंदर सुविचार के साथ। शिक्षक वो नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को बस डाल दे, बल्कि शिक्षक तो वो है जो उन्हें आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करे।

0: आशा भोसले, मुकेश और सिमी ग्रेवाल की आवाजों में ये गीत आपने मेरा नाम जोकर फिल्म से सुना। जी हाँ, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर, HPV वैक्सीन, जो हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिन्नी दुआ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, HPV क्या है?
1: HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। एक ये आम वायरस है जो आगे चलकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अब हम सोचें कि सर्विक्स किसे कहते हैं? सर्विक्स यानी गर्भाशय या बच्चेदानी के निचले हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं, और इसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं।
0: किशोरियों के लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: किशोरियों के लिए वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसका देखा गया है, जो HPV वैक्सीन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आता है वो जितनी जल्दी शुरू हो सके, दैट इंडिकेट्स कि हमारा 9 से 15 ईयर्स का जो होता है कोहर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा ये वैक्सीन 100% एफिकेसी पाई गई है।
0: मतलब वायरस मिलने से पहले ही अगर इसका बचाव कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट है।
1: यस बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो दिल्ली में क्या सुविधा है और ये वैक्सीन कहाँ उपलब्ध है?
1: आज की डेट में दिल्ली में एक कैंपेन मोड के द्वारा हर सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज में ये मुफ्त में दिया जा रहा है। एक एज ग्रुप जो हमारी जिसमें वैक्सीन लग रही है वो है 14 इयर्स से 15 इयर्स प्लस 3 मंथ्स की किशोरियों को वैक्सीन हर सरकारी केंद्र में, अस्पताल और डिस्पेंसरीज में मिल रहा है।
0: 2026 में जैसे कि आपने बताया, सरकार ने 14 से 15 साल तक की लड़कियों के लिए बड़े स्तर पर फ्री वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। प्राइवेट में हजारों रुपए में मिलने वाली ये HPV वैक्सीन सरकार के कार्यक्रमों द्वारा सरकारी फैसिलिटीज यानी आयुष्मान आरोग्य मंत्री जो हैं, डिस्पेंसरीज हैं, अस्पतालों, इसमें मुफ्त मिल रही है। हाँ, इसलिए लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल 100% लाभ उठाना चाहिए, और जितनी ज्यादा सभी, मैं तो यही कहूंगी सारी किशोरियां जो भी इस एज ग्रुप में है उनको हमें वैक्सीन करना है, लगवानी है 30 मई के अंदर अंदर।
0: कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है या जरूरी नहीं है,
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बिल्कुल 100% सुरक्षित है ये, और एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी, ये नई वैक्सीन नहीं है, ये हमारी 2006 से ये वैक्सीन है और दुनिया भर में लग रही है। एक मैक्सिमम बहुत करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन का लाभ अपना लिया है। मेरा यही सुझाव रहेगा सारे माता पिता किशोरियों के, एक बार अपने निकटतम डिस्पेंसरीज में आए और जो भी उनकी जो इश्यूज है वो डॉक्टर से सलाह ले ले।
0: यानी ये गलत फहमी है कि HPV वैक्सीन सुरक्षित नहीं है ये, बल्कि ये तो विश्व भर में प्रमाणित है। दिल्ली में कम जागरूकता और अफवाहों के कारण कई लड़कियां वैक्सीन नहीं लगवा पा रही हैं। हमें इसी सोच को बदलना होगा। लोग सब, श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
1: ये एक छोटा कदम है लेकिन भविष्य में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार।
0: तो अभी हमारे साथ ही डॉक्टर बिन्नी दुआ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जो बात कर रही थी HPV वैक्सीन पर। दोस्तों याद रखिए, रोकथाम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें, HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यहां हम एक गीत सुन लेते हैं।

रोजा फिल्म में आपने सुना मिनमिने को, और आज से घर आंगन कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर। जी हाँ, जो ये रेडियो या आकाशवाणी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें नित नई खबरें देता है, समाचार सुनवाता है। तो क्या है आकाशवाणी और हमारे हर पल का जो ये साथी बन गया है ना आकाशवाणी। 8 जून 1936 को भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया था और सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। एक ऐसी विरासत जो आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। आकाशवाणी देश की 98% आबादी तक पहुंच रखता है। वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज

जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्श पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी हमारे विशाल देश के विभिन्न हिस्सों में 24 घंटे सातों दिन प्रमुख भाषाओं में समाचार और मनोरंजन उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से तो 90 सालों से हमारा हमसफर है ये आकाशवाणी। ये आकाशवाणी यूं ही फलती फूलती और बढ़ती रहे। घर आंगन कार्यक्रम में मैं और मेरे साथी लगातार इस विषय पर आपको नई जानकारियां देते रहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि आकाशवाणी सदा हमारे साथ है।

मेरा साया, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। सुख हो या दुख, हर पल का साथी है आकाशवाणी, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती यानी आकाशवाणी 8 मई 2026 को एक मैराथन वॉकथन आयोजित कर रहा है। इसके लिए आकाशवाणी रंग भवन के सामने औपचारिक रूप से स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट भी बनाए जाएंगे। प्रतिभागी इस संबंध में 7 मई 2026 को शाम 4 से 6 बजे तक कक्ष 247 सेकेंड फ्लोर, जी हां, कमरा नंबर 247 सेकेंड फ्लोर आकाशवाणी भवन से संपर्क कर सकते हैं। और इन 90 सालों के सफर में आकाशवाणी भारतीय सिनेमा के समानांतर ही महिलाओं के सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है घर आंगन, चूंकि महिलाओं का खास कार्यक्रम है, और आज हम बात करेंगे फिल्मों में महिला चरित्रों और पात्रों की। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य शुक्ल का कहना है, साहित्य समाज का दर्पण है। यकीनन साहित्य समाज का दर्पण होता भी है, परंतु उसी के साथ साथ जब हम समाज के एक अन्य पहलू सिनेमा पर बहस करते हैं तो सिनेमा को भी समाज और साहित्य का दर्पण माना जाना चाहिए। चूंकि सिनेमा का मूल उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना होता है, इसलिए साहित्यिक कृतियों के जरिए दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो जन जन से जुड़ा हुआ है। इसलिए फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों को फिल्माने में थोड़ी छूट भी ली है। लेकिन इस पक्ष का एक दूसरा पहलू ये भी है कि फिल्मों के माध्यम से साहित्यिक रचनाओं को बड़े पैमाने पर पहचान भी मिलती रही है। भारतीय सिनेमा के एक शताब्दी पूर्ण हो जाने के बाद भी इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब भारतीय सिनेमा के आरंभिक दशकों में जो फिल्में बनती थी उनमें भारतीय संस्कृति की महक रची बसी होती थी और विभिन्न आयामों से भारतीयता को उभारा जाता था। हमारे भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर कही जा सकती है, तभी इसकी परिधि में वसुधैव कुटुंबकम के सारे सूत्र आ जाते हैं, जिसका परिणाम हमें समाज में और सिनेमा में महिलाओं की समस्याओं को रखते हुए कुछ फिल्मों के नाम ये में याद आ जाते हैं जिसमें महिलाओं की समस्याएं भी दिखाई गई हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जहां महिलाओं की शक्ति भी दिखाई गई है। एक समय था जब हमारे पास देविका रानी थी और पहली भारतीय महिला फिल्म निर्देशक फातिमा बेगम थी जिन्होंने बुलबुले परिस्तान बनाई थी। दुर्गा खोटे थी जो एक असाधारण फैमिली से आई थी और उस समय उन्होंने ये फैसला लिया था जब फिल्मों में आना अच्छा नहीं माना जाता था। मदरनिया में नरगिस ने जो भूमिका निभाई वो संभवतः भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित महिला किरदार है। वहीं मुगले आजम में दूसरी यादगार भूमिका जो निभाई वो मधुबाला ने निभाई। 1950 के दशक की बात करें तो सारा दशक नूतन, वैजयंती माला, वहीदा रमान जैसी सशक्त अभिनय वाली अभिनेत्रियों से पर्दे पर समाया रहा। उन्हें बेजोड़ साथ मिलता गया लता जी के स्वरों का। अब नरगिस अभिनीत मदर इंडिया, नरगिस के अभिनय और लता मंगेशकर के गीतों के अलावा उसमें कुछ याद आपको नहीं रहेगा, सिर्फ नरगिस ही नरगिस नजर आएंगी या नजर आएंगे। आपको याद रह जाएंगे लता मंगेशकर के गीत जो आकाशवाणी हमेशा बजाता है। कुल मिलाकर हिंदी फिल्मों की दृष्टि में 1950 का जो दशक था वो संगीत में रहा, और ये भी कह सकते हैं कि पूर्णता स्त्री प्रधान रहा। नूतन अभिनीत कोई भी फिल्म उठा लीजिए उस टाइम की, क्या आप उसे भूल पाते हैं? सीमा, सुजाता, बंदिनी, नूतन के बेमिसाल अभिनय को प्रस्तुत करती हुई इन भूमिकाओं को नूतन ने अमर बना दिया।

0: बंदिनी फिल्म का ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो

गया है। वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

हम बात कर रहे थे फिल्मों में महिला चरित्रों की, महिला पात्रों की। अब पुराने दशक में महिलाओं के जो चरित्र दिखाए जाते थे वो बहुत मजबूत दिखाए जाते थे, और मैंने कहा ना कि फिर सिनेमा में भारतीय संस्कृति की झलक होती थी। ये विषय जो है ना मनोरंजन का नहीं बल्कि समाज के बदलते नजरिए की कहानी भी है। फिल्मों में महिला किरदार कैसे दिखाए जाते हैं ये बहुत हद तक ये तय करता है कि समाज उन्हें कैसे देखता है। शुरुआती दौर में सीमित और रूढ़ छवि हुआ करती थी। पुरानी फिल्मों में महिला पात्र अक्सर कुछ तय दायरों में बंधे होते थे, जैसे त्यागमयी माँ, निरुपराय के जितने भी किरदार हैं वैसे ही हैं, आदर्श पत्नी की, प्रेमिका की जैसी भाभी फिल्म में है, या फिर वैम्प नकारात्मक छवि हेलन या बिंदु जैसी। उनका मुख्य काम होता था कहानी के नायक की कहानी को आगे बढ़ाना, और खुद की स्वतंत्र पहचान उनकी कम ही दिखती थी। अब थोड़ा बदलाव का दौर आया, मजबूत पहचान की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिल्मों में महिलाओं को मजबूत और केंद्र में दिखाया जाने लगा, जैसे मदर इंडिया में नरगिस का संघर्षशील किरदार। और देखिए मदर इंडिया की बात करें तो फिल्म का जो पोस्टर था उसमें नरगिस जो है वो हल को कांधे पर उठाए हुए दिखाई देती हैं। ये बहुत प्रगतिशील पोस्टर था क्योंकि उस वक्त महिलाओं के लिए ऐसा नहीं सोचा जाता था कि कंधे पर हल लेकर महिला खेत में जा रही है, और यही फिल्म का पोस्टर है। सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल इसी बात की पहचान है। यहां महिलाएं सिर्फ सहायक नहीं बल्कि कहानी की धुरी बननी शुरू हो गई। आराधना फिल्म में आप शर्मिला टैगोर का किरदार देख सकते हैं। और लेकिन आज के दौर की बात करें उसमें विविधता है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। आज की फिल्मों में महिला पात्र पहले से ज्यादा रियल और विविध है। जैसे क्वीन फिल्म में आपको कंगना राणावत की आत्मनिर्भरता दिखाई देगी, राजी फिल्म में जो आलिया भट्ट है उसमें देशभक्ति और साहस दिखाई देगा, थप्पड़ फिल्म में तापसी पन्नू को आपने देखा उसमें आत्मसम्मान की कहानी है। अब महिलाएं सिर्फ किरदार नहीं बल्कि अपनी कहानी खुद लिखने वाली नायिका बन रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी महिलाएं आगे आ रही हैं। फिल्मों ने स्त्री जीवन के पारिवारिक और सामाजिक सवालों को ही नहीं उठाया है बल्कि राजनीतिक सवालों को भी उठाया है। उदाहरण के तौर पर स्त्री जीवन पर केंद्रित कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र लाजमी है, सूरज का सातवां घोड़ा, दामिनी, बैंडिट क्वीन, मम्मो, फायर, सरदारी बेगम, मृत्युदंड, गॉड मदर, हरी भरी, गजगामिनी, अस्तित्व, जुबैदा, क्या कहना, चांदनी बार, जख्म, फिजा। ये सभी फिल्में हैं जिसमें स्त्री जीवन के महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें अभिव्यक्त भी किया गया है, और स्त्री जीवन का महत्वपूर्ण जो नजरिया है वो हमें दिखाया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और ये आज भी समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है। यदि हम मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की बात करें तो महिलाएं अब सशक्त हुई हैं।

घातक फिल्म में ये गीत आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुना। महिलाओं की बात चल रही है और अब हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत हैं। 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाते समय बरेली के निकट एक हादसे में अरुणिमा अपना एक पैर गंवा बैठी थी। जी हां, इतना बड़ा हादसा हुआ अरुणिमा सिन्हा के साथ जो वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और हेड कांस्टेबल के पद पर भी कार्यरत थी। अब उनका एक्सीडेंट हो गया, एक हादसा हो गया, अरुणिमा अपना पैर गंवा बैठी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पैर गंवा चुकने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नहते हैं जज्बा। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों का प्रतिनिधित्व भी किया था। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारतीय संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस दिव्यांग महिला को सोनपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अम्बेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अम्बेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा भी गया। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी हैं। वो भारत की पहली और दुनिया की सबसे पहली ऐसी दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, किलीमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट कैसियस्को, एकॉनकागुआ, डेनाली और विंसन मैसिफ की चोटियों को फतह किया है। वो 7 बार भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनका लक्ष्य हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है और वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। 2014 तक वो 6 चोटियों को फतह कर चुकी थी। एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलीमंजारो और बाकी नाम भी हमने आपको बताए ही हैं। 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विंसन की उन्होंने अंतिम चढ़ाई पूरी की। इसे अरुणिमा सिन्हा के महान जज्बे को हम सलाम करते हैं।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना हावड़ा ब्रिज फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में। आज सारी बातें हम घर आंगन प्रोग्राम में महिलाओं की कर रहे हैं। अब इतने सारे आपने फिल्में देखी हैं, इतने सारे आपने प्रोग्राम सुने हैं, अब आकाशवाणी 90 सालों से लगातार आपके साथ है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तो इसमें ये भी तो है ना कि आप ही तो हमें बताइए ना कि आकाशवाणी कैसे 90 सालों से आपके साथ है और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। हम आपको अपना ईमेल आईडी बता देते हैं, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। इस पर आप बता सकते हैं कि किस तरह से आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ है और कैसे आपका मनोरंजन कर रहा है और हमारा ये कार्यक्रम घर आंगन आपको कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण में नारीवादी दृष्टिकोण की। जी हाँ, कहते हैं ना महिलाएं महिलाओं की दुश्मन है, और ये क्यों कहा जाता है, और ऐसा हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। महिलाएं महिलाओं का साथ भी देती हैं, लेकिन ये है ना कि अब एक कमजोर कड़ी आपने पकड़ ली तो आप बोल देंगे। अब महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना है, ताकि वो पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त कर सके। ये शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पितृसत्तात्मक भेदभाव को चुनौती देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रक्रिया है। सरकारें सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जैसी योजनाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं। जी हाँ, एक पिंक स्मार्ट कार्ड है जो बसों के लिए है। बसें बिल्कुल मुफ्त हैं दिल्ली में। आप एक किसी भी डिपो में जाकर सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं और बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। अब महिला सशक्तिकरण में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। हर महिला शिक्षित होनी चाहिए। ज्ञान और आत्मविश्वास के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं, उनसे क्षमता में, आपकी एबिलिटी में विकास होता है। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। रोजगार दिए जाए ताकि वित्तीय निर्भरता भी महिलाओं को प्राप्त हो। सामाजिक समानता यानी भेदभाव को समाप्त करना, और पुरुषों के समान सम्मान और समान वेतन भी महिलाओं को मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। निर्णय लेने की शक्ति, परिवार और समाज में अपने जीवन से संबंधित फैसले महिलाओं को खुद लेने होंगे, उसका अधिकार उनके पास होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये सही सशक्तिकरण है। आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए।

देश की लगभग 50% आबादी की आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसका लाभ क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, महिलाओं के सशक्त होने से गरीबों का उन्मूलन होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, समग्र आर्थिक विकास में तेजी आएगी, बेहतर जीवन स्तर होगा, क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी, शिक्षित होंगी, तो परिवार भी स्वस्थ और शिक्षित रहेगा, पोषण स्तर में सुधार होगा और कंपनियों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। महिला सशक्तिकरण केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक विकसित राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है ये। अब इसमें नारीवादी दृष्टिकोण कहां से आता है? आप कहेंगे कि मैंने नारीवादी दृष्टिकोण की बात की थी, इस बारे में तो बात कर लें। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना जगाने के लिए नारीवादी दृष्टिकोण दो तरीकों से काम करता है। एक तो चेतना जगाना, महिला सहयोग के साथ साथ परस्पर विरोधी विचारों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए नारीवादी अक्सर चेतना जगाने के तरीके इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। महिलाएं न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में जान पाती हैं, बल्कि ये भी समझ पाती हैं कि ये संघर्ष राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। सहयोग के साथ साथ परस्पर विरोधी विचारों पर भी खुलकर चर्चा करनी होगी, यानी महिलाओं को चर्चा एक मंच तैयार करना होगा, आपस में बात करना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोबिलाइजेशन यानी स्वयं संगठित होने के लिए भी प्रेरित होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से महिला प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उनमें समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं, इसलिए समाज के बारे में ज्ञान और दृष्टिकोण का एक नया संसार देखने को मिलता है। और इसलिए महिलाओं को आगे आना होगा, अपना सशक्तिकरण महिलाओं को स्वयं करना होगा, इस बारे में ध्यान देना होगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकती हैं।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और अब कार्यक्रम घर आंगन से राधा पाठक को दें इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे घर का आंगन कार्यक्रम को लगातार सुनते रहिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।
1: घर आंगन
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के दो विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय के राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसी शख्सियत की जिनकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। यूं तो इन्हें पहचान मिली एक गीतकार के रूप में, लेकिन उन्होंने कोरियोग्राफी, एक्टिंग और म्यूजिक डायरेक्शन में भी नाम कमाया। और कमाल की बात यह है कि उनके काम ही नहीं बल्कि उनके नाम में भी प्रेम है। जी हाँ, जरा सोचिए तो किन की बात कर रही हूं मैं। गाना सुनाती हूँ, आप अंदाजा लगाइए।

0: हटा दो।
1: बिल्कुल, हम भी पर्दा हटा देते हैं, आपको बता देते हैं कि आज हम किन की बातें करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो गाना है ये आपने सुना, एक फूल दो माली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, संगीतकार थे रवि और इस गाने को लिखा है प्रेम धवन ने। जी हाँ, जिनकी आज हम बातें करने वाले हैं। प्रेम धवन सिर्फ एक गीतकार ही नहीं थे बल्कि कोरियोग्राफर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने। दोस्तों, प्रेम धवन एक ऐसे गीतकार थे जिनके लिखे गानों को हम अक्सर गुनगुनाते हैं, उनके गाने बहुत मशहूर रहे हैं। इस दौर में भी उनके कई गीतों को खूब सुना जाता है, भले ही लिखने वाले का नाम किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन उनके लिखे हुए गाने आपने ज़रूर सुने होंगे। प्रेम धवन का जन्म हरियाणा के अम्बाला में हुआ था 13 जून 1923 को। उनके पिता जेलर थे। प्रेम का आना जाना भी अक्सर जेल में लगा रहता था और वहाँ उनकी मुलाकात राजनीतिक कैदियों से हुआ करती थी। वो आज़ादी की लड़ाई वाला दौर था। प्रेम उन लोगों से मिलते और उनमें भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ता। इस माहौल का असर ये हुआ कि प्रेम धवन की राजनीतिक समझ बढ़ी और वो भी देश प्रेम पर लिखने लगे।

0: लग जा गले दिलबा।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म 10 लाख से ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं आज प्रेम धवन की, मशहूर गीतकार, कोरियोग्राफर, एक्टर, जी हाँ, और साथ में म्यूज़िक डायरेक्टर भी। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही प्रेम धवन कॉलेज यूनियन का हिस्सा रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने लेखन से युवाओं को जागृत किया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रेम धवन ने एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और वहां उस जमाने के बड़े बड़े कलाकार जैसे कि गुरुदत्त, बलराज साहनी, साहिल लुधियानवी और सलील चौधरी आया करते थे। थिएटर से जुड़ने के बाद प्रेम धवन का फिल्मों से लगाव बढ़ गया। इन कलाकारों का असर उन पर हुआ और उन्होंने लेखन, अभिनय, कोरियोग्राफी के अलावा शास्त्रीय संगीत भी सीखा। उदय शंकर और रवि शंकर उनके गुरु थे।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में जबक फिल्म का ये गाना जिसे लिखा है प्रेम धवन ने, आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं प्रेम धवन की, जो कि एक मशहूर गीतकार रहे हैं, कोरियोग्राफर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक्टिंग भी की है। आज उनके कंपोज किए कुछ गाने हैं, कुछ उनके लिखे हुए गाने हैं और कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन गानों का संगीत उन्होंने दिया है। दोस्तों, प्रेम धवन को सीखने का बहुत शौक था। लेखन और संगीत की शिक्षा के बाद आगे चलकर उन्होंने शांतिवर्धन रॉय से नृत्य भी सीखा। जी हाँ, कोरियोग्राफर रहे हैं वो। फिल्मों से जुड़ने के लिए उन्होंने संगीतकार खुर्शीद अनवर से मुलाकात की। खुर्शीद को प्रेम बहुत पसंद आए, उनकी काबिलियत उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने प्रेम को असिस्टेंट के तौर पर अपने यहाँ काम दे दिया। कुछ साल के बाद आखिरकार प्रेम को अकेले अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। साल 1946 में एक फिल्म आई थी धरती के लाल, इसमें उन्होंने एक गीतकार के रूप में शुरुआत की थी अपने फिल्मी सफर की। इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे, जैसे आराम, तराना, शोला और शबनम, काबुली वाला, एक फूल दो माली, पूरब और पश्चिम और बहुत सारी फिल्में हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको एक बहुत अलग सा, डिफरेंट सा गाना सुनाने वाली हूँ वक्त फिल्म से। ये गाना मैं आपको इसलिए सुनाने वाली हूँ क्योंकि इस फिल्म के लिए कोरियोग्राफी की थी प्रेम धवन ने।

मन्ना डे की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना वक्त फिल्म से। और दोस्तों, इस गाने को कोरियोग्राफ किया था किसने? प्रेम धवन ने, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। और दोस्तों, प्रेम धवन एक बेहतरीन गीतकार के तौर पर जब पहचान बना चुके थे तो कुछ कम बजट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए वो म्यूजिक भी साइड बाय साइड कंपोज कर रहे थे। अब मनोज कुमार उनके इस हुनर से वाकिफ थे। वो जानते थे कि प्रेम धवन की जो संगीत की समझ है वो बहुत ज्यादा है। साल 1964 में जब मनोज कुमार शहीद फिल्म में काम करने वाले थे तो उन्होंने संगीतकार के लिए प्रेम धवन के नाम को सुझाया और बाकायदा शर्त रख दी कि मैं फिल्म में तभी काम करूंगा जब फिल्म का जो म्यूजिक है वो प्रेम धवन तैयार करेंगे। अब फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं केवल कश्यप, उन्होंने तुरंत ही ये शर्त मान ली और प्रेम धवन ने भी मनोज कुमार के भरोसे का पूरा मान रखा। शहीद फिल्म का जो संगीत है वो सुपर डुपर हिट रहा था दोस्तों। चलिए इसी फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी FM गोल्ड।

उम्मीद करती हूँ कि गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। जब किसी ऐसे कलाकार की बातें होती हैं ना जिन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके अच्छे

गाने निकाल कर लाना, क्योंकि मुझे सारे बढ़िया लगते हैं, मुझे लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो उनमें से 6-7 गाने निकाल कर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, गाने अच्छे लेकर आई हैं निकाल कर। वैसे बताऊँ आपको दोस्तों कि शहीद फिल्म के, जिसका मैंने अभी आपको गाना सुनाया, लगभग सभी गाने सुपरहिट रहे और इस फिल्म के सभी गीतों को प्रेम धवन ने ही लिखा था और उन्होंने ही कंपोज किया था। एक बहुत ही शानदार फिल्म ये रही है, आइकॉनिक फिल्म ये रही है। दोस्तों प्रेम धवन एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे, गीत लिखने, म्यूजिक कंपोज करने के अलावा उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की। शायद आपको याद हो नया दौर फिल्म का वो सदाबहार गीत, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, ये गाना अक्सर मैं भी किसी को सुनाती हूँ जब उनकी जुल्फें उड़ती हैं तो इस गाने को प्रेम धवन ने ही कंपोज किया था। इसके अलावा 2 बीघा जमीन, आरजू, धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई और वक्त जैसी फिल्मों के लिए भी डांस डायरेक्टर रहे थे प्रेम धवन। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, प्रेम धवन ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है, जैसे कि गूंज उठी शहनाई और वचन। फिलहाल मैं आपको वो गाना सुनाती हूँ जिसकी अभी मैंने तारीफ की, नया दौर फिल्म का गाना, आपको कहीं नहीं है जाना।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में नया दौर फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं प्रेम धवन की। प्रेम धवन, जिन्हें मोहब्बत ही अपने काम से, गीतों से, संगीत से, अभिनय से, और उन्हें बहुत सारा प्यार भी मिला सुनने वालों से, देखने वालों से। कोई उनके लिखे गीतों का दीवाना रहा तो किसी को पसंद आया उनका संगीत, कभी उन्हें सराहा गया एक कोरियोग्राफर के तौर पर। दोस्तों, प्रेम धवन को फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए 1971 में नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट लिरिक्स, और साल 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का एक गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी फिल्मों में, मतलब कई फिल्मों में प्रेम धवन ने एक्टिंग भी की है, जिनमें से एक फिल्म थी ये गूंज उठी शहनाई, इसमें बंजारे की भूमिका निभाई थी उन्होंने। दोस्तों आज प्रेम धवन की पुण्यतिथि है, इसलिए हमने उनको याद किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब मैं वो गाना आपको सुनाने वाली हूँ जिसके लिए खास तौर पर उन्हें याद

0: मन्ना डे की आवाज में प्रेम धवन का लिखा ये बहुत ही प्यारा सा गाना काबुली वाला फिल्म से ये यादगार सदाबहार गीत सुने बिना तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस गया हो हमारा, हम जरूर सुनते हैं इस गाने को। तो ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिलहाल वक्त चला है मेरे जाने का, आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM गोल्ड। मिलते हैं फिर आपसे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निजाम को नीस्तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। रूस ने 9 मई को अगर यूक्रेन ने विक्ट्री डेट तकरीबात में रखना अंदाजे की कोशिश की तो कीव पर जवाबी हमलों की वार्निंग दी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी को मात देने और इसके ढांचे को तहस नहस करने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पूरा होने के मौके पर कही। जनाब मोदी ने ये भी कहा कि भारत की मुसल्ला फौजों ने ऑपरेशन के दौरान अपनी शुजात, बहादुरी और ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया है जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम में मासूम भारतीयों पर हमला करने की जुर्रत करने वालों को भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज को उनकी शुजात के लिए सलाम करता है। हमारे नामा निगार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी मुसल्ला अफवाज की पेशावराना सलाहियत और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल का सबूत है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें तलफ हो गई थीं। ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल लाइन के उस पार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसे तबाह करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत की मुसल्ला अफवाज ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों, उन्हें तरबियत देने वालों, उनके आकाओं और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेशतर दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और वह जंगबंदी के लिए मजबूर हो गया। इस ऑपरेशन को भारत की दिफाई तारीख में कौमी अज़्म मुसम्मम, फौज की शानदार कारकर्दगी और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल के तौर पर याद रखा जाएगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी से निमटने के भारत के पुख्ता अज़्म और उन सभी कुव्वतों के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई करार दिया जिनसे मुल्क के इख्तदारे आला और शहरियों के तहफ्फुज़ को खतरा लाहिक है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहलगाम के वहशियाना हमले का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को आज एक बरस मुकम्मल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी के एजाज में सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को तब्दील किया है। उन्होंने हमवतनों पर भी जोर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज के एहतराम और उनकी कामयाबी के लिए सोशल मीडिया के अपने सभी हैंडल पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर तब्दील करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्ला अफवाज ने गैर मामूली शुजात, मखसूस कार्रवाई की अपनी सलाहियत और पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया था। भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी का एक मजबूत और मखसूस जवाब था। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क के इस मुंहतोड़ जवाब को उजागर किया।
3: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
4: साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। विजय की गवर्नर से ये दूसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि गवर्नर ने ही विजय को मुलाकात के लिए बुलाया था। इस बात का इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद गवर्नर केरलम के लिए रवाना हो जाएंगे। विजय ने कल भी गवर्नर से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी पार्टी के नौ मुंतखब एमएलए की फेहरिस्त नीज कांग्रेस की तरफ से हिमायत से मुतालिक मकतूब सौंपा।

0: था। वीसी के रहनुमा तिरुमवलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज होने वाली लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के बाद ये तय करेगी कि आया विजय की पार्टी की हिमायत की जाए या नहीं। उनकी पार्टी से 2 MLAs हैं। लेफ्ट जमातों ने गवर्नर से अपील की है कि सबसे बड़ी पार्टी TVK को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अक्सरियत असेंबली में साबित की जा सकती है। तमिलनाडु में DMK के सरबराह MK स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी अवाम के दिए गए इस फैसले की इज्जत करती है कि एक नई पार्टी रियासत में बरसरे इख्तदार आए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी दोबारा इंतखाब कराना या कोई आईनी बहरान नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई हुकूमत की तश्कील की राह में नहीं आएगी। जनाब स्टालिन ने इन अफवाहों को मुस्तरद किया कि नई हुकूमत साजी के लिए DMK और AIADMK के दरमियान बातचीत चल रही है। पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने की राह हमवार हो गई है। वजीर आला ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर को साथी तौर पर इस्तीफा सौंपा। काबिल जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के पेश नज़र कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुदुचेरी की 15वीं कानून साज असेंबली को तहलील किए जाने के अहकाम जारी किए थे। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज अपनी हुकूमत में तौसी की है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को काबीना में बतौर वुजरा हलफ दिलाया गया। इनमें भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन साहनी, संतोष कुमार सुमन, रामकृपाल यादव, नितिन मिश्रा, दामोदर यादव, संजय सिंह और अशोक चौधरी शामिल हैं। पटना के गांधी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर नितिन नबीन के अलावा मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा और काबीना के मेंबर शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दी है कि आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों को निकालने की खातिर मनसूबाबंद बहरी कार्रवाई को रोक दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से इस मिशन में अमरीकी तैयारे के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इतवार के रोज ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से हैरान हो गए थे। खबरों में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, लेकिन वो मुआहिदा करने में नाकाम रहे। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने मई की 9 तारीख को यौम फतह की तकरीबात में रखना डालने की कोशिश की तो कीफ पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस की वजारत दिफा ने सिफारती मिशनों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात के तौर पर कीफ से अपने अमले और शहरियों को निकाल लें। यौम फतह रूस की सबसे ज्यादा अहम कौमी तातीलात में से एक है और ये दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की कामयाबी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे कबल कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 236 रन का निशाना दिया था, लेकिन वो 202 रन ही बना पाई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निज़ाम को नीस्तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। TVK के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात

0: साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता

0: चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते है कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते है दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात और लेकर

0: हाजिर हैं एक बार फिर आपके समक्ष हूं मैं नीरा और आज मेरे साथ हैं
1: अमित तेवतिया
0: जी।
1: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान की बात में प्रत्येक दिन आपसे बातचीत होती है, विशेषज्ञों की सलाह आप तक पहुंचती है और एक कोशिश होती है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो वैज्ञानिकों की जो दृष्टि है, जो अनुसंधान है, उसके हिसाब से ही खेती करें ताकि उत्पादन अच्छा हो और लागत भी कम से कम आए।
0: बिल्कुल अमित, तो और ऐसा होता है कि हमेशा हर किसान की एक मंशा तो रहती है कि लागत जो है वो कम हो और मुनाफा जो है वो अधिक से अधिक हो। और भाई ऐसा सोचें भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है और कई महीनों की मेहनत ऐसी होती है और जब वो रंग लाती है तो अपने आप उसका जो असर है वो खेती में भी दिखता है, आपके खेतों में तो दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ दिखता है किसानों के चेहरों पर भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा नीरा, क्योंकि भाई किसान भाई बहन जो परिश्रम करते हैं, जो कोशिश करते हैं, यदि वो सफलता की ओर उन्हें मिल जाए और खेत खलियान खिलखिलाते रहें तो निश्चित ही कहीं ना कहीं किसान का मन भी खुश होता है और हमारी जो सरकार है वो भी यही चाहती है, वैज्ञानिक भी यही चाहते हैं, कार्यक्रम किसान की बात भी यही चाहता है।
0: बिल्कुल अमित, और साथ ही साथ ना एक चीज और भी है, जो खेती सदियों से चली आ रही है आजकल आपने देखा है कि नए नए जो है ना वो जिसको हम कहेंगे कि अनुसंधान भी हो रहे हैं और खेतों में भी हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर लक्ष्य वही है कि प्रगति की ओर बढ़ना है।
1: यानी कि नीरा, हम कह सकते हैं कि आज जब हम जाते हैं कहीं, कई बार ब्याह शादियों में जाते हैं और फ्रूट्स होते हैं, देखते हैं तो कई बार पूछना पड़ता है कि कौन सा फ्रूट है,
0: कौन सा फ्रूट है।
1: तौर पे हम देखते हैं भाई, उन्हें तो सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसी फल सब्जियां आज बाजार में हैं जिनका नाम पूछना पड़ता है।
0: और साथ ही साथ हमें ऐसा भी होता है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन फ्रूट्स के अंदर अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इतनी भरपूर मात्रा में होता है कि जैसे एक कहावत है ना कि दीपक तले अंधेरा, बस वैसा सा हो जाता है कि हमारे समक्ष, हमारे सामने इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और खेती के नजरिए से देखें तो भी बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता।
1: बिल्कुल, जब बात पोषक तत्वों की, कई बार होता है ना जब डेंगू होता है, बीमारी होती है, तो कई बार कहते हैं कि कीवी लेके आओ, कीवी खिलाओ।
0: बिल्कुल,
1: तब एक स्पेशल फल हो गया तो उसका भाव निश्चित रूप से अधिक होगा, लेकिन जब हम किसान भाइयों के हिसाब से बात करें कि हमें किसमें अधिक आय हो सकती है तो क्यों ना ऐसे फल लगाए जाए, ऐसी सब्जियां हम भी बोएं जो अधिक से अधिक लाभ हमें दे करके जाए। इनके बारे में जाने कैसे, कहां से इनके बारे में जानकारी मिले, तो इसी के लिए कार्यक्रम किसान की बात हमारा होता है, जहां हम वैज्ञानिकों के द्वारा आपको ऐसी जानकारियां दिलवाते हैं कि जिनमें आप जानते हैं ऐसे विषयों के बारे में, ऐसे फलों के विषय में, ऐसी सब्जियों के विषय में कि जो कहीं ना कहीं हमारी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है जागरूकता की।
0: और ऐसा ही ठीक एक फल जिसकी आज हम बात करने वाले हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको इस पर देंगे पूर्ण जानकारी कि ये कौन सा फल है और इसे लगाने से क्या फायदे होते हैं, सेहत के दृष्टि से बात करें या फिर हम खेती किसानी की बात करें, हर तरीके से लाभ ही लाभ है इसे लगाने के बाद।
1: जी हाँ, जो हमारे शिक्षित किसान भाई बहन हैं, जो अभी भाई कृषि बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, जानते हैं कि हम ड्रैगन फ्रूट्स आपने सुना है।
0: हाँ।
1: लेकिन जो हमारे पुराने किसान भाई बहन हैं जो अभी मतलब दूर हैं कहीं ना कहीं, तो कार्यक्रम किसान की बात से जुड़े होंगे तो आज वो भी जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। और एक उम्मीद होती है कि क्यों ना हम लगाएं, लेकिन जब ये कोशिश की जाती है कि कैसे लगाएं तो अब इसकी जानकारी कहां से मिले।
0: हाँ बिल्कुल अमित, और आपको पता है कि ड्रैगन फ्रूट को सुपर फूड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इसे पोषण की दृष्टि से देखते हैं तो अत्यंत पौष्टिक भी है, उच्च मूल्यों वाला भी है, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें ना फायदे ही फायदे हैं, विटामिन सी की बात करें या फिर फाइबर की बात करें, आयरन की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, ये हर एक ऐसा गुण इसमें मौजूद है जो हमारे शरीर को भी चाहिए। और वाकई जब ऐसी खेती हमारे खेतों में होगी तो फिर तो लाभ ही लाभ है।
1: और जैसे आपने कहा कि भाई ये तो हम कहें कि शरीर की दृष्टि से, हमारे उपभोग की दृष्टि से, लेकिन जब उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो ये कम सिंचाई में हमारे किसान भाई बहन इस फसल को प्राप्त कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स का जो उत्पादन है वो जहां सिंचाई कम, हमें लगता है कि भाई हमारे खेतों में यहाँ पानी नहीं जाता है या पानी की कमी है, तो ऐसे में भी हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पर आपको हम जानकारी दिलाएंगे। आज का विषय अब साफ है, ड्रैगन फ्रूट्स के उत्पादन की संभावनाएं, और इस विषय पर जो जानकारी देंगे डॉक्टर विश्वजीत सिंह, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। मित्रों आइए सभी लाभ उठाते हैं इस बातचीत का।
2: किसान भाई नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में हमेशा किस्मों, फसलों और फलों की बात करते रहते हैं, कभी कभी हम फूलों की भी बात करते हैं, लेकिन जो हमारे देश में पैदा होते हैं उन पर भी बात करते हैं, और कभी कभी हम कुछ विदेश में सब्जियां उगाई जाती हैं उनको भी अपने देश में ला करके उगाया जा रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे फल की बात करेंगे जो किसी

0: दूसरे देश से आया है, अपने देश में नहीं उगाया जाता था, लेकिन अब उसकी अपने देश में शुरुआत हो चुकी है। आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की। ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, किस तरीके से उगाया जाता है और किस तरीके से इसकी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी, जो कि युवा पेशेवर हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये ड्रैगन फ्रूट है क्या।
1: ये जो ड्रैगन फ्रूट है, मूलतः इसकी उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिणी मेक्सिको में माना जाता है। यह एक नागफनी वर्ग का पौधा है जो कि कम पानी में गर्म जलवायु में भी फल उत्पादन करने की क्षमता रखता है। जिसमें कोरोना के पश्चात आपने देखा होगा ड्रैगन फ्रूट की मांग बहुत बढ़ी, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्वों की बहुत प्रचुर मात्रा होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ए, बहुत सारी इसमें पोषक तत्व होते हैं, जिससे इसका मांग ना कि हर एक घर में बल्कि आप देखेंगे होटल्स में भी बहुत सारे पदार्थों में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका मार्केट में आपने अनुभव किया होगा, हर दुकान पे कम से कम एक ड्रैगन फ्रूट आप लेना चाहें तो उसके लिए आपको 200-250 रुपए तक का पैसा चुकाना पड़ता है। हम ये कहना चाहें कि किसान इससे बहुत लाभ कमा सकते हैं इसका उत्पादन करने से।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अगर इसको उगाने की हम बात करें तो यह यहाँ के लिए क्या अपने देश में जलवायु उपयुक्त है और किस तरीके की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है।
1: यह एक उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय में उगाया जाने वाला पौधा है। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। जैसे आप अपने नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लें या आप साउथ में भी चले जाएं, तो इसके लिए जो तापमान है करीबन 20 से 35 डिग्री के आसपास चाहिए होता है। साथ में अगर हम मृदा की बात करें, अगर आप इसका उत्पादन आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से करें तो ये लगभग हर प्रकार की मृदा में फल उत्पादन की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उच्चतम बलुई दोमट मिट्टी और उच्चतम जल निकास की अगर सुविधा हो तो यह फल अत्यधिक उत्पादन देने की क्षमता रखता है।
0: बिल्कुल, मतलब पानी इकट्ठा ना होता हो वहां पर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो जब कोई उगाना चाहता है तो क्या इसके लिए उसको कोई ट्रेनिंग या किसी तरीके की जरूरत पड़ती है कि आम आदमी कोई भी उगा सकता है?
1: यह बहुत आसानी से उगाया तो जा सकता है, लेकिन इसमें एक समस्या होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, नागफनी परिवार का ये
0: कांटे होते हैं।
1: हाँ, और साथ में ये बेलनुमा पौधा है, अर्थात ये क्रीपर की तरह चढ़ता है
0: जी।
1: इसका खुद का मजबूत तना नहीं होता, इसलिए इसे उगाने के लिए थोड़े टेक्निक जानने की आवश्यकता होती है। इसका हम जो खेती करते हैं कई तरीके से करते हैं, खास करके दो तरीका चलता है। पहला पोल का यूज करके और दूसरा होता है ट्रेलिस सिस्टम से। ट्रेलिस सिस्टम आप ऐसा कह सकते हैं बहुत सघन बागवानी का टर्म है, जिसमें पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो और जो किसान बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, हमारे संस्थानों से विजिट करके थोड़ा बहुत जानकारी लेके खंभों में पोल का उपयोग करके भी उत्पादन कर सकते हैं, तो हाँ इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा।
0: देखो, बिना जानकारी के कोई कार्य अगर शुरू करते हैं तो उसमें आपको फायदे के साथ साथ नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो अगर कोई भी करना चाहता है, मान लीजिए उसने कहीं से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन क्या जिस तरीके से हमारी फलों में बहुत सी किस्में होती हैं
1: जी,
0: क्या इसमें भी अलग अलग किस्में हैं कि कोई एक ही प्रजाति है जिसको उगाया जाता है?
1: इसमें मुख्यतः तीन प्रकार की किस्में होती हैं। पहला जो किस्म होता है जिसमें लाल गूदे के साथ लाल छिलका होता है, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा किस्म होता है सफ़ेद गूदे के साथ लाल छिलका, और जो तीसरा किस्म होता है सफ़ेद गूदे के साथ पीला छिलका, जिसे लोग पिताया भी कहते हैं। लेकिन हमारे मार्केट में, खास करके अपने देश में, लाल ड्रैगन फ्रूट का मतलब लाल ही समझा जाता है। आपने देखा भी होगा मंडियों में भी
0: अधिकतर लाल ही बिकता है, जिसमें काले बीज होते हैं।
1: जी,
0: मतलब आपने तीन रंग के बताए
1: जी,
0: तो क्या इसकी पौष्टिकता में भी कुछ अंतर होता है?
1: थोड़ा बहुत होता है। जैसा कि हमें पता है जो लाल कलर है वो कैरोटीन को बताता है, रंग के भी अपने अलग अलग विटामिन होते हैं, विटामिन के संकेत होते हैं। तो हाँ, अगर हम बात करें कलरफुल वाली, तो लाल कलर वाला जो आपका ड्रैगन फ्रूट है इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी मात्रा ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है।
0: लेकिन कोई भी

0: इसको लगाना चाहता है तो वो किस तरीके से, क्या इसका बीज मिलता है या इसके पौध रोपण सामग्री मिलती है?
1: आप बीज से भी उगा सकते हैं लेकिन एक बहुत लंबा समय आपको लगेगा, तो इसलिए हम ज्यादा किसानों को यही बताते हैं कि आप अच्छे मात्र वृक्ष को सेलेक्ट करें और उसकी कटिंग लगा दें। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, आप ऊपरी भाग से 25 से 30 सेंटीमीटर का एक तिरछा कट लगाइए, आप उसको रख दीजिए छांव में जब तक उसका चिपचिपा पदार्थ रुकना बंद हो जाए, यानी 1 से 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर उसे आप लेके एक मिट्टी, रेत और गोबर की सड़ी हुई खाद का मिश्रण बनाइए, एक संबंध एक में उसको पॉलीबैग में डालिए और उसमें उसको लगा दीजिए कटिंग को, और उसे छोड़ दीजिए आप 4-5 दिन के लिए। उसके पश्चात जब आप उसमें देखें कि जड़ें आना प्रारंभ हो गई, प्रारंभ में आपको उसे धूप में रखना है, जब जड़ें आना प्रारंभ हो जाए तो उन्हें आप छांव में रख दीजिए, 5-6 महीने बाद वो आपका पौधा खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है।
0: क्या ये जो आप पौध की बात कर रहे हैं कहीं से बनी बनाई पौध नहीं खरीदी जा सकती?
1: अवश्य खरीदी जा सकती है, बाहर से पौधे खरीदने में आप फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। अगर आप किसी ऑथराइज नर्सरी से नहीं खरीद रहे हैं तो हो सकता है उसकी मृदा में आपको बहुत सारे निमेटोड मिल जाए, जिन्हें आप खेत में लाए आप तो उत्पादन के लिए लाएंगे लेकिन साथ में आप मृदा जनित रोग भी लेके आ जाएंगे। इसलिए ये ड्रैगन फ्रूट की जब कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है तो हम किसानों को यही कहते हैं कि प्रारंभ में तो आप अच्छे नर्सरी से पौधे लाएं, उन्हें लगाएं और बड़े पैमाने पे पहले खेती इसकी ना करें क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है
0: जी।
1: और जब आपके पौधे मात्र बीज तैयार हो जाएं तो उससे आप खुद कटिंग बना के धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं।
0: तो इसको क्या तरीका है लगाने का, विधि?
1: जैसा कि मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि हम इसे पोल से भी लगा सकते हैं, ट्रेली सिस्टम से भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप जो पोल लगाएंगे पोल से पोल की दूरी 8 फीट रखेंगे, रो से रो की दूरी 10 फीट रखेंगे, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की
0: जी।
1: अगर आप सघन करना चाहते हैं तो ये दूरी क्रम से घटती जाती है, परंतु हम किसानों को बताते हैं कि आप 8 से 8, पौधे से पौधे दूरी रखिए, 10 से 10, पंक्ति से पंक्ति। इससे क्या होता है कि आपको कटाई छटाई करने में सुविधा होती है, चूंकि काटेदार है आपको
0: आपको निकालने के लिए जगह चाहिए,
1: आवागमन के लिए भी जगह चाहिए, साथ में जो धूप का प्रकाश है वो पौधों के हर एक भाग में अच्छे से जाए, इसलिए 8 से 8 फीट की दूरी पौध टू पौध रखनी बहुत जरूरी है।
0: तो किसान भाई इसको मैंने ये लगा लिया है, लगा रहे हैं, तो उसमें खाद एवं उर्वरक की भी जरूरत पड़ेगी कि अपने आप चलेगा?
1: उगना और उत्पादन देना दोनों अपने आप में एक अलग अलग टर्म है, उक्त सर्वाइव करेगा लेकिन हमें किसान भाइयों को उत्पादन से लेना देना है क्योंकि उनकी इनकम दुगुनी तिगुनी करनी है, तो इसके लिए हमें खाद डालना है कुछ इस प्रकार। जब आप पौधे लगाने जाएं,
0: जी।
1: पौधे लगाने से 10 से 15 दिन पहले आप कम से कम 15 से 20 किलोग्राम हर पोल पे अच्छी सी सड़ी गली खाद डाल के उसका मिश्रण मिला ले, साथ में उसमें 100 ग्राम SSP आप डालेंगे सिंगल सुपर फास्फेटों के
0: जी।
1: इसके पश्चात आप 10 दिन तक छोड़ दीजिए, उसके बाद पौधों का रोपण कर दीजिए। उसके पश्चात आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक उसमें कोई आपको रासायनिक खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका पौधा सेटल हो जाए, उसकी जड़ें निकल जाए 5-6 महीने बाद, उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, इसके बाद उनके बढ़वार के लिए प्रारंभ में आपको खाद देना पड़ेगा जिसमें यूरिया, SSP, MOP। तो प्रारंभ में आप जब पौधे बढ़ने लगे तो 15 ग्राम पर पोल के हिसाब से यूरिया, 40 ग्राम SSP और 15 ग्राम MOP दे सकते हैं
0: जी। ये तो रही बात आपके खाद एवं उर्वरकों की, वो तो 6 महीने तक नहीं देना है लेकिन बिना पानी के तो नहीं चलेगा, तो इसमें सिंचाई प्रबंधन भी करना जरूरी है
1: जी। जैसा आपको पहले से ही बताया हूँ ये नागफनी गुल का है, तो इसको पानी हमेशा में नहीं देना है, ये ठंडी के समय में कम से कम पानी में भी सर्वाइव करता है। जब पीक गर्मी का समय आता है, जब गर्मी बढ़ जाती है जून से लेकर जुलाई के आसपास तक के महीनों में, तो कभी कभार नमी बनाने के लिए हम इसे पानी देते हैं। इसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना है क्योंकि इसके अंदर एक गुण है, ये पानी को बहुत जल्दी खींचता है,
0: वातावरण से ले लेता है।
1: हाँ, वातावरण से भी लेता है और पानी अपने तनों में इकट्ठा कर लेता है और जब उस पर धूप पड़ती है तो वो सनबर्न हो जाता है, वो पीला पड़ने लगता है, फिर वो गलने लगता है, उसमें फिर फंगस लगने लगते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब आपने जिस तरह फंगस की बात की है, क्या इसमें बीमारियां और कीट भी लगते हैं?
1: जी, जब हम तुलना करेंगे और सब फलों से इसमें बहुत कम लगते हैं कीट, जो है कीट की समस्या खास करके इसमें लगती है तो आपके माहो लग जाती है, माहो जो है चींटियों को अपने हनी ड्यू से आकर्षित करते हैं जिससे चींटियां भी इस पे घर बना लेती है जो बाद में पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कैंकर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव दिखता है लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं जिससे आपको पौधों को मार दे वो आपको, हाँ लेकिन आप फसल की क्षति तो जरूर पहुंचाएंगे।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि कांटेदार परिस्थितियों में फल उगता है
1: जी,
0: लगता है, तो इसकी तुड़ाई भी आसानी से नहीं

0: नहीं की जा सकती। हाँ, परंतु क्या है ना सर, इसका जो फल है ये निचले भाग में होता है, वो बाहर होता है, अंदर के साइड नहीं होता है। तो आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके लिए आप फल को पकड़िए और उसे क्लॉकवाइज घुमाइए, या फिर आपके पास फ्रूट कटर है तो उसका उपयोग करिए, आराम से आप इसका फूल तोड़ सकते हैं। और इसकी फल की तोड़ाई का जो पीरियड भी होता है ये भी लंबा है, यानी जुलाई से लेके आप अक्टूबर तक इसके फलों को लगातार थोड़े थोड़े समय पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका फूल लगातार आता रहता है 4-5 महीने तक।
1: डॉक्टर साहब, इसके अगर उत्पादन की बात की जाए, कोई किसान करना चाहता है, हालांकि आपने कहा कि इसको बड़े स्तर पे शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कितना उत्पादन मिल जाता है?
0: जब हम प्रारंभिक बात करें, ये जो ड्रैगन फ्रूट है अर्थात कमलम, ये अगले साल से ही उत्पादन देने की क्षमता रखता है, लेकिन जो वाणिज्यिक उत्पाद होता है ये हमें तीसरे साल से मिलना प्रारंभ होता है, जिसमें हर एक पोल से, यानी एक पोल पे 4 पौधे आपके, आप 20 से 35 अगर अच्छे से आप मैनेजमेंट करें तो 40 किलो तक भी ले सकते हैं। तो आप ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि 1 एकड़ में लगभग आपके 500 पोल लगेंगे, तो इस हिसाब से आप एकड़ को धर लीजिए तो 8 से 10 टन तो आराम से आप ले सकते हैं, अगर अच्छे से मैनेजमेंट करें तो।
1: कहने का मतलब यह है कि अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
0: जरूर
1: थोड़ा सा देखभाल की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें तकनीकी का प्रयोग करें और कहीं से जानकारी लेकर ही कार्य शुरू करें। तो बिल्कुल विश्वजीत जी, आज आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में काफी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पे हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को मजा आया होगा, और कोशिश करेंगे कि जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ के बागवानी की तरफ ज्यादा रुझान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मित्रों, कार्यक्रम किसान की बात में लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और बातचीत चल रही थी ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की संभावनाएं। डॉक्टर विश्वजीत सिंह वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि नई फसल है, जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता के बिना अगर हम कोई भी नया कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाभ की अपेक्षा हानि अधिक उठाने की संभावनाएं हो जाती हैं।
3: बिल्कुल।
2: अगर आप ड्रैगन फ्रूट के विषय में सोच रहे हैं तो जो भी डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया, यदि हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पहली बार में ही एक सफलता पा सकते हैं, और यही हम चाहते भी हैं। कार्यक्रम किसान की बात का उद्देश्य भी तभी सफल होता है।
3: बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जैसे कि बताया कि तोड़ाई का जो समय है वो काफी एक लंबा समय है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक फल लगता है और लगातार सारे पेड़ पर या पौधों पर फल आता है, उसकी तोड़ाई होती है और बात जो है वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इसका एक जो समय है या पीरियड जिसे हम कहते हैं तोड़ाई का, वो लंबा है, 4-5 महीने लगातार फल आता रहता है और आप उसे तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और अच्छी सी बात जो उन्होंने बताई, डॉक्टर साहब ने, वो ये बताई कि आप तोड़ाई करते समय ध्यान रखें कि फ्रूट कटर का ही इस्तेमाल करें, ताकि जो उसकी गुणवत्ता है या देखने में जो उसका वो है वो अच्छा बना रहे।
2: बिल्कुल। और कार्यक्रम किसान की बात में जहां ऐसी विशेष जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक जाती हैं, वहीं हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई बहनों का मनोरंजन भी होता रहे उसी धरती की आने वाली सौंधी सुगंध से, लोकगीतों के माध्यम से। तो मित्रों, आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा लोकगीत।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आपने ट्यून किया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य रहता है कि नई नई जानकारी आप तक पहुंचे।
7: बिल्कुल नीरा, और इस समय भाई हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो रबी की फसल सभी की कटाई हो चुकी है, खरीफ की फसल

0: की तैयारी है, तो ऐसे में किस प्रकार से हमें, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आगे आने वाली फसलों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? जैसे कि कई बार हमारे किसान भाई बहन जो खेतों को खाली छोड़ देते हैं, तो यदि हम उनकी गहरी जुताई करके खाली छोड़ें
1: जी,
0: तो इसके इतने सारे लाभ हो सकते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जितने आगे, चाहे खरपतवार हो, चाहे कीटनाशी हो, चाहे उर्वरक प्रबंधन हो, जितना खर्चा उस पर करते हैं, उसमें हम बहुत कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं, केवल यदि गहरी जुताई के माध्यम से, केवल क्योंकि गहरी जुताई के माध्यम से जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सौर ऊर्जा है वो हमारी मिट्टी को प्राप्त होती है, उसमें पनपने वाले जो अंडे हैं जो आगे हमारी फसलों में कहीं ना कहीं कीटनाशियों को जन्म देते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, जो आने वाले खरपतवार हैं जिनके बीज गहरी जुताई के माध्यम से जब खुला छोड़ेंगे और मौसम हम देख रहे हैं कि गर्म हो रहा है, लगातार गर्मियां हैं, तो उस तापमान में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जहां हमें एक काम करने से आगे खरपतवार नाशी की हम बात कर लें, कीटनाशी की बात कर लें, या उर्वरक प्रबंधन की बात कर लें, इतने सारे लाभ होते हैं, तो हमें किसान भाइयों ये क्यों नहीं करना चाहिए? जब तो कहते हैं कि वैज्ञानिक और अनुसंधान जो होते हैं ना, उनकी सोच जब हमारे खेती बाड़ी के किसानों तक पहुंचती है, खेत तक पहुंचती है, तो उसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है।
1: जी बिल्कुल, और जैसे आपने बात की ना कि बदलते मौसम की, तो बदलता मौसम भी अपने आप में एक चुनौती भरा, जैसे कहेंगे ना कि बहुत सारी चुनौतियां अपने साथ ही लेकर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या किया जाए। और ऐसे में भी अमित, हमने देखा है कि बहुत मदद मिलती है अगर हम, जैसे हमारे ऐप हैं मौसम संबंधी, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे किसान भाई अपने आप से ही करते हैं। जैसे अगर हम अपने पशुधन की बात करें, तो जब मौसम बदल रहा है अचानक, जैसे हमें गर्मी और सर्दी लगती है, वैसे ही हमारे पशुधन को भी लगती है, तो वहां लेकिन ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ये दोस्त हैं ये बेजुबान हैं, और इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी खास जिम्मेदारी बनती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भाई हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम हैं, लेकिन प्रथम बने रहना हमारे लिए चुनौती। हम सुनते हैं ना कि किस प्रकार से हमारे जो देश के किसान है परिश्रम कर रहे हैं, और उस परिश्रम में जब मिश्रित खेती की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो साथी है वो पशु ही है किसान के लिए। तो उसमें जैसे आपने कहा कि बदलते मौसम में बार बार देख रहे हैं कि अभी गर्मी इतनी रही, फिर बरसात का मौसम हो गया, तो ऐसे में भाई यदि हम अपने पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो निश्चित रूप से आप इनका भी ध्यान रखें। और बात जब करते हैं कि जब खेत खाली छोड़ने, हमें आगे आने वाली फसलों की बुआई की बात करनी है, तो उसमें कोशिश करें कि जो खेत खाली रहेंगे उनमें कौन सी हमें फसल बोनी है पहले से ये जान लें। मिट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन कैसा है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐसी सरकार की योजना है अब तो, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे खेत की मिट्टी में हैं, किनकी बहुलता है, किनकी कमी है।
1: इसीलिए कहा जाता है ना अमित की जो मृदा है उसकी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है, इतना ही आवश्यक मैं कहूंगी जितना की एक फसल को पानी की जरूरत होती है, उतना ही आवश्यक है कि मृदा की जांच हम करवाएं, तभी तो पता चलेगा कि क्या कमी है और क्या हमको चाहिए।
0: बिल्कुल, और भाई समय हो गया है मित्रों, क्योंकि कार्यक्रम किसान की बात में लगातार आपसे बातचीत होती है, विशेषज्ञों की राय आप तक पहुंचाते हैं, केवल यही जिम्मेदारी तब हमारी हो जाती है, उद्देश्य सफल होता नजर आता है जब आप इन बातों का लाभ अपने खेतों से सीधे सीधे लेते हैं। अब मुझे और नीरा को दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम की प्रायोजक थी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की

0: और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में श्री सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीवीके के नेता जोसेफ विजय ने आज दूसरी बार लोकसभा में राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। सरकार गठन को लेकर गतिरोध अब भी जारी है। टीवीके और वामपंथी दलों की बातचीत चल रही है। वीसीके और वामपंथी दलों के नेताओं ने जेएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। बैठक के बाद वीसीके प्रमुख थोल थिरु मावलवन ने कहा कि बहुमत साबित करने की मांग सदन में उठाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि टीवीके को समर्थन देने पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. The Prime Minister said Operation Sindoor reflected India's firm response against terrorism and its unwavering commitment to safeguarding national security. President Draupadi Murmu has called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. In a social media post, she said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength.

जिंदगी जब भी किसी शय की तलब करती है, मेरे होठों पे तेरा नाम मचल जाता है। कभी कभी लगता है कि अगर ये गीत संगीत ये नगमे हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होते तो कितने अधूरे लगते हम, क्योंकि हम जब खुश होते हैं तब भी गीत सुनना चाहते हैं, और अगर दिल परेशान हो तब भी उन दर्द भरे गीतों का सहारा लेकर गम को भूलने की कोशिश करते हैं, या फिर चोरी चोरी किसी की

0: याद सताए तब भी हमारे अकेलेपन को दूर करते हैं ये नगमे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और आज का जो दिन है ना वो बेहद खास है। क्यों है? क्योंकि हम एक शुरू कर रहे हैं नया प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम वर्ष जिसमें पीढ़ियों को जोड़ा, जज्बातों को आवाज दी और देश के हर कोने को जोड़ा। इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पूरी जिंदगी आकाशवाणी की विरासत से जुड़ी रही। बेहद खास पूर्व उप निदेशक, मशहूर कवि और लेखक और बेहद बेहद प्यारे इंसान श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। सर, दिल से आपका खैर मकदम करती हूं।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। कार्यक्रमों में तो रोज ही रहता हूँ, लेकिन इस यहाँ आके जो आनंद मिल रहा है वो कहना कठिन है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना। जी जी
0: सर, हम सब के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप आज हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं और रेडियो में आपका जो योगदान रहा है सर, उसकी तो बात ही क्या है। तो सर, पूछना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? रेडियो का शौक है वो कब लगा आपको कि रेडियो से जुड़ना चाहिए?
1: देखिए, मूलतः संगीत का शौक या कविता वो तो बचपन से जुड़ गई थी
0: जी।
1: और जाहिर है कि फिर रेडियो ही था जो सब ये संगीत और सब कुछ वहीं से मिलना था
0: जी।
1: तो वो तो जब घर में रेडियो आया कानपुर में, काहू में
0: जी जी।
1: तो आप समझिए कि जैसे जिंदगी में एक बहुत बड़ा वरदान मतलब मिल गया हो
0: जी।
1: वो क्षण मुझे अभी भी याद है जब विविध भारती की शुरुआत हुई थी कानपुर में
0: जी जी।
1: तो वो पल मुझे अभी तक याद है। और ये आलम था कि मैं अगर नहाने जा रहा हूँ तो साथ में ट्रांजिस्टर जाता था ट्रांजिस्टर रखा तो वो हर पल रहता था। और टॉपर था तो थोड़ा संतुलन बना के रखना था
0: जी।
1: तो लेकिन ये रेडियो अब का शौक इतना था तो पर हम ये जानते हैं कि भाई हम अनाउंसर बन जाए तो कानपुर में उद्घोषक की वो जगह निकली होगी तो मैंने भरा था पर वो नहीं हो पाया, मतलब वो एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। पता नहीं वहाँ कुछ बवंडर हो गया, क्या हो गया, कुछ पेपर लीक हो गया, जो भी कुछ हुआ तो बात आई गई हो गई। लेकिन मैं बतौर जब कभी सम्मेलन में जाता था तो आकाशवाणी में वहाँ कानपुर में विजय बनर्जी साहब हुआ करते थे
0: जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे ये उनका मतलब बहुत बड़ा एहसान मेरी ज़िंदगी में कि उन्होंने बताया कि यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जगह निकली है तो मैंने भर दिया
0: जी।
1: और भर दिया तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उस दिन मैं इसलिए बहुत नर्वस था कि जितने लोग आए थे 25 लोग करीब मान लो आए थे उस दिन
0: जी।
1: तो सब आकाशवाणी से जुड़े लोग थे और सब अपनी अपनी बातें जो बता रहे थे जिस तरह वो थोड़ा डर पैदा कर रही थी क्योंकि मैं तो उस तरह से नहीं कहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन मज़े की बात ये कि उस दिन जो है सिर्फ दो लोग का चयन हुआ, एक मैं था और एक वो एक और महिला थी कोई, उनका दो ही लोग उनका चयन हुआ
0: जी जी।
1: और मैं बहुत मतलब और चयन भी ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल जो है ना टॉप में कोई 15 के अंदर मेरा मतलब नंबर था ऐसा कुछ था। तो वहाँ से हमने रेडियो में प्रवेश किया। और ये बात एक क्योंकि मूलतः मुझे उस तरह का काम नहीं करना, फाइल वाइल वाला जो है ना करना यहाँ भी पड़ा, बहुत करना पड़ा, अलग बात है
0: जी जी।
1: लेकिन मैंने उस तरह का मैं नहीं हूँ, मैंने लोगों के बीच रहने वाला तो उसमें आईएएस वगैरह भी था और वो भी अटेम्प्ट किया और वो सब भी चला साथ में। लेकिन जब ये मिल गया तो लगता ये मेरे मन का काम है तो वो जो मीडिया का तो। और सचमुच आकाशवाणी ने मुझे जो कुछ दिया है वो तो क्या कहूँ उसके लिए
0: वो एक शौक था जो हमें यहाँ तक लेकर आया और दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। और उसकी जो कहानी है वो बाद की कहानी, तो बहुत ज्यादा उसमें किस्से कहानियां हैं। सर, एक गीत है बहुत प्यारा सा, वो सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे बहुत
1: जरूर जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी यकीनन ये साथ हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए, और हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी जो उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। और जैसे सर हैं इतनी अलग पर्सनालिटी हैं, तो सर यहाँ पर आए हैं हमारे आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। और यकीन माने ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जहन में जो एक के बाद आते जा रहे हैं। सर जैसा यहाँ शौक के मुताबिक आकाशवाणी में प्रवेश हो गया, उसके आगे की कहानी क्या है?
1: जी वो आगे की कहानी तो हम बाद बताएंगे। सबसे पहले तो एक गाना जो आपने चलाया
0: जी सर,
1: और रविंद्र जैन साहब का संगीत है
0: जी।
1: तो मैं वो नेशनल चैनल में जब था तो जो 31 दिसंबर वाला जो कार्यक्रम होता था उसके लिए मैं गया था मुंबई
0: जी।
1: और तो वहाँ से बहुत सारे इंटरव्यूज करके लाया, एक दफ़े में 30-30 लोगों कम से कम
0: जी, जी।
1: तो रविंद्र जैन साहब के घर भी गया था। आप सोचिए कि हम पहले तो हमें लगता ना सिनेमा के लोग हैं पूरे, बिल्कुल जैसे अंतरिक्ष से उस तरह से आते हैं, इतने सज्जन। अब वो मैं जब उनके यहाँ गया तो उनकी श्रीमती जी भी नहीं थी, तो अब वो इस बात के लिए थे कि नहीं नहीं कुछ मतलब कह रहे थे नहीं नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप लंच करके जाइए और ऐसे कुछ बनाते भी मिलजुल के ऐसा कुछ, मतलब इस तरह के इतने कभी लगा। रविंद्र जैन से मैं बात कर रहा हूँ भाई, और वहीं के वहीं उन्होंने जो कुछ बनाई कविता जैसी बनाई, अब वहीं के वहीं हारमोनियम लेके बैठे के बोले, और वहीं की वहीं ट्यून बनाई और वो हमें रिकॉर्ड करके दिया, मतलब अपनी शुभकामनाएं गीत में। तो ये अब आप जो सवाल था आपका
0: जी।
1: तो देखिए ग्वालियर में पहली पोस्टिंग थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना मैंने चूंकि दूसरे और साधन थे नहीं उस तरह के, रेडियो घर घर सुना जाता था
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मैं मतलब उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो शहर ही मतलब जाना जैसे अक्सर ही रहता था, तो जैसे टेम्पो चलते थे वहाँ पे, तो वो पता चला कि मेरा कोई कार्यक्रम है नहीं तो कोई, अब लोग जो टेम्पो बैठे हैं वो फिर आपस में डिस्कस करे, अब सुबह वो जो कहानी आई थी कितनी अच्छी थी, अब उस तरह के वो तो एक तो ये आनंद था। लेकिन ग्वालियर से जुड़ी जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये थी कि देखिए वहाँ पर तीन रूट पे टेम्पो चलते थे
0: जी जी।
1: सिर्फ कोई और दूसरा साधन नहीं। अब वो जो है ना मतलब टेम्पो ने तो आपको सड़क पे उतार दिया, उसके बाद आपको बस्ती तो बहुत दूर दूर तक है, तो फिर लोग कैसे जाएंगे, अब आपके पास सामान है। तो मैं आया था कानपुर से, कानपुर में आप घर के बाहर निकले और रिक्शा पकड़ लिया आपने, तो वो आदत थी मेरी, तो वो मुझे थोड़ा लगता था। तो मैंने वहाँ एक मुहिम चलाई कि रिक्शा चले, और उसके लिए फिर मतलब वहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी पहले वो ब्रॉडकास्ट किया
0: जी जी।
1: कि भाई किसी को रात में अगर तो टेम्पो तो चलते बंद हो गया वो 9 बजे रात में, फिर किसी को जरूरत पड़ी तो कैसे जाए,
0: तो
1: फिर अब स्कूटर उस जमाने में इतनी तो ओला उबर उस सब तो कुछ था नहीं उस समय, तो बहरहाल तो वो पहले ये किया। फिर वहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज थे जैसे उस समय माधवराव सिंधिया जी थे वो सब थे, उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वगैरह उनको सबको बुलाया, फिर डिस्कशन कराया। और आप मजे की बात यह है कि फिर वो मतलब रिक्शा वहाँ चल गया, ये चमत्कार से कम इसलिए नहीं था कि किसी भी प्रिंसली स्टेट पे वो तो राजाओं का वो था ना, वहाँ रिक्शा नहीं चलता था, तांगे चलते थे कहीं भी मतलब, तो वो जो शहर के लिए तो एक चमत्कार जैसे ही था कि वो रिक्शा चल। तो ग्वालियर की जो तो ये सिलसिला हुआ, और बाकी तो वहाँ इतना फिर वो एक से एक दिग्गज थे उस जमाने में साहित्य के और तरह तरह के, तो वो जो उतना जो हमारा 4 साल का काम था वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ आकाशवाणी के बारे में मतलब कि उसकी कितनी उसके प्रति सम्मान है लोगों का और कितनी पहुंच है उसकी
0: पहुंच है,
1: और ये जो इस तरह का एक प्रयोग सफल हुआ मेरा तो उसने भी एक प्रेरणा दी कि नहीं नहीं आकाशवाणी के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो।
0: सर आपकी सोच को वाकई में सलाम है, दिल से सलाम है, क्योंकि सोच वही सकते हैं जो अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि आम इंसानों के बारे में कोई सोचे और इस तरह से मुहिम चलाकर इस चीज को वहां तक पहुंचाए, सर बहुत बड़ी बात है। और ये आप जैसे ही बेहद बेहद अच्छे इंसान ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सर आगे
1: हाँ तो वो ये हुआ वहां से, जैसे मैं देखिए वो क्या है कि फिर जैसे बीकानेर गया
0: जी जी।
1: अब वो क्या होता है कि कई बार मैं ये बात कहता हूँ कि देखिए जो हम लोग हैं मतलब जैसे कहीं पोस्टेड होते हैं तो ये हमारे काम का एक हिस्सा है कि हम उस शहर के बारे में इतना कुछ जानते हैं जो वहाँ 40 साल से रहने वाला शायद मैं जानता हूँ। तो एक संयोग बताता हूँ, यहाँ भी देखिए कैसे सक्सेस स्टोरी वहाँ से निकल के आई कि मेरी एक आदत थी मतलब हमारे उन्होंने ये सिखाया था मुझे, डॉक्टर जे वी गुप्ता भी हमारे बीच हैं यहीं पर, तो वो

0: ड्रामा, रेडियो ड्रामा की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उन्होंने ये बात सिखाई थी कि भाई आप जो है सुबह सुबह गाड़ी मंगा लिया करो और किसी से जाके डिस्कस किया करो। तो वो आदत हमने बीकानेर में भी रखी। तो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं किसी भी क्षेत्र के, उनसे पास जाना, डिस्कस करना, ताकि हम उनको अपने प्रोग्राम की प्लानिंग में ला सकें। तो मैं एक इतिहासकार थे वहाँ, उनसे मिलने गया। अब वो गाड़ी तो हमें छोड़नी पड़ गई और एक गली सी थी, गली में दोनों तरफ इतना कचरा सा भरा हुआ था, तो मैं हैरान हो गया। अब देखिए मजे की बात, जो हमने इतिहासकार साहब बाहर निकले दरवाजे से, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब कब से है। तो वो कहते क्या कब से है, मैंने कहा ये जो सारा कचरा दोनों तरफ, इतना गंदगी, बोले कब से क्या है, तो आई है मतलब कई साल से रहा होगा, पर हमारे तो है ना दिमाग में एक जो होता है ना। तो वो फिर मैं आया और हमारे खान साहब थे उस वक्त जो प्रोग्राम के हेड थे हमारे स्टेशन के, उनको मैंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, और इस तरह से मैंने अपनी टीम उठाई चला गया। आप ऐसे समझिए कि पूरे शहर में जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो जैसे एक हाहाकार मच गया पूरे शहर में,
1: हाँ
0: तो मतलब अब वो उसका इतना इम्पैक्ट हुआ, विधानसभा में सवाल हो गया और ये हुआ। तो उसका परिणाम जो मैं बताता हूँ, वही जो इलाका जो पूरा वो दलितों की एक तरह की बस्ती थी, तो उधर मैं फिर कोई 3-4 साल बाद बीकानेर गया किसी निजी फंक्शन में, किसी वो भी एक विचित्र कहानी, हमारे कुछ वो थे बड़े फैन थे तो उनके यहाँ गया मैं। तो हमारे कंट्रोल रूम के लोगों ने बताया कि आपने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद है, हमने कहा वो इस तरह से किया था, तो उन्होंने कहा अब आप वहाँ जरूर जाइएगा। 3-4 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है उसमें सीवर सिस्टम आ गया, वो गली वो जो है पूरा उसका जो है बदल गया। तो ये इस तरह का
1: बहुत बड़ी बात है, मतलब
0: तो फिर वो हमारी आदत में शामिल हो गया। फिर हम जहाँ भी गए, अल्मोड़ा गए, तो वहाँ देखा कि यहाँ क्या क्या मतलब समस्याएं हैं, क्या क्या है, तो उसमें अच्छा फिर वो सुधार होता है जब आप चीजें पहुंचा देते हैं ना। और हमारे पास क्या भाई, यही मंच है हमारे पास, और उस मंच का अगर हम सदुपयोग करें तो फिर जब दिल्ली आ गया तो फिर तो बहुत ही हुआ, तो वो आगे चल के बताएंगे। यहाँ की तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है मेरे साथ।
1: सर वो जो सोच होती है ना, अच्छा जैसे आपने ध्यान दिलवाया कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन किसको ध्यान नहीं है, वो सोच
0: उन्हें आदत पड़ी हुई थी, उनकी तो आदत पड़ी थी। हाँ जी जी जी,
1: ये चीजें हैं, तो सोच को वहां तक लेके जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर एक बहुत प्यारा सा गीत है हीर रांझा फिल्म का, ये गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास पूर्व उप महानिदेशक मशहूर कवि और लेखक सर श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जान रहे हैं और यकीन मानिए ऐसा लगता है कि ये जो बातों का सिलसिला है कभी ख़त्म ही ना हो। सर, उसके आगे की कहानी क्या है? ये जो जज्बा है कि जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करेंगे और आपकी उस उम्दा सोच को वाकई में सलाम है। और कहते हैं कि जब हम रेडियो से जुड़ते हैं तो जो श्रोता का प्यार है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आता है और बेहद बेइंतहा प्यार हमें मिलता है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बीकानेर की कहानी है
0: जी।
1: और वो ऐसे हुआ कि आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि एक कार्यक्रम होता था युववाणी जो वहाँ का होता था
0: जी जी।
1: तो वो उसमें लोग जोधपुर सुनते थे, मुझे तकलीफ होती थी जब मैं आता था अपनी कॉलोनी में अपने घर तक, घर घर में लोग जोधपुर लगा होता, तो मैं कहा बीकानेर। अच्छा, मुझे इत्तफाकन जहाँ भी रहा ज़्यादातर तो वो मिलते थे ये हिंदी टॉक्स वाले प्रोग्राम जिसमें दिग्गज लोग भी आए, पर वहाँ मुझे वो युववाणी के वो सज्जन उनका ट्रांसफर हुआ तो मेरे हवाले उन्होंने कर दिया कि इसको थोड़ा बिल्डअप करना है। अब वो सबसे बड़ी बात, तो फिर हमने पूरा सारा आमूल चूल जो बदलाव किया, फिर ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी हुए कि वहाँ पे मतलब जैसे क्विज का प्रोग्राम हम करते, सवाल 5 पूछते तो लोग पान की दुकान पे खड़े हो के वो सुन के नोट कर रहे हैं
0: जी जी।
1: और वहाँ एक ये भी हुआ, एक प्रोग्राम चलता था मैं मतलब कि उसमें हम किसी जो ऐसे लोग हैं मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई युवा तो है लेकिन वो कोई मान ले छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, तो उसमें से जैसे वो उसका काम कर रहा था वो उसका जूते गाटने वगैरह का फुट पर, तो अब उसमें ये हुआ कि स्टेट बैंक के जो है मैंने वो सब जानते हैं आपको आकाशवाणी वालों का पड़ा होता था, तो उनसे हमने उनको मतलब उनको कहा तो उन्होंने उसका जो छोटा सा एक वो तो बैठता था फुटपाथ पे उसको उन्होंने बड़ा सा अच्छा स्वरूप देके, तो इस तरह की चीजें भी आकाशवाणी के माध्यम से हो गई। और जो प्यार की बात आप कर रही थी, आप सोचिए जब बीकानेर से तो मैं अल्मोड़ा चला आया, अल्मोड़ा से वापस आ गया, साल भर बाद नेशनल चैनल बना तो मुझे भी ले लिया गया उस टीम में, तो मैं नेशनल चैनल आ गया, मेरे पास एक ड्राफ्ट आया

0: बीकानेर के जैसे यहाँ DDA है ना, उस तरह की अथॉरिटी का
1: जी।
0: अब मैं है 1500 रुपए का उस समय चेक आया मेरे पास या ड्राफ्ट जो भी आया
1: जी, जी।
0: मैं हैरान कि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था,
1: ये क्या हुआ।
0: अब वो फोन उनका जमाना नहीं था, मैं नया नया आया था, मेरे पास घर पे भी फोन नहीं था दिल्ली जब आया था। उसकी कहानी खुली कोई 10 दिन बाद, जब एक चिट्ठी आई मेरे पास कि आपके पास ऐसा ऐसा ड्राफ्ट आया होगा तो आपके नाम पे मैंने फॉर्म भर दिया था वो अरे स्नाते भर दिया था कि अब मतलब घर मेरा वहां हो जाए तो मेरा मतलब मैं यहीं रह जाऊंगा, बीकानेर बस जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे भी प्यार जो है ना,
1: प्यार
0: इतना प्यार भी मिलता है। खैर तो बहरहाल फिर मैं अल्मोड़ा गया, पहाड़ पे गया तो वहां भी मैंने ये देखा, बड़ी विचित्र विचित्र सिस्टम होते हैं कि अल्मोड़ा में जो कुछ रानी खेत वगैरह में जो सेब जैसे उगता है तो वो पहले सेब जा रहा है हल्द्वानी जाता है, फिर वो जाता है, फिर उलट के फिर वहीं जाता है अल्मोड़ा के मार्केट पे, जबकि वो सीधे वहां से अगर रानी खेत। तो उस तरह के भी व्यवस्थाओं को अध्ययन करके फिर उस पर जब हमने प्रोग्राम किए तो बहुत सारे बदलाव हुए उसमें, स्वास्थ्य को लेकर के। अब जैसे कोई अस्पताल नहीं है, कैसे लोग अब वहां, जो आप जानते हैं पहाड़ की स्थितियां, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, तो वहां भी इतना वहां मजे। अब देखिए जो श्रोताओं की उसकी बात है, वहां में प्रोग्राम वो पैक्स वगैरह को अलाउ नहीं करते थे कि कोई एयर पे जाए, तो मैं एयर पे भी नहीं जाता था। लेकिन मेरे बीकानेर का वो भी प्यार देखिए कि वो हमारे जो मकान मालिक का लड़का था, आज की तारीख में बहुत बड़ा साहित्यकार है, बहुत बड़ा भारत का।
1: अच्छा।
0: तो वो मेरे पास आया था, 1 महीने मेरे साथ रह के गया। तो वो तो हम लोग घूम रहे थे अल्मोड़ा में, तो टहलते गए बिल्कुल आप समझिए कि पता नहीं टहलते पता ही नहीं लगा, बिल्कुल सुदूर बिल्कुल पहुंच गए कहाँ पे। तो वहां पे एक वो दुकान थी, तो वो वहां जलेबियां, तो मैंने कहा यार चल तुझे मतलब जलेबी खिलाता हूँ। अब जब मैं वहां पहुंचता हूँ, आप सोचिए, जबकि मैं एयर पे नहीं जा रहा था, सब कुछ है, तो वो जो वो बैठा था कहता सर आपकी आकाशवाणी में तो बहुत ठंड लगती होगी तो छोटे शहरों के ये आलम होता है कि पूरा अल्मोड़ा जो है ना वो मतलब जानने लगा था। और एक जो हम जब गए थे, अब ये अजीब विचित्र बात, जब बीकानेर ट्रांसफर हुआ तो सब लोग परेशान कि वहाँ तो पानी का ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्मोड़ा गए तो वहाँ कहीं नहीं, पहाड़ और मैदान का बहुत चलता, कोई ऐसा नहीं, इतना प्यार मिला, इतना कुछ तो कहीं कुछ नहीं, तो मतलब वो भी रहा। फिर अल्मोड़ा से हम आ गए नेशनल चैनल पर आ गए, और फिर जो है ना लगता है कि जो एक बहुत बड़ा वरदान जैसे मुझे मिल गया, क्योंकि अब आकाशवाणी का नेशनल चैनल तो मतलब पूरे देश भर में जाता था, तो उसमें फिर एक बड़े मंच पर जो जिस तरह से काम करने का मौका मिला, वो तो बहुत, उसके माध्यम से आप सोचिए कि जैसे आपको दो चार उदाहरण बताता हूँ। एक तो जैसे हम ये जो पान मसाला है
1: जी,
0: तो इस पर कोई मतलब कानून नहीं था पान मसाला के लिए, तो वहाँ हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हम उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए, और फीचर यूनिट वाले कहीं बुरा ना माने हमारे डायरेक्टरेट में, तो उसका नाम बदल दिया कि वो हम उनके उसमें दखल नहीं कर रहे
1: जी, जी।
0: तो हमें उसको दूसरा नाम जैसे दे दिया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कभी कुछ इस तरह का। आप समझिए उसकी वजह से कानून बना भारत में हमारी उस रिपोर्ट की वजह से। दूसरा जो काम हुआ नेशनल चैनल पर, जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी उड़ने दो परिंदों को, तो क्या हुआ कि हमने यहाँ के अखबार में एक छोटा सा न्यूज आइटम पढ़ा कि ये जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, 500 केसेस का उसने अध्ययन करके बताया कि बच्चे किस लिए परेशान, क्योंकि वो जो जो मतलब इस तरह के छोटे छोटे ये स्कूल खुल जाते हैं ना, प्री प्राइमरी वाले है ना, और माँ बाप भेज भी देते 4 साल की उम्र में, उसके कोई नाम्स का पालन नहीं होता। तो मैं सीधे वो मैंने कटिंग पढ़ी, NCERT गया, वहां से उनको सब उनके उनसे पूछा, उन डॉक्टर साहब से मिला जाकर के, वो तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई कि ये कितनी बड़ी हमारे देश की एक विडंबना है कि देखिए जितने एक्सपर्ट वो कहते हैं कि 5 साल तक आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी हो, किसी देश में आप दे भी नहीं सकते, आप इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस कहीं नहीं ये कर सकते, हमारे यहाँ हम 3 साल से उसको जो भेज देते हैं
1: 3 साल के बच्चे सर, 2 साल हाँ, के बच्चे
0: और नहीं वो उसमें ये होता है कि भाई आप उसको मेंटली तैयार करिए उस तरह से, पर वो होता नहीं है, वो पढ़ाना ही पढ़ाई शुरू। 3 R वर्जित किए गए, अर्थमेटिक और जो रीडिंग राइटिंग, ये नहीं होना चाहिए बच्चे। वो डॉक्यूमेंट्री का असर ये हुआ कि भारत में जो यशपाल कमेटी बैठी थी वो हमारी आकाशवाणी के नेशनल चैनल की उस डॉक्यूमेंट्री के दिन थी क्योंकि
1: जी
0: तो इस तरह और बहुत सारे इस तरह के और बहुत सारे काम हुए। तो नेशनल चैनल का तो अब वो जब मैंने बताया कि वहाँ हर दो साल में वो उसके लिए गया बम्बई से, तो इतनी सारी हस्तियों से मुलाकातें हुई, इतनी प्यारी प्यारी, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, खयाम साहब, ये वो सो, तो क्या और कैसे प्यारे लोग हैं वो, मतलब कहना कठिन है भाई कि ये फिल्म इतना फिल्मी हस्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी। खयाम साहब 8वीं मंजिल के अपने मकान से नीचे उतर के और मुझे छोड़ने आते हैं। अब मेरे जैसा आदमी मेरे लिए तो वो सोचो संगीत, इतने बड़े संगीतकार, मैं गायक बनने का अभिलाषी, वो इक्वेशन सोचिए
1: तो, सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
0: तो वो अच्छा वो 2.5 घंटे तो वहाँ बैठे रहे, कम से कम उनकी बैठक लगी रही, तरह तरह की बातें होती रही। तो वो आए तो हमने कहा कि अरे आप, उन्होंने कहा देखिए खयाम साहब का डायलॉग सुनिए, उन्होंने कहा अगर आकाशवाणी नहीं होती तो खयाम को कौन जानता। तो इस तरह का भी
1: बहुत, जितने बड़े कलाकार होते हैं ना वाकई में उतने ही हम्बल होते हैं और उतने ही जमीन से जुड़े होते हैं, उनकी यही तो खूबी होती है जो उन्हें बहुत बेइंतहा प्यार दिलवाती है।
0: जी और खयाम साहब के आप मालूम लाया कौन था?
1: जी
0: खयाम साहब से पहले मैं गया था मन्ना डे साहब का इंटरव्यू करने, और उस सारा तय होता है कि भाई हम इतने बजे फ्री हो जाएंगे तो 8 बजे हम खयाम साहब के यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा करेंगे। खयाम साहब से जब बातचीत शुरू हुई तो पता ही नहीं लगा कब 1.5 घंटे बीत गए। तो वो आज जब हमारी चलने की बारी है, बोले कैसे जाओगे? मैंने कहा बाहर कुछ मिल जाएगा। अरे बाबा इधर कुछ नहीं मिलेगा, बड़े पॉश कॉलोनी थी, अमिताभ बच्चन भी तब वहीं रहते थे।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने कहा, उनका ड्राइवर भी जा चुका था, मन्ना डे साहब ने खुद गाड़ी निकाल के खुद मुझे खयाम साहब के घर पे छोड़ के गए। आप सोचिए
1: बहुत बड़ी बात है।
0: तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब इतने प्यारे लोग, ऐसे दिग्गज लोग। जी
1: बहुत खूब सर, और दिल चाहता है कि ये बातों का सिलसिला कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा गीत है उसको सुन लेते हैं।
0: जी

0: खयाम साहब से मुलाकात और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना हुआ सर?
1: जी जी, आकाशवाणी का ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार है, एहसान है। आप समझिए कि 7 राष्ट्रपतियों से, मतलब किसी से नज़दीक से दर्शन हो गए, किसी से बात हो गई, किसी से वो हो गया, कुछ के साथ इस जैसे एक कोई कॉलेज का फंक्शन था, कोई उसकी गोल्डन जुबली क्या था, तो मैं स्टेज भी शेयर किया, तो वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तब राष्ट्रपति से पद वहाँ से आ चुके थे मतलब। लेकिन अब जैसे ज्ञानी जैल सिंह साहब के पास मैं गया एक इंटरव्यू के लिए, तो वो समझे राष्ट्रपति पद से उनका टेन्योर पूरे हुआ था। अब हुआ क्या कि जो कोई चाय लेके आया तो वो अपनी वही बाकायदा जो परंपरागत उस तरह से होते हैं, तो वो जेल सिंह साहब कहते हैं, अरे भाई ये वाजपेयी जी हैं, ये कवि हैं, ये खाली चाय आप कैसे लेके आ कि, तो वो जो एक वो दूसरा बंदा था और वो कह नहीं सर वो, फिर 2 मिनट में वो भी आ गया, वो बिस्किट वगैरह लेके आया था। अब एक बात, दूसरी बात ये हो कि अब वो हमें इतने जैसे कोई मित्र मिल जाता पुराना जैसे, और खूब अपनी बातें बताते रहे तरह तरह से। और फिर तो जब हमने कहा वो इंटरव्यू सब कुछ हो गया, अब हम जब चलने की बात की, कहते हैं वाजपेयी जी एक चाय और मंगाते, मजा नहीं आई भी। मैंने कहा सर मुझे तो इसका भी एडिट करके रात में ब्रॉडकास्ट करना 8 बजे, विविधा प्रोग्राम हमारा नेशनल चैनल पे होता था। इतने सरल लोग, इतने सहज लोग हैं, तो इस तरह के मतलब बहुत सारे इस तरह के मतलब लोग मिले। ज्ञानी वो अपने कलाम साहब से 6 बार मुलाकात हो गई, और इसी तरह बहुत सारे जो है अपने गुजराल साहब, अब आप सोचिए कितना मतलब आप सुन के वो लगेगा, तो भाई हमारे पास तो नेशनल चैनल पे तो कोई VIP लॉन्च तब नहीं बना था, तो वो तो नेहरू स्टेडियम में थे हम लोग, तो हमारे कमरे में ही सब आते थे, तो हम वो डिस्कशन में यही लोग आते, नेशनल चैनल का डिस्कशन है
0: जी।
1: तो जैसे एक डिस्कशन जब यहाँ एक कांड हुआ था ना, वो तंदूर कांड हुआ था, तो उसमें कौन आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एक भागी पार्टिसिपेंट, एक गुजराल साहब थे और एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने वो टॉपिक था कि कैसे वो जो है यानी राजनीति में और अपराध का वो कुछ उस तरह का जो है ना, तो इस हमेशा वो अटल जी तो कितनी बार आए मतलब बहुत बड़े आसानी से सब आते थे। अब गुजराल साहब आके हमारे वहीं सामने बैठ जाते थे, वो बाद में प्रधानमंत्री बन गए।
0: और
1: मजे, अब मजे की बात बताऊँ आपको, एक बहुत विचित्र बात मतलब बहुत क्या हुआ कि हमारी आदत थी कि हम चेक पहले से मंगा के रख लेते थे ठीक है, तो ये होता था हमने कहा सर जब तक वो तब तक जो है ना वो वहीं रखते थे, तो उन्होंने अपना चेक जो है उनको दे दिया मैंने। अभी डिस्कशन तो शुरू नहीं हुआ था, मतलब तो होना था चारों लोग आ जाएंगे अब सुनिए, वो कहते हैं जेब में उन्होंने डाला, कहते अब मैं चलूं, अब मतलब मजाक मजाक है ना, इतना एक वो बन गया था एक्चुअली। और उसके नाते उसमें एक हमारा कहीं कविता का भी एक थोड़ा सा योगदान था
0: जी, जी।
1: तो कहते हैं अब उन्होंने मजाक किया कि अच्छा अब मैं चलूं, मतलब चेक तो मिल ही गया
0: जी, जी, जी।
1: मैंने कहा सर मतलब अब सुन के अटपटा लगता है कि भैया मैंने किसको क्या कह दिया, पर उनको मैंने कहा सर नहीं बाहर सिक्योरिटी भी लगा रखी है, हंसे ठाका लगा के। तो खैर, तो वो इस तरह के बहुत सारे लोग और बहुत सारे वैज्ञानिक
0: लोग होते हैं ना सर, उनके साथ इस तरह से मतलब बात करने का साहस भी होता है कि हम उनके साथ किसी भी हद तक कैसी भी बातें कर सकते हैं
1: जी जी जी। वही बाद में फिर हम लोगों ने एक वो कक्ष जो था एक उसको मतलब उसको बना दिया थे कि जिस तरह के को बाहर आए तो वो अटल जी फिर वहीं आके बैठे। और जैसे अब ये देखिए कि बच्चों को जैसे एक होता ना यूनिसेफ की तरफ से एक था कि हम बच्चों के उनकी पसंद के लोगों से मिले, तो अटल जी के यहाँ जब हम 30-35 बच्चे यहीं से जब लेके गए थे। अब जब ब्यूरोक्रेसी में यही होता है अरे उनके पास टाइम नहीं, फिर फला डेलीगेशन आ रहा तो वो 45 मिनट काहे के 45 मिनट, और 2.5 घंटे लग गए मतलब बच्चों से बड़े वो मिले। इसी तरह कलाम साहब के पास हम ले गए थे बच्चों को, 30-35 बच्चों को, वो भी बहुत अनूठा जब दिल्ली स्टेशन आ गए। तो ये तो एक बहुत बड़ी यानी देन, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जैसे वो देखिए भगत

0: सिंह के जो छोटे भाई थे कुलतार सिंह
1: जी,
0: उनका इंटरव्यू यही नेशनल नेटवर्क पे किया था।
1: अच्छा।
0: उनके जो कमांडर थी अपनी आजाद हिंद फौज की महिला, उसकी जो है ना रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की लक्ष्मी सहगल, उनका इंटरव्यू मैंने करा, यहाँ नेशनल नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया। और जो गांधी जी जिनके वो अंतिम समय पे जो थी, वो लोग जब हमारा इंटरव्यू हुआ तब लोगों को पता लगा अच्छा वो अच्छा हैं अभी, तो उनका इंटरव्यू, डॉक्टर नार्लिकर जैसे वैज्ञानिक, माशेलकर जैसे वैज्ञानिक, बहुत जितने भारत के दिग्गज थे तो वो थे। तो उस बहाने से यहाँ जो हम करते थे वो शाम की चाय जो करते थे हमारे मंडलोई साहब जो डीजी साहब थे, तो उनका ये वो था आइडिया उनका था, तो हमने उसको वो किया। तो वो उस बहाने से इतने सारे दिग्गज यहाँ पे, और यहाँ मुझे मालूम था कि ये स्टूडियो बंद तो हमारा छोटा पड़ जाएगा, तो फिर हमने बाहर जाके किया था उसको किसी ऑडिटोरियम लेके, जब हरिप्रसाद चौरसिया जी के शाम की चाय की और जब वो ओलंपिक से मेडल लेके आया था, वो हमारी आकाशवाणी की ही देन थी, क्योंकि वो हमारे जो प्रोग्राम आता है युवाओं, ग्रामीण युवाओं के, उसमें उनका इंटरव्यू गया था, तब वो उसको लेके गए थे उसके परिवार वाले। तो जब वो जब उसने ओलंपिक मेडल लिया तो कोच ने यही कहा कि ये हमारे आकाशवाणी दिल्ली से मिला है, रेडियो से मिला है, तो हमने वो स्टेडियम पे उसका प्रोग्राम रखा था। तो बहुत इस तरह का, तो जो आप कह रही हैं एक से एक दिग्गजों से जो मुलाकात हुई, वो तो बहुत बड़ी बात।
1: आप मिले हैं इतने बड़े बड़े महान कलाकारों से। और सर मेरी एक छोटी सी कहानी है, जब मैंने यहाँ पे ऑडिशन क्लियर किया उसके बाद सर जो पहला इंटरव्यू था वो आपने किया था। सर मुझे वो चीज़ याद है, और आज मेरे लिए इतनी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपके साथ मैं माइक्रोफोन शेयर कर रही हूँ और यहाँ सेम स्टूडियो में बैठ के सर मुझे ये मौका मिल रहा है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और एक लंबा अरसा आकाशवाणी में गुजरा और तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए सर, उस मुकाबले के तो नहीं हुए होंगे लेकिन हाँ बहुत यहाँ पर जो लोगों का प्यार मिलता है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। देखा नहीं है कभी किसी ने, लेकिन हाँ वो आवाज़ के जरिए जो मोहब्बत देते हैं हमारे सुनने वाले वो बहुत ही मतलब बेहद खास।
0: और इसी कड़ी में देवानंद साहब का जिक्र नहीं करूं थोड़ा गड़बड़ हो जाए, इसलिए इसको जोड़ देते हैं कि जब हम लाहौर गए थे, जब बस यात्रा अटल जी लेके गए थे, तो मैं कमेंट्री करने गया था आंखों देखा हाल सुनाने, तो वो हमारी जो है ना वो वहाँ पे हमारा जो ड्राइवर था बहुत एक था, वो ले आया बहुत जल्दी ले आया एयरपोर्ट पे, और इसी तरह देवानंद साहब का, तो हम दो ही लोग थे वहाँ पे लाउंज में एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे। फिर उनसे जब हम बात करते रहे, हम उनको खोज रहे थे कि इसमें देवानंद को कहाँ से हम खोज निकाल लें, मतलब इतना जो चार पीढ़ियों का हीरो मतलब, पर वो ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, ऐसी बातें चल रही हैं देश भर की, इसकी उसकी उसकी, हम लोग 20-25 मिनट इस तरह बतियाते रहे बिल्कुल जैसे। अब मेरा तो लालच था कि मैं किसी तरह उनसे, उसमें तो सेल्फी तो होती नहीं थी तो ऑटोग्राफ ले लूं, तो मैंने किसी तरह मैंने कहा मेरी बेटी के लिए आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो ऑटोग्राफ उनके ऐसे, मतलब इतने प्यारे प्यारे लोग, हाँ सच में बहुत बहुत अच्छे तरह के लोग मिले।
1: सर एक बहुत खयाम साहब का क्योंकि जिक्र हुआ तो एक बहुत प्यारा सा गीत है,
0: जरूर जरूर
1: सुन लिया जाए जी।

0: सर, दिल तो यही चाहता है कि ये सिलसिला जो है बातों का बस यूं ही चलता रहे, एक घंटे नहीं, दो घंटे नहीं, मुझे लगता है पूरी रात हम ऐसे ही बैठे रहें और आपके एक्सपीरियंस जो है वो सुनते रहें। सर, चलते चलते ये बताएं कि जो आकाशवाणी को जो देन है, आकाशवाणी की जो देन है,
1: हाँ। देखिए, जिस आकाशवाणी दिल्ली में हम आप बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पूरे भारत में जो है जो चार जनरल डिब्बे लगते हैं ट्रेन में, वो यहीं रेल मंत्री जी आए थे स्टूडियो वन में, और जो हम प्रोग्राम चलाते थे पूरे देश भर से सवाल मंगा करके एक एक मंत्री को बुला करके, उसकी देन है। ये जो सामने रेड क्रॉस है आपके, वो जो है ना, वो 24 घंटे अगर उसका ब्लड बैंक चल रहा है तो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। और जो सीनियर सिटीजन का जो रिजर्वेशन स्पेशल काउंटर है, वो आकाशवाणी दिल्ली के देने। बहुत सारी लंबी सूची है। बहरहाल जी,
0: सर, दिल तो यही चाहता है कि आप पूरी जितनी भी कहानियां हैं वो सब हमें बताएं, लेकिन फिर कभी और मौका मिलेगा तो जरूर इस बारे में बात होगी, और वक्त बहुत कम बचा है। सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप
1: जी, बहुत शुक्रिया
0: और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, सच में बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। और सर, मुलाकात होगी आपसे फिर
1: जरूर
0: किसी
1: जरूर। बहुत बहुत आभार सभी का, पूरी टीम का, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
0: जी सर। समाचार
2: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शांति, एकता और संप्रभुता को

0: तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और अन्य राज्यों के उपचुनावों से 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि जब्त की है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 2021 के चुनावों की तुलना में 40% से अधिक जब्ती हुई है। पश्चिम बंगाल में जब्ती में अधिकतम लगभग 69% वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu has called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. In a social media post, she said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces has displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. The Prime Minister said Operation Sindoor reflected India's firm response against terrorism and its unwavering commitment to safeguarding national security. The Indian Armed Forces today said Operation Sindoor successfully achieved its objectives and demonstrated exceptional coordination among the Army, Navy and the Air Force. A joint press conference was organized on the sidelines of the Combined Commanders Conference in Jaipur to mark the first anniversary of the operation. Addressing the media, Lieutenant General Rajiv Ghai said, Indians' fight against terrorism continues with full determination. He stated that Operation Sindoor proved that the vision of an Atmanirbhar Bharat is no longer just a slogan.
2: Operation Sindoor saw India very consciously and coherently.

0: medical examination and other formalities as per Government of India rules. The maximum age limit is 58 years as on the closing date of the application. Applications must be submitted in the prescribed format through registered speed post to Office in Charge, Civilian Recruitment Cell, Naval Ship Repair Yard, PO, Haddu, Sri Vijayapuram, 744102. Incomplete or late applications will be rejected. For details, kindly visit the official website at www.andamannicobar.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर वास्तुकला के एक पद के लिए आवेदन। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2026 से उपलब्ध हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 18 मई 2026, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख है 25 मई 2026। शैक्षिक योग्यता, पात्रता, वेतन इत्यादि सभी बातों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iust.ac.in। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अपर निदेशक एक पद, संयुक्त निदेशक व्यावहारिक प्रशिक्षण एक पद, उपनिदेशक अर्थशास्त्र और योजना एक पद तथा सहायक निदेशक कार्यालय प्रबंधन एक पद। पात्रता शर्तों के विवरण और निर्धारित प्रोफॉर्मा जिस पर आवेदन भेजे जाने चाहिए देखने के लिए जाइए इस वेबसाइट पर www.istm.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लीड कंसल्टेंट एक पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए NDMA का रोजगार पोर्टल ndma.gov.in। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, नियम, शर्तों और रिक्ति
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: Hello Jaya, hello and a very warm welcome to all our listeners tuned into Parikrama 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Jaya Bharti. Well listeners, here are three amazing facts about a legend. Firstly, he is the only person to compose national anthems of two countries, India's Jana Gana Mana and Bangladesh's Amar Sunar Bangla. In addition, the national anthem of Sri Lanka was greatly inspired by his work.

0: as well is none other but the towering figure of Bengal Renaissance, whose work redefined literature, music and art. He's Rabindranath Tagore, and we are going to speak about him later in our program. Yes, sir, but before that, I think Jaya is going to say something.
1: Yes, Abhishek, श्रोताओं को बता देना चाहूंगी कि इसी तरह के कई विशिष्ट व्यक्तियों की आज हम बात करेंगे, उनके कई गीत और संगीत भी होंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में, तो अंत तक बने रहिएगा.
0: Yes, sir, but first of all, we begin with the news headlines first.
1: बिल्कुल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया.
0: बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एक्सपेंड्स हिज कैबिनेट. 32 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग नीतीश कुमार सन टेक ओथ एज न्यू मिनिस्टर्स.
1: तमिलनाडु और केरला में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी.
0: Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above.
1: और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से.
0: Yes, and now listeners, it's time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about Operation Sindoor Remembrance Day. Well, we are talking about a very special broadcast, Operation Sindoor, 1 year of resolve. Today, we revisit one of the most significant military operations in recent Indian history, Operation Sindoor, launched by India on the night of May 6th and 7th, 2025, in response to the deadly terror attack in Pahalgam, a story of courage, strategy, precision, and the nation's resolve against terrorism.

0: Yes, and 1 year ago today, India carried out a carefully planned military response targeting terror infrastructure across the border in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. The operation came after the brutal terrorist attack in Pahalgam on April 22, 2025, in which innocent civilians lost their lives. The attack shocked the country and reignited national anger against cross-border terrorism.
1: बिल्कुल अभिषेक, और इसके बाद के दिनों में हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, भारत इसका जवाब कैसे देगा। इसका जवाब 6 और 7 मई की रात को मिला। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस मिशन का मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, साथ ही आम नागरिकों को नुकसान से बचाना और हालात को बेवजह बिगड़ने से रोकना भी था। आज रात जो हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया, इसकी योजना कैसे बनाई गई और इसे कैसे अंजाम दिया गया, भारत के सशस्त्र बलों की भूमिका, दुनिया भर की प्रतिक्रिया और एक साल बाद भी ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा नीति को किस तरह प्रभावित कर रहा है।
0: Yes, and to understand Operation Sindoor, we must first revisit the tragedy that triggered it on April 22, 2025. Terrorists attacked tourists in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Families on vacation suddenly found themselves caught in violence and chaos. The attack resulted in multiple civilian deaths and injuries. The incident drew condemnation from across India and around the world. Political leaders, civil society groups and international observers described it as a barbaric act of terrorism. Across the nation, candlelight marches were held. Citizens demanded justice, security agencies intensified investigations, and behind closed doors, India's defense and intelligence establishment began preparing a response.
1: और अधिकारियों ने बाद में बताया कि सरकार का मकसद साफ था, ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले, उनकी योजना बनाने वाले और उन्हें संभव बनाने वाले आतंकी ढांचे को इसके नतीजे भुगतने ही होंगे। कुछ ही दिनों के भीतर सैन्य योजनाकारों, खुफिया विश्लेषकों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने कथित तौर पर विस्तृत मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की गई, खुफिया नेटवर्क को सक्रिय बनाया गया, संदिग्ध आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान की गई। यह तैयारी आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर का आधार बनी।
0: Military analysts have since described Operation Sindoor as a highly coordinated, multi-dimensional operation. Unlike conventional military engagements, the operation reportedly combined intelligence gathering, cyber coordination, aerial surveillance, precision targeting, and strategic communication. And Indian Armed Forces carried out what officials called a microscopic scan of the terror landscape across the border. And according to official statements, numerous terror camps, launch pads and training facilities linked to extremist organizations were identified.
1: और इस मिशन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, आतंकी ढांचे को खत्म करना, भविष्य के हमलों को रोकना, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भारत की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करना और सबसे खास बात, आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए रणनीतिक संयम बनाए रखना। रक्षा विशेषज्ञों ने बाद में यह टिप्पणी की कि यह ऑपरेशन भारत के विकसित होते सैन्य सिद्धांत को दर्शाता है, एक ऐसा सिद्धांत जो गति, खुफिया जानकारी, सटीकता और नपीतुली सैन्य शक्ति का मेल है।

0: Yes, and another major talking point after Operation Sindoor was India's growing technological and defense capabilities. Experts pointed to the increasing use of advanced surveillance systems, precision-guided weaponry, indigenous defense platforms, real-time intelligence integration, electronic warfare systems and coordinated battlefield communication networks.
1: और रक्षा विश्लेषकों ने कहा कि इस ऑपरेशन से यह पता चला कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सैनिकों की संख्या पर नहीं बल्कि डेटा गति और तकनीकी एकीकरण पर भी ज्यादा से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। इस ऑपरेशन ने स्वदेशी रक्षा निर्माण और उन्नत सैन्य प्रणालियों पर भारत के बढ़ते भरोसे को भी उजागर किया। कई जानकारों ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों ने इस तरह के सटीक ऑपरेशनों को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
0: Yes, and perhaps one of the strongest messages from Operation Sindoor was a remarkable coordination among India's three defense services. The Indian Army, Air Force and Navy reportedly operated in close synchronization throughout the mission. Military strategists often describe such integration as joint operations capability. Where all services work together towards a common strategic objective, Operation Sindoor became one of the clearest examples of this capability in action.
1: और विशेषज्ञों ने यह बात भी माना है कि इस स्तर के तालमेल के लिए वर्षों की योजना, संचार सुधार, संयुक्त प्रशिक्षण और एकीकृत कमान संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेशन ने न केवल मारक क्षमता बल्कि संगठनात्मक दक्षता को भी प्रदर्शित किया और कई भारतीयों के लिए यह सशस्त्र बलों की पेशेवरता और तत्परता का प्रतीक बन गया।
0: एंड फॉलोइंग द ऑपरेशन्स टेंशन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रोज शार्पली। Security preparedness increased across the region. International leaders urged de-escalation. Diplomatic channels became highly active. However, Jaya, Indian officials maintained that the operation had achieved its intended objectives. According to statements released afterward, the strike significantly disrupted terror infrastructure and sent a strong deterrent message. Analysts observed that Pakistan eventually moved towards ceasefire understandings amid rising pressure and escalating tensions.
1: जी अभिषेक, और इस तरह से भारत में ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही राष्ट्रीय चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया और यह प्रतीक बना राष्ट्रीय संकल्प का, सैन्य क्षमता का, रणनीतिक स्पष्टता का और आतंकवाद के विरुद्ध एक दृढ़ रुख का।
0: Absolutely, and behind every military operation are human stories, stories of soldiers standing alert through the night, pilots preparing for dangerous missions, intelligence officers analyzing information for days without pause, families waiting anxiously for news, and most importantly, the memory of civilians whose lives were lost in the Pahalgam attack.
1: और आज जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहा है तो पूरे देश में एक ही संदेश गूंज रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दृढ़, केंद्रित और अडिग है। और यह इस बात को भी याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा के लिए अक्सर साहस, अनुशासन और एकता की आवश्यकता होती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। इससे पहले आज से स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी जनगणना हमारा विकास की भावना का आह्वान करते हुए कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 21 मई तक स्वगणना के तहत नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया के नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
3: प्रथम फेज हमारा 22 मई से 20 जून के बीच होगा उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी

दिलचस्प बात यह है कि प्रेम धवन ने जहां एक तरफ जोशीले देशभक्ति गीत लिखे, वहीं दूसरी तरफ चंदा मामा दूर के जैसी कोमल और प्यारी लोरी भी रची, और आज यह हर घर का हिस्सा है और आज भी बच्चों को सुलाने के लिए इस लोरी को प्रसिद्ध माना जाता है। 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी का बेहद लोकप्रिय गीत भी सुनते हैं।

और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय कला सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और पद्मश्री अलंकृत वनराज भाटिया की, जिन्हें पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। प्रीति सागर द्वारा गाया गया यह गीत उनके करियर का सबसे सफल गीत माना जाता है।

0: और किशोर कुमार और आशा भोसले द्वारा गाया गया यह गीत मुख्य धारा के करीब संगीत का एक उदाहरण है।
1: दिल जिंदा रखने के लिए कोई दर्द जरूरी होता है, दर्द भरी।
0: एक और इनका गीत सुनते हैं, आरती अंकलीकर टिकेकर द्वारा गाया गया, जो ठुमरी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: उन्होंने करीब 6000 से अधिक विज्ञापनों के लिए भी संगीत दिया। गानों के अलावा उनका भारत एक खोज का शीर्षक संगीत और तमस का बैकग्राउंड स्कोर भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यों में गिना जाता है।
1: So with that, it's a wrap on this edition of Parikrama. So from Jaya Bharti and me, Abhishek Mukhopadhyay, thank you so much for being with us. So till the next time, bye and
0: Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर ने आज

भाजपा के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले। शो है गाते गुनगुनाते, जिसमें हम बात करते हैं 80 और 90 के दशक के फिल्मों के गीतों के बारे में। चलिए, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, उसको सुन लेते हैं पहले।

फिल्म कुदरत जिसका गीत अभी हमने सुना। फिल्म कुदरत की अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी और राजेश खन्ना का खन्ना इस फिल्म में लीड रोल में थे। 1981 में बनी ये फिल्म पुनर्जन्म पर बेस्ड थी। इस फिल्म के गीत आज भी रूह को ताज़ा कर देते हैं। फिल्म की कहानी कैसी भी हो लेकिन इसका जो म्यूज़िक है बहुत शानदार रहा। फिल्म में लता जी का गाया एक गाना तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। इस गाने की धुन आरडी बर्मन ने अपने पिता एसडी बर्मन के एक पुराने बंगाली गाने की धुन से इंस्पायर होकर बनाई थी। ये धुन चेतन आनंद को बहुत पसंद आई मगर इसको फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त तो चाहिए थी। तब एसडी बर्मन चेतन आनंद को लेकर अपनी माँ मीरा देव बर्मन के पास गए। उनसे परमिशन लेने के लिए मीरा जी ने खुशी खुशी इजाज़त भी दे दी। तब ये धुन फिल्म कुदरत के इस गीत में इस्तेमाल हुई। गीत बेहद पसंद किया गया। बिना का गीत माला में 12वें नंबर पर था और 25 हफ्ते चलने के बाद सरताज गीत बनकर वहां से हटा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का बेहद बेहद खूबसूरत ये गीत।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000

लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ। फिल्म राजपूत जिसके डायरेक्टर थे विजय आनंद, फिल्म की कहानी भी उन्हीं की थी। निर्माता मुशीर रियाज एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाना चाहते थे तो विजय आनंद ने उन्हें एक कहानी सुनाई। ये कहानी उनके जहन में कुछ सच्चे किस्सों को सुनकर आई थी। जब सरकार ने रजवाड़ों को उनकी सत्ता को खत्म करना शुरू कर दिया था। कहानी राजस्थान में सेट की गई थी, राजपूतों की बात करनी थी। फिल्म में 3 हीरो चाहिए थे। विजय आनंद ने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए फाइनल किया। जब अमित जी ने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का रोल ज्यादा दमदार है, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर वो जो रोल है विनोद खन्ना के हिस्से में आया। एज हीरोइन हेमा मालिनी इस फिल्म में मेन रोल में थी, साथ में रंजीता और टीना मुनीम भी इस फिल्म में शामिल थी। ये जो एक खास गीत है जिसमें हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत लगी हैं, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

इसी के साथ ही मुझे यानी नसरीन को दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ। अपना और अपने अपनों का खास खास ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। और अब एफएम गोल्ड पर ये वक्त है नॉर्थ ईस्ट डायरी का, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश या कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पटना में एक रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी

0: था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रे कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने आज नई दिल्ली में जनगणना जागरूकता के लिए 6 एलईडी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। उधर भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India today said it gave a befitting reply to Pakistan during Operation Sindoor for its sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stressed that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy.
2: We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was. We gave a befitting reply to Pakistan for its sponsorship of cross-border terrorism. The world knows that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy. We in India have every right to defend ourselves against terrorism. We will continue to work to strengthen the global fight against terrorism.
1: Responding to a query on repatriation of illegal Bangladeshis, Mr. Jaiswal said that more than 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh. He said that any foreign national staying illegally in the country must be repatriated as per the country's laws, procedures and established bilateral mechanisms and arrangements. On Khalistani groups in Canada, the spokesperson said that India has consistently spoken out about concerns regarding the use of Canadian territory as a safe haven by extremist and separatist elements. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. President Draupadi Murmu has called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. In a social media post, she said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength. In Tamil Nadu, amid political stalemate, the Palis continue to form the new government. In this regard, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar invited the TVK president, C. Joseph Vijay, to the Lok Bhavan in Chennai today. It was informed in the press release from the Lok Bhavan that during the meeting, the governor explained that the requisite majority support in the Tamil Nadu Legislative Assembly, which is essential for forming the government, has not been established. in West Bengal in connection with the murder of BJP MLA Suvendu Adhikari's close aide, Chandranath.

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वक्त है सदाबहार गीतों का और सदाबहार गीतों में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार।

ये गीत आपने सुना साल 1967 की फिल्म मिलन से मुकेश साहब और लता दी की आवाज में। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। और अब सुनिए फिल्म बहारों के सपने से लता दी की आवाज में एक और सदाबहार गीत, संगीत आर डी बर्मन साहब का।

0: Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: आप दोनों के साथ साथ सभी सुनने वालों को गुड इवनिंग, नमस्कार।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex falls 114 points. Nifty settles about 24,300. Major Asian stock market indices end higher and global crude oil prices decline.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 114 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: तो आइए जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज दिन के अंतराल में कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 77,845 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 4 अंक लुढ़ककर 24,327 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ही सूचकांकों में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई।
1: Benchmark domestic equity indices staged a lackluster close today, remaining largely unchanged amid a choppy trading session. Sensex dropped 114 points to close at 77,845, while Nifty dipped 4 points to settle at 24,327. However, the broader market on the National Stock Exchange managed to close with gains. Mid-cap 100 surged 1.1% and the small-cap 100 rose nearly 0.9%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलिवर लगभग 2%, टीसीएस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे पहला नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% से अधिक, एनटीपीसी लगभग 1.5% और कोटक बैंक में 1.2% की वृद्धि हुई।
1: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 25 sectors edged upward. In the top gainers, capital goods gained more than 2%, auto climbed 1.8% and industrials added 1.7%. Among the top losers, focused IT dropped nearly 0.8%, IT lost nearly 0.6% and consumer durables as well as PSU banks fell over 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,735 companies declined, 1,521 companies advanced and 167 companies remain unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 36 पैसे मजबूत होकर ₹94.24 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 97.89 पर चल रहा था। सिद्धार्थ, कल हमने देखा कि बाजार में खूब खरीदारी हुई और आज हम देख रहे हैं कि कॉशियसली बुलिश ट्रेंड है, इसे आप कैसे रेखांकित करते हैं?
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक बोला। कल और जो कल की तेजी थी उसके प्रमुख कारण जो था कि जो अमेरिका और ईरान में के बीच जो युद्ध चल रहा है और उसकी समाप्ति के जो है बहुत ज्यादा आसार बढ़ गए और उसी की वजह से बाजार में तेजी थी। जो 15 सूत्रीय जो एक समझौता जिसका अभी ईरान इस समय उसकी स्टडी कर रहा है, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने बोला कि अभी उनको इंतजार है ईरान के जवाब का, तो मुझे लगता है कुल मिला के जो आज लेकिन कल जो बाजार में तेजी थी उसकी वजह बेसिक वजह वही थी। लेकिन आज जो बाजार में हमने देखा बाजार मोटे तौर पे रेंज बाउंड थी, शायद ये एक्सपेक्टेशन है बाजार भी आगे बढ़ने से पहले एक क्लैरिटी चाहती है, बाजार में क्लैरिटी का इंतजार है कि हाँ किस तरफ जो है रुख, अब ये युद्ध खत्म हो रहा है, ये पक्के तौर पे अगर इस तरह ये बात साबित हो जाए या स्थापित हो जाए उसके बाद ही शायद बाजार अपना रुख तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है अब यहां से एक बात तो तय लग रही है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, ऐसे संभावना कम है। लेकिन हाँ चूंकि इस पिछले 2 महीने से ऊपर के अंतराल में कई बार अनिश्चितताएं हमने देखी, तो कुछ भी फाइनल कहने से पहले अभी मुझे लगता है कि हाँ आउटकम का वेट करने चाहिए। तो शायद बाजार में एक कॉशियस जो आप कह सकते हैं वो ऑप्टिमिज्म इसी की वजह से था, तो इसलिए बाजार आज रेंज बाउंड था। लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान की बाजार में अब आने वाले दिनों में हमको तेजी ही देखने को मिलेगी।
0: मुनाफा वसूली भी आज देखने को हमें मिला कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, आईटी में, एफएमसीजी में, पीएसयू में, तो ये किस तरफ रुख लेकर के जाते हैं बाजार?
2: नहीं प्राची बिल्कुल, मतलब अगर आप बाजार में हैं तो बाजार में क्यों आते हैं आप? इसीलिए आते हैं कि अगर आपको मौका लग रहा है कि आप अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो शायद। और पिछले मतलब मैं कहूंगा 1.5 साल से बाजार में जो है इस तरह की अनिश्चितताएं बनी हैं, चाहे अभी ईरान का युद्ध हो, अमेरिका ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से बनी हो, इससे पहले ट्रंप साहब
0: की स्थिति है, रेस्टलेसनेस
2: तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एक अनसर्टेनिटी इज द बेटर वर्ड। तो शायद उसमें आपको लगता है जब भी मौका कि अगर प्रॉफिट बुक कर लें और मैं कहीं और किसी नए जो है क्षेत्र में निवेश कर दूं, किसी नए स्टॉक में निवेश कर दूं, तो यस और आप बाजार में आते भी इसीलिए प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो इसमें मैं कोई गलत वो नहीं देखता हूँ, ये तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर आदमी प्रॉफिट बुक करेगा तभी वो बाजार में रहेगा दोबारा।

0: them getting back in the green.
1: सिद्धार्थ, कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 यानी कि 5.0 को. इसका कैसा आप देखते हैं इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर?
0: देखिए प्राची, एक तो मैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक बात एक मोटे तौर पे ये बात कहूंगा, चाहे जब भी क्राइसिस आती है और अभी किसी भी तरह की क्राइसिस को नजरअंदाज करते हुए सरकार निरंतर जो है रिफॉर्म्स का और नए जो पॉलिसीज हैं उनके उनकी घोषणा लगातार करती रहती है, उन पर अमल करती रहती है. और ये बात अभी वित्त मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कही थी कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह की क्राइसिस आती है तो हम ऐसा नहीं है कि अपने जो हमारा रिफॉर्म का एजेंडा है उसको जो है रोक दें या उस पर. और जहां तक आपने जो अभी कैबिनेट हुई परसों जिसमें बहुत सारे बड़े फैसले लिए हुए, ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें से वो एक था. जैसे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्कीम 5.5 हजार करोड़ की स्कीम अनाउंस की गई. गन्ना किसानों के लिए फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस वो फिक्स की गई, बढ़ा के फिक्स की गई. शिप बिल्डिंग जहां हम बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं उसके लिए एक रिपेयर फैसिलिटी, मतलब बड़े जहाजों को रिपेयर करने के लिए उसका एक अनाउंसमेंट हुआ. सेमीकंडक्टर्स, मुझे लगता है परसों के अनाउंसमेंट के बाद, कैबिनेट की क्लियरेंस के बाद, अब तकरीबन 12 ऐसे फैसिलिटीज हैं सेमीकंडक्टर की जिन पे हम काम कर रहे हैं. और अब लौटते हुए आपके सवाल पे, क्रेडिट गारंटी स्कीम ये इसका सीधा सीधा जो इसको अगर हम जोड़ें तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद जो हमारे इकोनॉमी पे या अर्थव्यवस्था पे जो कंपनियों पे जो संकट आया है, खासकर जो छोटी कंपनियां MSME जिनको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको और एक एयरलाइन सेक्टर जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि क्रूड की प्राइजेस बढ़ी तो ATF की प्राइजेस बढ़ी तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों पे एक प्रेशर है. तो उसके लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की ये जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसमें सरकार आपके लोन्स के अगेंस्ट गारंटर होगा. और इसमें जो MSMEs हैं जो लोन लेंगे उनका जो ऑलमोस्ट जो लोन सैंक्शन लोन है उसके ऊपर 100% जो है भारत सरकार गारंटी करेगी. एयरलाइन और उस पर जो नॉन MSME कंपनीज हैं उनका तकरीबन 90% लोन जो है गारंटी कवरेज के में कवर होगा. और जो एयरलाइंस हैं उनको भी 100% कवरेज दिया गया है विद अ कैप की 1500 करोड़ का कैप होगा. और इसके लिए मॉरिटोरियम होगा, MSMEs जो है तकरीबन 5 साल में ये पैसा लौटा सकेंगे. एयरलाइन कंपनीज चूंकि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बड़ा पैसा लगता है एयरलाइन को चलाने में, तो उनको जो है 7 साल का पीरियड दिया गया है. तो मुझे लगता है इससे क्या होगा, जो इस समय जो लिक्विडिटी क्राइसिस है, जो कंपनियों पे दबाव है क्योंकि आमदनी भी घटी है, साथ साथ जब जो आपके पैसे इधर उधर जो फंसे होते हैं उनको आन के लौटने में भी देरी आती है, तो इस पूरी स्थिति को आपको जो है लिक्विडिटी की जब वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है तो आप जब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको कोई ना कोई गारंटी मांगता है, कोलेट्रल मांगता है कि उसको ये कैसे विश्वास हो कि ये पैसा आप लौटाएंगे. तो ऐसे समय पर सरकार खड़ी हो रही है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप इन कंपनियों को जो MSMEs हैं या नॉन MSME कंपनीज हैं और खासकर एयरलाइंस के लिए, उनके लिए तकरीबन एक 5000 करोड़ केवल एयरलाइंस के लिए जो है हम सरकार ने ईयरमार्क किया है.
1: जी आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई. वॉल स्ट्रीट में रात भर हुई बढ़त, तेल की कीमतों में गिरावट और मजबूत वित्तीय नतीजों से निवेशकों का ऊंचा मनोबल आज के कारोबारी सत्र में नजर आया. जापान का निकेई लगभग 5.6% बढ़कर 62,834 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. हालांकि दिन के कारोबार के दौरान यह संक्षेप में 63,000 को पार कर गया था. हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.6%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4% से अधिक, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% बढ़ा. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें श्रोताओं तो इनमें गिरावट देखी गई. लंदन का फुटसी 0.5% से अधिक, जर्मनी का डैक्स 0.3% से अधिक और फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% नीचे कारोबार करता नजर आया.
2: सिद्धार्थ जी, इफ लुक एट जापान्स निकेई 225, इट एक्चुअली वेंट अप बाय 5.6%. दैट इज सब्सटेंशियली हाई एंड the yen has actually got devalued to the US dollar. It's trading at 156.35. Earlier it used to be below 150, and then there was the carry over trade as well, where you have traders borrowing in yen and then trading in their own stock market, and then रिटर्निंग

0: Bilateral ties have not witnessed a breakthrough so far, but the future will offer numerous opportunities for the same, adding that Vietnam looks forward to strengthening this cooperation with India. Earlier in the day, To Lam visited the National Stock Exchange in Mumbai. On the occasion, President Lam acknowledged the strength and the resilience of India's stock market.
1: Siddharth, Vietnam ke president ne unke rashtrapati ne kaha ki कि इतनी अनिश्चितताओं भरे समय में भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम एक मौके के तौर पर इसे देखते हैं, इसका क्या अर्थ बनता है, इस पर आप जरा प्रकाश डालें।
2: नहीं देखिए प्राची, उसका जो जो एक हमको उदाहरण अगर मैं कहूं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट लैम के बीच में एक बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि तकरीबन जो 16 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है जो अभी, वो उसको 2030 तक 25 बिलियन तक ले जाना, और वियतनाम का एक हमारा जो यूपीआई जो कि दुनिया भर में अब जिसका डंका बज रहा है और रोज हम देख रहे हैं एक नए देश के साथ, तो अब हमने वियतनाम के साथ भी ये एग्रीमेंट किया है कि उनके सेंट्रल बैंक और हमारा सेंट्रल बैंक के साथ मिलके जो एग्रीमेंट हुआ है यूपीआई को वहां पे वियतनाम में भी हम अब उसकी प्रेजेंस देखेंगे। साथ साथ दवाइयों के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है, कल्चरल टाइज जो है और प्रगाढ़ करने के का समझौता हुआ है। साथ साथ जो है हिंदुस्तान से जो अंगूर हैं वो अब वियतनाम एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो इस तरह के कई समझौते हुए। इंडियन ओशन के में जो हिंदुस्तान का इनिशिएटिव है उसमें भी वियतनाम भाग लेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेड कल्चर और जो इकोनॉमिक टाइज उनको और मजबूत इस यात्रा के बाद जो है दोनों देशों के बीच ये मजबूत होंगे।
0: Will it evolve into an FTA, free trade agreement?
2: I think that also FTA, obviously with different countries we call it, we give it a different connotation. With Vietnam we have said we want to enhance it to a comprehensive strategic partnership. So with some countries we call it FTA, with Vietnam obviously we are saying, but I don't think it's too early to say that we'll have an FTA with Vietnam.
1: आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार 2021-22 से 2025-26 तक के 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पीएमईजीपी योजना ने भारत के सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है। मंत्रालय ने कहा कि लगभग 13,554 करोड़ रुपए के स्वीकृति आवंटन के मुकाबले योजना के निधि का पूर्ण उपयोग किया गया है। योजना ने 4,03,000 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाया है।
0: Well, let's move on to the oil market. Now, global crude oil prices extended declines today amid hopes that United States and Iran were nearing a peace deal. Brent crude was trading 3.3% down at $97.88 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading 3.7% lower at $91.53 per barrel when reports last came in. How motivated are international oil companies to bring the prices down? Because according to Shell, their first quarter profits have surged to $6.9 billion amid the Middle East conflict. So despite the problems of supply, there seems to be a motivation for oil companies not to actually bring down prices.
2: No, I don't think, Arjun. I think the company that you referred to is basically because a US-based company, US interest is... being reflected there, and US obviously gains the maximum out of this West Asia crisis. Their exports of crude oil has gone up also. So I think, and we are now also buying in large quantities from US. So I think it is primarily because of that. But if there is peace in West Asia, if there is an agreement which is looking very high on cards now, and that is what is being reflected in the prices of the Brent crude, which have now come below $100. I think if I would also give you a refer to a comment by the Deputy Governor RBI day before yesterday, Ms. Poonam Gupta, she said she expects, because there is huge supplies of crude oil, and the demand is not that aggressively high, so they expect things to normalize very fast if there is peace.
0: Well, let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading around 0.5% up at 1 lakh 53,420 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.8% higher at 2,61,140 rupees per kilogram,

0: a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आधा प्रतिशत बढ़कर 1,52,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 3% बढ़कर 2,60,841 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सिद्धार्थ, संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम आने वाली 3 साल की अवधि को लेकर के चले तो इक्विटीज में अभी इन्वेस्ट करें तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा या गोल्ड खरीद लिया जाए?
2: नहीं, गोल्ड आप खरीद लेंगे लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदेंगे या आप उसको मतलब हालांकि अभी
1: क्योंकि जो कई सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल है।
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं अगर अभी जो एक रिपोर्ट आई थी गोल्ड काउंसिल की, उसमें उन्होंने कहा कि अब निवेशक बड़े समझदार हो गए और अब निवेशक भी गोल्ड में, ज्वेलरी में बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी ये मुझे नहीं पता आप किस तरह से अभी गोल्ड कॉइन्स खरीदती हैं या बार्स में इन्वेस्ट कर रही हैं या ज्वेलरी में कर रही हैं, क्योंकि ज्वेलरी खरीदते समय आप बहुत ज्यादा मेकिंग चार्ज देते हैं और जब आप गोल्ड कॉइन या बार में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें मेकिंग चार्ज कम होते हैं, तो दैट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट। और वो शायद हिंदुस्तान के जो अब लोग हैं उसका परिचय दे रहे हैं, उस समझदारी की, उस स्मार्टनेस, तो दे बिकम स्मार्ट इन्वेस्टर्स। लेकिन मैं ये साथ साथ हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगा क्योंकि गोल्ड को लेकर हिंदुस्तान में अभी भी एक धारणा है कि उसको नहीं बेचना है, तो शायद आप उसको मोनेटाइज या उससे प्रॉफिट ना कमाएं, क्योंकि आपको एक कहीं ना कहीं हमारे घरों में लेडीज की एक सोने के तरफ एक चॉइस बनी रहती है, वो कि वो बेचना इज नॉट अ वेरी नॉट सीन एज समथिंग वेरी गुड। तो मुझे लगता है आप मार्केट में पैसा लगाएं, निवेश करें और बाजार इस समय बहुत अच्छे स्तर पे है, बहुत अच्छे स्टॉक्स, अच्छा रिसर्च करें। तो मुझे लगता है कि 3 साल का अगर आपका नजरिया जो आपने कहा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप कमा के जाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए।
0: And now the closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex falls by 114 points. Nifty settles about 24,300. Major Asian stock market indices end higher. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
5: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
4: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम भारतीय सेना का शौर्य और आतंकवाद पर अचूक प्रहार।
1: बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। रामचरितमानस की इस पावन चौपाई में एक शाश्वत और मौलिक सत्य निहित है कि सहनशीलता सदैव महान और स्थायी होती है, लेकिन जब उसका गलत अर्थ निकाला जाए या उसे दुर्बलता समझ लिया जाए तो वही सहनशीलता धर्म संगत और अडिग शक्ति का रूप ले लेती है। भारत ने हमेशा अपने धैर्य की गहराई से शक्ति प्राप्त की है, लेकिन इतिहास चेतावनी देता है जब सीमा हद से ज्यादा पार हो जाए तो हिमालय भी ज्वालामुखी जैसी बन उठती है। भारत के भाग्य का भी एक नया अध्याय इसी प्रकार प्रारंभ हुआ जब देश ने सहनशीलता के बजाय अपने इतिहास से सीखते हुए अन्याय का जवाब अग्नि से दिया। अप्रैल 2025 वो सुबह भी किसी आम दिन जैसी ही थी। पहलगाम, जहाँ की हवाओं में केसर की महक और पानी में बर्फ की ठंडक होती है, उसी पहलगाम के खूबसूरत वादियों में पर्यटक घूम रहे थे। हंसी, तस्वीरें और यादें बन रही थीं, और तभी गूंज उठी गोलियां और शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा, धर्म बताओ, गोली मार दो।
2: पर थी क्या बोलते, भेलपुरी खा ली थी, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी, बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
3: प्लीज आस्क फॉर हेल्प,
4: मेरे पति का बच्चा ले, इस भगवान के लिए बच्चा ले।
1: 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे भारत वर्ष में शोक ने संकल्प का रूप लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया, जवाब होगा और ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।
5: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
1: देश की राजधानी दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, खुफिया इनपुट्स जुटाए जाने लगे, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी, हर एक लोकेशन को ट्रेस किया जाने लगा और फिर तैयार हुआ एक प्लान, सटीक, गुप्त और निर्णायक। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर।

0: सिंदूर जो सम्मान का प्रतीक है, और जब यही सम्मान चुनौती में पड़े तो वही सिंदूर बन जाता है प्रतिशोध का संकल्प। 7 और 8 मई की रात 1:04 से 1:28 के बीच आधी रात का सन्नाटा भारतीय तोपों की गर्जना से टूट गया। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी आसमान को चीर दिया, तेज, सटीक और अजेय। यह हमारी भारतीय सेना के तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक इच्छा शक्ति का ही प्रमाण रहा कि भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सटीकता के साथ गरजते हुए पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को धू धू कर जलते हुए खंडहरों में बदल दिया और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। प्रत्येक हमले ने आतंक के हर उस वैचारिक धड़कनों पर प्रहार किया जिसने हत्यारों को हमारी सीमा पार भेजा था। इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश को इस बारे में उस समय आधिकारिक जानकारी प्रदान करते हुए कहा,
1: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
0: भारत ने महत्वपूर्ण पाकिस्तानी हवाई ठिकानों, रनवे स्ट्रिप्स, वायु रक्षा प्रणालियों और प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों सैन्य कर्मी मारे गए। 11 पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकाने को इस तरह सटीकता से मिसाइलों ने तबाह किया कि वे तुरंत ठीक कर इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते थे। उनके एयरबेस के रनवे खंडहर में पड़े थे, हैंगर सुलग रहे थे, जबकि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, राफेल, तेजस और सुखोई सीमा पर दृढ़ता से गश्त लगा रहे थे, अविचल और चुनौती रहित। संदेश साफ था, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए भारतीय सेना को सीमा पार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गहराई, कोई दूरी, कोई रक्षा पाकिस्तान को भारत के संकल्प और पहुंच से नहीं बचा सकती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को साहसिक प्रयास बताया।
2: भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारतीय रक्षा व्यवस्था में आए उस बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया जिसने देश की सुरक्षा सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज भारत की सीमाओं पर केवल सैनिक ही नहीं अत्याधुनिक तकनीक भी तैनात है। ड्रोन निगरानी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियारों की बढ़ती ताकत भारत को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना रही है। जहां कभी रक्षा उपकरणों के लिए दुनिया की ओर देखा जाता था, वहीं आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत टैंक से लेकर मिसाइल और युद्धपोत तक भारत खुद बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और तेज हुआ, निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक चुस्त बनी और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खास ध्यान दिया गया। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि हिंद महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी मौजूदगी और शक्ति का संदेश देता है। ये नया भारत है जहां सैनिक के हाथ में साहस है और उसके पीछे खड़ी है तकनीक, आत्मनिर्भरता और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत अब केवल शांति की बात नहीं करता, भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जानता है।
3: टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते।

0: टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: आज इस ऑपरेशन को एक साल पूरा हो गया है। आज भी जब सीमा पर हवाएं चलती हैं, तो उनमें उन जांबाजों की वीरता की गूंज सुनाई देती है। एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे मील का पत्थर बताया।
2: वी आर मार्किंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे, और साथ ही साथ हम जो दुनिया भर में एक सहमति बन रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए और वैश्विक जोड़ इस लड़ाई में लाने के लिए, उसमें भी हम लोग संलग्न हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर, ये कहानी है उस माँ के बेटे की जिसने सरहद पर फर्ज निभाया, उस पत्नी के साहस की जिसने अपने सुहाग के सम्मान के लिए सिंदूर के संकल्प को जिया।
0: आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया।
1: इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की विरासत यही दर्शाएगी कि भारत एक ही समय में दयालु और अडिग, सिद्धांतवादी और शक्तिशाली, नैतिक और सैन्य रूप से कुशल और परंपरागत है। हमने पूरे विश्व को बताया है कि भारत के लिए न्याय सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति भी है, और जब राष्ट्र के संप्रभुता और साहस की परीक्षा होगी तो हम खुद की रक्षा के लिए स्वतंत्र और काफी हैं। हम केवल उस सभ्यता की अदम्य भावना के साथ कार्य करेंगे जिसने लंबे समय तक धर्म के झंडे को ऊंचा रखा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आक्रमण हमारी पवित्र धरती पर कभी शरण न ले सके।
0: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
1: आज हम इसके एक वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, भारत झुकता नहीं है, भारत रुकता नहीं है, भारत जवाब देता है। जय हिंद।

0: मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना।
1: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारतीय सेना का शौर्य और आतंकवाद पर अचूक प्रहार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सुन रहे हैं आप सांझ ढले, जहां दिन की थकान को हम संगीत की मधुर छांव में बदल देते हैं। और इस खुशनुमा शाम में मैं हूं आपके साथ विभा, शुभ संध्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो उस दौर का प्रतीक है जब सिर्फ एक मुस्कान से ही बाहर आ जाया करती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे इस गीत को बोल दिए आनंद बख्शी ने, और फिल्म है साल 1971 की आप आए बाहर आई।

क्या बात है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गीत आज भी उतना ही तरोताजा लगता है जितना कि उस दौर में था। और चलिए अब बात करते हैं राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी और जगदीप जैसे दिग्गज कलाकारों के अभिनय से सजी साल 1972 की फिल्म गोरा और काला की। इस फिल्म से हमने जो गीत लिया है वो अपने सॉफ्ट रोमांटिक अंदाज और खूबसूरत धुन के लिए जाना जाता है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश जी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सांझ ढले विभा के साथ। शाम अब ढलने लगी है और इस ढलती शाम के साथ हमारा अगला गीत एकदम फिट बैठता है। ये गीत अपने मस्ती भरे अंदाज और शानदार कोरियोग्राफर के लिए आज भी याद किया जाता है, जिसके गीतकार और संगीतकार हैं एक बार फिर से

और इसी गीत के साथ सांझ चले में आज के लिए बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में प्रस्तुत होंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और फिर 8:10 पर मैं फिर लेकर आऊंगी मधुरिमा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत, और आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रणनीतिक संकल्प और राष्ट्रीय दृढ़ता का निर्णायक प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये वो दिन था जब भारत के जवानों ने आतंकवाद को अभूतपूर्व शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ करारा जवाब दिया। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी

0: दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस राशि से द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, संकाय आवास और आधुनिक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 250 MBBS सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 150 छात्रों के साथ शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक और टिकाऊ निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिल्डिंग को भूकंप से सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना केवल एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस पहल से 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
3: 40 साल से ऊपर के सभी श्रमिकों का निशुल्क चिकित्सा परीक्षण भी होगा और इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है, और दिल्ली सरकार इसमें आगे बढ़ते हुए अपना भी योगदान करेगी। तो साइट्स पे जहां श्रमिक काम कर रहे हैं, जो उनके घरों में जाकर भी चिकित्सा परीक्षण हो जाए, अगर कोई अस्पताल तक नहीं आ सकता और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार इस योजना में अपना हिस्सा जोड़ेगी।
0: राजधानी में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वारोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। जन स्वास्थ्य विभाग के 4,100 MTS कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 121 लाख से अधिक बार घरों का दौरा कर मच्छरों के प्रजनन की जांच की। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने आज शाहदरा उत्तर जोन के दिलशाद गार्डन और झिलमिल क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निगम समूह ने सड़क निर्माण, नाली विकास, पैदल यात्री बुनियादी ढांचे और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निगम ने गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था, निर्माण और विध्वंस कचरे की नियमित निकासी और शौचालय ब्लॉक तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं के बेहतर रखरखाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आदेश जारी किए। साथ ही अधिकारियों को आश्रय स्थल की मरम्मत कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। संचार मंत्रालय ने बताया कि इसे आधुनिक वास्तुकला, बेहतर ग्राहक संपर्क क्षेत्र और डाक विभाग के आधुनिकीकरण के अनुरूप बनाया गया है। नए डाकघर में बेहतर पहचान, विशिष्ट दृश्य, बेहतर ग्राहक इंटरफेस और आधुनिक इंटरफेस जैसी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट हर साल लगभग 7,50,00,000 पार्सल और 90 करोड़ डाक वितरित करती है। श्री सिंधिया ने बताया कि 4 वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 13 करोड़ ग्राहक जुड़ गए हैं और डाकघर बचत बैंक में 23,00,000 करोड़ रुपए जमा हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि डाकघर जनसेवा का सशक्त माध्यम है।
4: भारत देश में अगर रक्त का संचार हृदय के रूप में कोई विभाग करता है तो मेरा डाक विभाग करता है। 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, अनुमान लगाओ 6,50,000 गांव हमारे देश में, हर 4 गांव में कम से कम एक डाक विभाग तो है, और जहां डाकिया डाक विभाग डाकघर ना हो वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको मिलेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि डाक विभाग देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट ने पत्रों और पार्सलों से आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण, सुशासन और नागरिक सेवाओं को सक्षम बनाने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी सेवाओं के एकीकृत होने के बाद प्रत्येक डाकघर अब जनसेवा केंद्र बनकर उभरा है, जिन्हें अब जनसेवा केंद्र का नाम दिया गया है।
5: हमारे पोस्ट ऑफिसेज केवल एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के तक सीमित नहीं है, आज हमारे पार्सल से लेकर के बैंक बचत तक हर तरह की सुविधाओं से, उसमें हमने आधार कार्ड जोड़ा, उसमें हमने पासपोर्ट सर्विसेज जोड़ी। इस सबके जोड़ने के बाद जिस तरीके से आज हमारा हर पासपोर्ट ऑफिस जो है वो जन सेवा का केंद्र बन चुका है।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में 1,600 से अधिक नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि यह पहल दिल्ली के लिए कुशल कार्यबल के निर्माण में पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उन्होंने बताया कि ये युवा सदस्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अमृतकाल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
6: हमारा कंट्री एक यूथ का कंट्री है, तो प्रधानमंत्री जी ने काफी बारी कहा है कि विकसित भारत में यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, ज्यादातर यूथ हमारा फ्यूचर है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई। इनमें नकली टीके, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटीसीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। अपराध शाखा ने इंदिरा विकास कॉलोनी में छापेमारी में अवैध दवा निर्माण इकाई का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस आयुक्त पंकज सिंह ने बताया कि बरामद की गई कुछ दवाइयां सरकारी आपूर्ति के लिए थीं, जिन्हें दोबारा पैक करके निजी बाजार में बेचा जा रहा था।
7: इंदिरा विकास कॉलोनी में एक रेड की और जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने एक बस्ट की, जिसमें ये पता चला कि इसमें कई टाइप की दवा है। कुछ दवा ऐसी भी मिली जो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए थी और इनको ये रीपैकेजिंग करके प्राइवेट मार्केट में बेचता था।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच के मद्देनजर राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कल से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित करेगा। एक रिपोर्ट।
8: एक माह से अधिक तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैलियों और रंग रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य नाटकों में बायेन, ताजमहल का टेंडर, बंद गली का आखिरी मकान, मायरी मैं कासे कहूं, तमस, अंधा युग, बाबूजी, आधे अधूरे और समुद्र मंथन शामिल हैं। साथ ही दर्शक इन प्रस्तुतियों के टिकट ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महोत्सव का उद्घाटन रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। महोत्सव का समापन अगले महीने की 14 तारीख को समुद्र मंथन नाटक के साथ किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: मिजोरम और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग ने कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.5

6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज राष्ट्र ने सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत का मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्री

मैं विभा करती हूँ स्वागत आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। मधुरिमा में आज बात विभिन्न रागों की, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है राग यमन को। राग यमन संध्या के समय का एक प्रसिद्ध राग है, जिसके गाने बजाने का समय होता है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। तो समय बिल्कुल अनुकूल है और माहौल को अनुकूल बनाते हैं इसी राग पर आधारित एक गीत सुनकर। बाकी की बातें करेंगे गीत के बाद।

राग यमन को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है, इसलिए इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। यह राग एक गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है, इसलिए इसमें छोटा और बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद आदि गाए बजाई जाती हैं।

राग यमन के बाद अब बात की जाए राग भैरवी की। राग भैरवी भैरवी थाट का आश्रय राग है जिसकी प्रकृति चंचल है और इसमें ख्याल नहीं गाए जाते। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस की अनुभूति भरपूर होती है, इसलिए इसमें ठुमरी टप्पा गजल और भजन के प्रकार गाए बजाए जाते हैं।

मधुरिमा में आज का हमारा आखिरी राग है राग पहाड़ी। राग पहाड़ी राग यमन या राग भैरवी जैसा भारी शास्त्रीय राग नहीं है, बल्कि एक धुन एक तराने की तरह अधिक होता है और आमतौर पर यह सुगम संगीत की तरह से इस्तेमाल किया जाता है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, खेलों में भारत का भविष्य खिलाड़ियों, संघों और सरकारों के बीच समन्वय पर निर्भर करेगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज मैच खेला जा रहा था। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 95 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद वर्षा के चलते मैच फिलहाल रुका हुआ है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंकतालिका की बात की जाए तो बेंगलोर तीसरे स्थान पर है और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। तो शिवेंद्र, लखनऊ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और बेंगलुरु के सामने लक्ष्यों की पूरी एक कतार है।
1: दरअसल ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पानी बरसने लगा है और खेल रुक गया है, क्योंकि लखनऊ जिस तरीके से मिशेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी हाफ सेंचुरी भी पूरी हो चुकी थी, 225 के आसपास का स्ट्राइक रेट था उनका और लखनऊ को एक ड्रीम स्टार्ट मिला था और एक बढ़िया सॉलिड फाउंडेशन भी उन्होंने बना दिया था। तो अगर आप पॉइंट टैली के हिसाब से या प्ले ऑफ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वहां पर तो ऐसा लगता है कि लखनऊ अब कह सकते हैं कि दे आर प्लेइंग फॉर प्राइड, क्योंकि वो अगर आज का मैच, इनफैक्ट जो उनके बचे हुए मैच है सारे जीतते हैं तो वो 14 पॉइंट पे पहुंचेंगे। आरसीबी अगर आज का मैच जीत लेती तो वो 14 पॉइंट पे पहुंच जाएगी, डिफेंडिंग चैंपियन है। ओवरऑल अगर आप देखें खेल के हर विभाग में तो आरसीबी एक सशक्त टीम उभर करके आ रही है। अभी तक जो उन्होंने मैचेस खेले हैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, और चाहे बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की, हर लिहाज से आरसीबी बेटर टीम उभर करके सामने आई है। अगर आप केवल उसको लखनऊ से कंपैरिजन करेंगे, देखिए बात यह है कि क्रिकेट है टीम गेम, इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत मायने रखती है, मैं मानता हूं। एट द सेम टाइम अगर टीम एफर्ट आता है तो वहां पर ही एक टीम एज ए यूनिट कामयाब हो सकती है। आरसीबी बहुत लंबे समय से आईपीएल के इतिहास को अगर हम टटोलें, 5 बार की चैंपियन मुंबई है, 5 बार की चैंपियन सीएसके है, 3 बार की केकेआर है, उसके बाद सब सिंगल सिंगल चैंपियन है, आरसीबी उनमें शामिल है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि रनर्स अप रहे, बहुत ही शानदार टीम थी और विराट कोहली इनसेपरेबल पार्ट है। अभी भी कितना अमेजिंग उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, गेंदबाजी में भी टीम अच्छा डिलीवर कर रही है। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर आज का ये बारिश की वजह से खेल रुकता नहीं है तो ये दोनों ही टीमों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। और अगर आप स्टेक्स हाई होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आरसीबी के लिए नुकसान दे, क्योंकि वो एक पॉइंट लूज करेंगे अननेसेसरी।
0: जी बिल्कुल, दोनों टीमों की नजर उस एक पॉइंट पे नहीं होगी जो बारिश की वजह से मिलेगा, शायद उस पे होगी जो बारिश की वजह से उनको गंवाना पड़ेगा। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने कल पंजाब किंग्स को 33 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट।
2: हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर 200 रन का आंकड़ा पार किया और निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने 21 गेंद पर 54 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 13 गेंद में 35 और ट्रेविस हेड ने 19 गेंद में 38 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन ने 32 गेंद में 55 रन और हेनरिक लासिन ने 43 गेंद में सर्वाधिक 69 रन का योगदान दिया। 236 रन के जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही। पंजाब के दोनों सलामी बल्लेबाज केवल 4 रन पर पेविलियन लौट गए। इसके

0: बाद कूपर कॉनली ने एक तरफ से मोर्चा संभाला, लेकिन उन्हें किसी खिलाड़ी का ज्यादा साथ नहीं मिल सका और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। कॉनली 59 गेंद में शानदार 107 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन अपनी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से शिवांग कुमार और पैट कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तालिका में शीर्ष पर चल रही पंजाब की लगातार तीसरी हार थी, इसके कारण वो दूसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि 11 में से 7 मैच जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद 2 स्थान की छलांग के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: जब हैदराबाद के बल्लेबाज मैदान पे उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि 120 गेंदे नहीं, कुछ गेंदे उनको ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि 10 या 11 मैचों में आपने 7 बार 200 का आंकड़ा पार किया। कल वापस वही हुआ, विकेट आपके 3-4 से अधिक गिरते नहीं है, तो ये मजबूती भी है और शायद कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि कहीं गलती से आपका टॉप ऑर्डर कहीं क्रैश होता है तो आने वाले समय में क्या होगा।
2: इस बार का आईपीएल बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है शक्ति, इस लिहाज से जैसे मैंने टीमों के नाम लिए जो बड़े नामचीन टीमें हैं, मल्टीपल टाइम्स चैंपियन हैं, अब उसमें भी हमको ये देखना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑफकोर्स उसके बेसिस पर ही कि सीएसके जो है वो वापसी कर रही है। तो चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम जो कि सफलता का पर्याय मानी जाती थी वो वापसी करने की कोशिश कर रही है। जो टीमें जिनमें बड़े महंगे महंगे खिलाड़ी हैं, कागज पर बहुत भारी भरकम है, वो टीमें थोड़ी पिछड़ गई हैं इस बार। और पंजाब जो कि बहुत लंबे समय से टाइटल तलाशते दिख रहे थे और हर बार कोशिश की उन्होंने, इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आप देखें क्रिकेट की वही बात है, अनिश्चितता वाली बात होती है, लगातार 3 बार हार गए। सनराइजर्स हैदराबाद तो वो टीम है, हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया है कि 270 प्लस के स्कोर उन्होंने 3 या 4 बार किए हैं। आईपीएल में जो टॉप 10 हाईएस्ट स्कोर आप निकालेंगे उनमें सनराइजर्स हैदराबाद के नाम पर 3 या 4 हैं। तो उनकी बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा, आई मीन अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी ओर से आ रहा है। और लेकिन कल का मैच जो था वो खास एक और लिहाज से भी था। हम कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और कल काफी संख्या में बड़ी दरियालीदी दिखाई गई, कैचेस छोड़े गए। तो जाहिर सी बात है कि जो टीम इस मामले में दरिया दिल होती है कैच छोड़ने के मामले में, उससे जीत अगर उसका वर्ण कर ले तो फिर उसे भी चमत्कार ही कहा जाएगा। तो कल पंजाब की हार में वो भी एक कंट्रीब्यूशन रहा।
1: जी बिल्कुल, एक बड़ा फैक्टर पंजाब की फील्डिंग में कल जो कमियां नजर आई उसको माना जा सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में आज भारत ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया।
3: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में एक बड़ा उलटफेर करते हुए 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर विश्व कप में देश का पदक पक्का किया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत की महिला टीम ने ली युंजी, ओह येजीन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कोंग चाइयंग की कोरियाई टीम को 5-1 से हराकर रविवार को चीन के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। इस बीच ओजस और अदिति चंद स्वामी की संयुक्त मिक्स्ड टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अंकिता और धीरज की रिकर्व मिक्स्ड टीम भी करीबी मुकाबले में हार गई। धीरज बोम्मा देवरा, तरुणदीप राय और यशदीप संजय भोगे की पुरुष टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। ओजस प्रवीण देवताले, साहिल राजेश जाधव और कुशल दलाल की भारतीय कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल में अमरीका से और ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन से हार गई। अदिति प्रगति और ज्योति सुरेखा वेन्नम की महिला तिकड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत गहरी राहत की सांस ली होगी इस टीम ने, वो यहां से स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक वो अलग बात है, लेकिन इस मैच ने इस टीम को जो दिया होगा वो शायद
2: डेफिनेटली एक्चुअली इसमें इतने सारे जो रिजल्ट्स आए, हमने जया की रिपोर्ट में सुना भी कि काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रहे हैं, और जितने भी नाम जया की रिपोर्ट में आए हैं वो सारे के सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीतने की काबिलियत रखते हैं और जिन्होंने वर्ल्ड कप के अलग अलग एडिशंस में मेडल जीते भी हैं, चाहे वो एशियन लेवल के चैंपियनशिप्स हों या फिर वर्ल्ड लेवल की। लेकिन कोरिया या चीन, सिंगापुर, इवन यूरोपियन कंट्रीज, कोरिया तो बिल्कुल एक महाशक्ति माना जाता है आर्चरी में, तीरंदाजी में, और 10 बार की ओलंपिक चैंपियन, आई मीन मुझे लगता है कि ये एक टीम के परफॉर्मेंस की बात होगी कि ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जो कोरिया की टीम ने 10 मेडल जीते हैं, लेकिन ये जो टीम थी जिसको हराया

0: गया है। दीपिका वहां पर सबसे भारत की अनुभवी तीरंदाज हैं। जब भी भारतीय महिला तीरंदाजी की बात होगी तो दीपिका का नाम लिए बिना तो वो पूरी हो ही नहीं सकती। सिर्फ ओलंपिक का एक मेडल है जो उनके पास नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, यही कहा जा सकता है। खेल में बहुत बार होता है कितने दूर कितने पास वाली बातें, सो नियर येट सो फार, इतनी बार होता रहता है। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आज कोरिया को भारतीय टीम ने कोरिया पर जीत दर्ज की है प्रभावशाली अंदाज में, चीन अगेन, चाइना इज अ पोटेंट फोर्स, दे आर अ फोर्स टू रेकन विद आर्चरी में, और भारतीय टीम कोई भी मेडल जीते, कमेंडेबल परफॉर्मेंस है इस तिकड़ी का।
1: जी बिल्कुल, एक शानदार परफॉर्मेंस, और उम्मीद होगी कि रविवार को यह टीम अपनी चमक को स्वर्ण पदक के साथ और बढ़ाती हुई नजर आए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि खेलों में भारत का भविष्य खिलाड़ियों, संघों और सरकार के बीच मजबूत समन्वय पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल संघ सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सम्मेलन राष्ट्रमंडल खेल 2026, एशियाई खेल 2026 और 2028 में होने वाले ओलंपिक सहित आगामी वैश्विक खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों की दिशा में एक समन्वित कदम है। उन्होंने जागरूकता, शिक्षा और सख्त कानूनी उपायों द्वारा भारतीय खेल व्यवस्था से डोपिंग खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो डोपिंग की चुनौती हर वो देश जो खेल के क्षेत्र में उभर रहा होता है उसको झेलनी पड़ती है।
0: जी, उभर रहा होता है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, श्रीनगर में अभी मीटिंग हुई थी, आज यहाँ दिल्ली में मीटिंग चल रही है, और इसमें अलग अलग बातें जो हैं, क्योंकि आगे जाकर के भारत एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स को तो होस्ट करने वाला ही है 2030 में, उसके अलावा बिडिंग एशियन गेम्स के लिए और निगाहें ओलंपिक्स की ओर भी हैं, और ओलंपिक्स के खास तौर पर, हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ में या एशियाई खेलों में वो जो मानक है वो थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि डोपिंग के मानक तो हर जगह वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हिसाब से चलते हैं, और उसके लिए आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, अल्ट्रा मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एथलीट जब पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं हमें ये पता ही नहीं था कि ये ड्रग या ये सब्सटेंस बैंड है। तो जागरूकता अगेन बहुत ही जरूरी है, इस बात के बावजूद कि हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर चल रहे हैं, तो जब सुपर हाईवे पर चल रहे हैं तो हमें यह भी पता है कि ये चीज खराब है, और ये भी पता है कि उसको मास्क कैसे करते हैं, यानी छुपाते कैसे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो, और ये जो सरकार की पहल है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सभी जो खेल संघ हैं उनकी भूमिका किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, किसी भी मेगा इवेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगले, हम 2026 में हैं, इस साल तो दो बड़े इवेंट हैं, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, 28 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हैं, 2030 में हमारे यहां राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो अगले 4-6 साल भारतीय खेलों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चाहे आप इवेंट होस्ट करने के पॉइंट से बात करें, लेकिन होस्ट करेंगे तो केवल इसलिए नहीं कि मेजबान बनेंगे,
1: जी बिल्कुल,
0: फिर तो ये भी होगा ना कि हम मेडल टैली में ऊपर जाएं,
1: ऊपर आए हमारी महत्वाकांक्षा,
0: और उसका हमें कुछ फायदा मिले, तैयारी बेहतरीन हो, तो उस लिहाज से जो भी पहल हो रही है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है।
1: स्क्वाश पीएसए विश्व चैंपियनशिप कल से 16 मई तक मिस्र के गीत। आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है। यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि खेल के मैदान पर खिलाड़ियों के अटूट समर्पण, मजबूत जज्बे और घड़ी की सुई को एक एक सेकंड के अंतर में बांध देने का प्रतीक है। आज हमें याद करना चाहिए उन तमाम दिग्गजों को, शिवेंद्र, उन भारतीय एथलीटों को जिनकी उपलब्धियों ने, जिनके मेडलों ने, उन रिकॉर्ड्स ने, सफलताओं की बदौलत विश्व एथलेटिक्स में भारत की एक शानदार छाप छोड़ी है। चाहे वो 400 मीटर के ट्रैक पर बाधाओं को पार करती पीटी ऊषा की रफ्तार हो, या रिकॉर्ड को ध्वस्त करती अंजू बॉबी जॉर्ज की वो छलांगे हों, और राष्ट्रमंडल खेलों में एशियन गेम्स तक मेडल की छड़ी लगा देने वाले भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, किस तरह उन्होंने वो विश्व स्थापित रिकॉर्ड किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं खिलाड़ी, और जब एथलेटिक्स की बात होती है इस दशक में, इस सदी में, तो एक नाम होता है नीरज चोपड़ा, जिनके भाले की दूरी ये तय करती है कि भारत में कितने और ऐसे युवा बनेंगे, कितने और किशोर जेना बनेंगे।
2: पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर, और वो आया है टोक्यो 2020 में, वो लाजवाब थ्रो भारत को गोल्ड मेडल दिलाता हुआ, खुशी पूरा भारत जाहिर करता हुआ, नीरज चोपड़ा, ये पल यादगार बना दिया है आपने भारतीय इतिहास में।
1: इन ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में थोड़ी सी कमी झलकती है भारत के मेडलों की संख्या में, कैसे बढ़ते हुए देखेंगे?
0: देखिए अभी तो इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, सूरत हाल बदली है, बहुत ज्यादा बदली है मैं कहूंगा, और ऑफकोर्स वही जब आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बारे में आप अपने बारे में कहते हैं।

0: मेरा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो 1, 2, 3, 4 हो रहा है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं उनका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो 1, 4, 16 के हिसाब से हो रहा है। कम्पीट कभी भी, कॉम्पिटिशन कभी भी आसान नहीं है। नीरज चोपड़ा की जो कामयाबी है, हमारे अन्य एथलीट्स की जो कामयाबी है, भले ही पीटी उषा मेडल नहीं जीती, शी इज अ लेजेंड, भले ही मिल्खा सिंह मेडल नहीं जीते ओलंपिक्स में, आई मीन ही इज अ लेजेंड, और इसलिए हमें आज एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए गर्व होना चाहिए, और उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उसके लिए उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए, और हमें इसी के साथ अनुमति दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
3: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
4: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
2: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
5: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
2: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
5: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है, और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
2: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने

0: के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

0: beating South Korea in semi-final at Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. On the first anniversary of Operation Sindoor, now we bring you a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces.
3: On the intervening night of 6th and 7th May 2025, when the world was sleeping, Pakistan was jolted out of sleep and caught off guard. The skies roared and the missiles screeched over the terror camps of Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. For 22 minutes, the sky was lit by the commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
4: ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
5: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
3: 100 terrorists were killed in the strike. Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashvani as well.
6: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
7: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post-midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
8: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
9: Indian Army carries out military operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
3: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
10: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
3: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
11: "हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से तटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावल पिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
3: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pahalgam attack. On April 22nd, terror struck Pahalgam. पाकिस्तान

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाए, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी और इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
2: ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक कम पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो हैं, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है। और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा
1: जी और एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
2: इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन दी जाएगी इसमें ये कवरेज होगा उसका।

0: ये एयरलाइन के लिए है, और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं, 7 करोड़ कंपनियां जो हैं, उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल की मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस ना देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी। इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा
1: जी।
0: उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है, खजाने में कितनी बहुत बड़े क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा, और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा 2 साल का मॉरेटोरियम, जो विमानन कंपनी की होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है, तो मैं समझता हूँ कितने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है, इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की, निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
1: जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य जी, कि जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन, समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
0: देखिए, मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनियों को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जब उनकी अवधि बढ़ जाती है, जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम, उसका मतलब 1 साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए, आप उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं, क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पे रूट्स बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है, तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है?
0: जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा। जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी एटीएफ की प्राइस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनी को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूँ इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खासतौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है उससे जुड़े तमाम सेक्टर हैं जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
0: देखिए ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग हैं, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
0: मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतर्देशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा, पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
1: और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
0: मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को और विमानन कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को और कंपनी को 5 साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1,500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूँ कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चलता सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
1: बिल्कुल भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। यह पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख का ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था। इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यमग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार का नंबर प्लेट इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में AICC अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सिकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्वकप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक क्रूज जहाज से जुड़े हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि की। कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज राष्ट्र ने सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत का मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि अतीत में दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दुबई के भारतीय व्यापार समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अमीरात में एक सदी से अधिक के इतिहास वाले पारिवारिक व्यापारिक उद्यम को शहर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया है। अंकल्स शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के प्रबंध निदेशक दीपक भाटिया को सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र इकाई श्रेणी के अंतर्गत अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग की स्थापना 1922 में दिवंगत उत्तम चंद भाटिया ने की थी। ये संयुक्त अरब अमीरात के सबसे पुराने भारतीय मूल के उद्यमों में से एक है। ये सम्मान दुबई के व्यापार, निर्माण क्षेत्र, विरासत संरक्षण और सामुदायिक विकास में 100 से अधिक वर्षों के योगदान को दर्शाता है। अर्थ दुबई पुरस्कार अमीरात के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों, परिवारों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने शहर की पहचान, ज्ञान, विरासत और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की उपस्थिति में प्रदान किया। विश्व दर्पण के लिए दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ प्रियंका अरोड़ा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर है, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। यह संक्रमण क्रूज जहाज MV हॉन्डियस से जुड़ा है। जहाज के कुछ यात्री दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर उतरे थे। WHO ने उन 12 देशों को सूचित कर दिया है जिनके नागरिक इस जहाज में सवार थे। इनमें कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमरीका समेत अन्य देश शामिल हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि अगर सुरक्षा के उपाय तेजी से लागू किए गए तो इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसराइल ने आज कहा है कि उसने लबनान के नबाती क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक ठिकाने पर हमला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइल की वायुसेना IAF ने कहा कि दक्षिणी लबनान में आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह के लगभग 20 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। एक रिपोर्ट।
5: सेना ने बताया कि इसराइल के रक्षा बल इसराइल के नागरिकों के लिए खतरों को दूर करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। IAF ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते की शुरुआत से लेकर अब तक इसराइल के रक्षा बलों और इसराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले हिजबुल्लाह आतंकी गुट के 220 से अधिक आतंकवादियों और कमांडरों को मार गिराया गया है। IAF ने कहा कि बेरूत के दहीये में एक सटीक हमले में वायुसेना ने हिजबुल्लाह आतंकवादी गुट की रादवान फोर्स इकाई के कमांडर को मार गिराया। इसराइल की सेना ने एक बयान में कहा कि आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के मद्देनजर सेना उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए विवश है। इसराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के 3 नए क्षेत्रों में लेबनान के निवासियों को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने का आदेश दिया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेटिकन में 14वें पोप लियो से मुलाकात की और पश्चिम एशिया की स्थिति के साथ साथ पश्चिमी गोलार्ध में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के अनुसार इस बैठक ने अमेरिका और 14वें पोप लियो के बीच मजबूत संबंधों और शांति तथा मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। भारत और वियतनाम ने आज उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और अनुसंधान और स्टार्टअप में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वू हाई क्वान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा ढांचे, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर विचार विमर्श किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए मौजूदा विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक क्रूज जहाज से जुड़े हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि की। कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ये रात की खामोशी कोई कहानी सी कह रही है, कहानी दिन भर की जद्दोजहद की, कहानी भूली बिसरी यादों की, और उन यादों में है हर सिंगार की महक, और उस महक में है मोहब्बत के गीत जिसे दिल गुनगुनाना चाहता है। आइए सुने, फिलहाल मेरे पास आपके लिए बेहद प्यारा गीत है फिल्म हाथी मेरे साथी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुने।

दिल की ये उम्मीद कि हंसते खेलते ये जिंदगानी गुजर जाए, ख्वाबों के परों पर सवार होकर ये जिंदगी मोहब्बत के आसमान पर यूं ही परवाज भरती रहे, तुम्हारी पलकों की रूपहली छांव तले मेरी चाहतों के पंछी गीत गाते रहे, तुम्हारे मुखड़े का चांद मेरी जिंदगी को रोशन करता रहे, कुछ इस तरह से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर श्रृंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। शहर दिल्ली की रात और अलसाई से दिल के हालात, कुछ आवारा से ख्याल। अगर आपको भी ऐसे में नींद नहीं आ रही है तो किसी के ख्याल अगर आपका भी रास्ता रोक कर बैठे हैं तो आइए जुड़ जाइए हमारे यानी एफएम गोल्ड के साथ और हम मिलकर इन यादों को जीते हैं। वैसे ख्यालों में महकती किसी की याद की खुशबू बेचैन बहुत करती है ना। किसी ने यादों को शिद्दत से महसूस किया और क्या खूब लिखा है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। बैठकर साया ए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी इंदु पांडे। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces have fitting response

0: अजियो
1: अजियो, हमने तो पहचान लिया आपको। अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। जो लोग हम ख्याल न थे हम सफर हुए। एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है हमराही, हम और आप एक राह।

अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम कहें नहीं और आपने सुन लिया, तो आप क्या कहेंगे? हर एक बात के यूं तो दिए जवाब बहुत सारे, जो खास बात थी हर बार हंस के टाल दिया। ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई तारीफ करने पर आ ही जाए, तब क्या होगा? सोच के बताइए।

और तारीफ से जो शुरुआत शुरू होती है वो कहाँ तक जाती है इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन हाँ ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। ये और बात है कि कई बार हमें साथ चलते हुए एक राह पे जिसे हम और तुम जब मिले तो हमराही बने, तो शहर दर शहर फिरते रहे, रास्ते घर नहीं जाने देते, आगे दुनिया नहीं जाने देती, पीछे बहुत सारे मंजर हैं वो नहीं आने देते। शाम आती है मगर हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, कई बार उलट देते हैं पैमाने दिल के, न जाने क्यों उसे भर के हम फिर से नहीं जाने देते। देखिए जनाब, ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है जिसमें बहुत सारी चीजें उलट उलट के हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम रात की साई में ही पहचानना या फिर याद करना मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ तो है जो जादू की तरह लगता है हमारे आसपास।

मौसम अगर मन का अच्छा हो, बाहर का अच्छा हो, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं और हर चीज अच्छी लगने लगती है। उसी में अगर रात का जिक्र हो तो फिर और भी बात बन जाती है। इसीलिए कहा गया है ना कि हमारे जो अंदर का मन है वो बाहर कई बार आने में संकोच करता है, और जब आता है तो फिर बात वहीं से शुरू होती है। लेकिन कई बार रात की जब बात आती है तो ख्वाब अपने आप चले आते हैं, और ख्वाब ऐसे कि टूटते ही नहीं। ख्वाब ताबीर में ढला ही नहीं, वो दरीचा अभी खुला ही नहीं। खाक पर रह गए हैं नक्शे कदम, और मुसाफिर का कुछ पता ही नहीं। तब आप क्या कहेंगे? यही

अच्छा, सच सच बताइए कि मोहब्बत में जब हम होते हैं तो क्या बार बार हमें मोहब्बत है बोलने की जरूरत पड़ती है? दोनों जवाब हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि हाँ और कोई कह सकता है कि हाँ नहीं भी, लेकिन हमें यकीन नहीं है कई बार अपनी रंगत पे, और कई बार कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनको हम मायने तो जानते हैं लेकिन न जाने क्यों बार बार उनको सुनने का मन करता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ, कभी आपने फील किया इस बात को?

न जाने क्यों मोहब्बत में कहां से ये चांद तारे शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी देखा है किसी ने जिक्र किया हो सूरज का? नहीं ना। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है इन चांद सितारों में, ऐसी शीतलता है, ठंडक है कि जब भी मोहब्बत की बात होगी तो इनका जिक्र अपने आप आ जाएगा। तुम मिले जो मुझे जिंदगी तो ऐसा लगा कि झूमने गाने लगे और गुनगुनाने लगे और फिर अर्थ जीने के हमें मिल गए। पर कई बार ये भी हम कह सकते हैं कि वो खुशी होती है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत दिनों तक रहे तभी अच्छा है। एक हल्का सा फिक्र होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गायब हो जाएगी या ये भी चली जाएगी, और इसी उधेड़ बुन में हम सब लगे रहते हैं और शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

शुक्रिया। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:38 और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम राही हैं आपके साथ। ये है हमराही। हमराही मतलब राहें हमारी एक हैं और हम और तुम जब मिले तो फिर रास्ते भी शायद एक ही हो जाएंगे, और जब कोई मिल जाए तो फिर वो रास्ता कितना ही सुनसान क्यों ना हो, बड़े आराम से कट जाता है। वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ सफ़र। और सही मायनों में देखा जाए तो जो रास्ते होते हैं, जो हम सफ़र हम साथ चल रहे होते हैं हमराही, वही मेन होता है। मंजिल का मतलब मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे कहानी हो सकता है कि शायद दूसरी मोड़ पे आ जाए,

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

सपनों वाली रात लिए। अगर रात है और सपने ना हो तब हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, क्या कभी ये ख्याल भी आता है? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, जो इंतजार है कोई जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ ये हसीन ख्याल है।

हाँ, मुझे उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है। वही लोग जो अक्सर हमें याद आए और उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी वो बात नहीं हुई,

कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इस इंतजार में बैठे हैं हम उनकी महफिल में कि वो निगाह उठाएं तो हम सलाम करें। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जो बात आंखों आंखों में इशारों में हो जाए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जबान ने कुछ कहा नहीं और समझ में सब कुछ आ गया।

अब इसी बात पे अगर हम ये कहें कि बात हक है तो फिर कबूल करो, ये न देखो कि कौन कहता है। चले थे जिस तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ, लेकिन वो वादे, वो बातें, वो सारी की सारी चीजें हमने कहीं न कहीं अपने पास गांठ बांध के रख ली है। वो इसलिए कि जब हम चाहें उस पोटली को खोलेंगे और खोलने के बाद उसमें से एक एक लफ्ज निकाल के और उसको याद करेंगे, फिर यूं न कहना कि हम सिर्फ और सिर्फ रात के हम सफर थे, क्योंकि उसके बाद भी बड़ी सारी उम्मीदें, बड़ी सारी चीजें हमारे साथ साथ चली। हमराही है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

प्यार से बात शुरू हुई और प्यार पे बात खत्म हो गई। लो, बातों बातों में, प्यारी प्यारी बातों में वक्त भी पता नहीं कैसे चला गया। 4 बजने को है और अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी

0: में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and the supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's effort in response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valor. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav also honour the valour and sacrifice of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with newly elected BJP MLAs during which the party's legislative leader in West Bengal will be elected. The governor of West Bengal, Arun Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday.

4:11 होने वाले हैं। ये है अरुणिमा। और जैसा कि समय और अरुणिमा दोनों ऐसा लगता है कि बस पौ फट गई और अंधेरा वापस चला।

अब इस बात पे अगर हम ये कह दें कि हम क्या क्या संभालें, क्योंकि कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। इसी बात पे तलत अजीज की ये बड़ी प्यारी सी गजल है, आप भी सुनिए, क्या पता आप ही के दिल का हाल हो ये।

न जाने कितनी बार शुक्रिया और मेहरबानी करते हुए हम सब अपनी अपनी यात्रा में बस चलते चले जा रहे हैं। यात्रा जो रोजमर्रा की जिंदगी से निकाले खुद के लिए कुछ सुकून के पल हैं, और हर इंसान अपनी जिंदगी में यात्रा तो करता ही है। आखिर किसका मन नहीं करता कि फिर से नई उमंग से जीने का, फिर कोई मन में ऐसी चाहत कि हम आकाश में उड़ें, या फिर किसी पंछी की तरह पे जी लगा के ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाएं, है ना। मन भी तो उड़ान भरता है। कई बार मन ये भी कहता है कि सागर की गहराइयों में जाकर के मोती ढूंढ लाएं। कोई पहाड़ की चोटियों पे खुद को तलाशता है, तो कोई जीवन के इस आपाधापी में पगडंडियों पे लड़खड़ाते गिरते फिर से संभलते हुए खुद को खोजता हुआ। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं कि बस चलते रहें, चलते चले जाएं, है ना। और इसी बीच में ये एहसास भी होता है कि ये जो हमारी अपनी अपनी यात्राएं हैं, इसमें हमें जब कोई मिलता है तो कभी हमराही बनता है, हम सफर बनता है, और कई बार यूं भी एहसास होता है कि हाँ, वो शायद रात से शुरू हुआ जो सफर था सुबह तक हमारे साथ चलेगा।

संवार लीजिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:25 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है अरुणिमा। अरुणिमा जो हमें कहती है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि रात को सोते समय दिमाग की जो उलझने थी, जिसने हमें जकड़ के रखा था, शायद सुबह होने तक वो सब उलझने खुद ब खुद सुलझ चुकी होती हैं। सोए रहने के दौरान मन न जाने कहां कहां भटका होगा, लेकिन एक अनजानी दुनिया में इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए फिर से एक सुहानी सुबह पे खड़ा हो जाता है। ये और बात है, क्यों कुछ न कुछ सवाल हमारे जहन में फिर भी अटके रहते हैं, जिनके जवाब अगली पहर हम फिर से ढूंढेंगे, है ना? उन सवालों को ताक पे रख दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है।

जहां वो ख्याल जो था वो कितना हसीन था, और उसके बाद एक और ख्याल, फिर ऐसा लगता है कि हमें ना सोचने की, जो हमें अच्छा लगता है उसको सोचने की आदत पड़ जाती है। और जब भी समय रहता है खाली, तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम वही वाला प्यार प्यार, वही वाला सच सच, या फिर वही वाली कहानी फिर से याद करें, कभी खुली आंखों से तो कभी बंद आंखों।

कई सारी ऐसी धुनें होती हैं जो हमें याद रहती हैं और उन धुन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गाते भी हैं। कई बार लफ्ज याद नहीं रहते, कई बार धुनें भी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है। यूं लगता है कि ये तो कुछ ऐसी चीज है जो बरसों पहले हमारे पास थी, अब अचानक एक बार फिर से हमें याद आई है। 4:32 और ठीक 38 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ये है अरुणिमा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि मन इतनी सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते और इतनी सारी चीज़ें अपने आप से कहते कहते न जाने क्या क्या चीज़ें और भी समेटता चला जाता है और उन गुत्थियों के लिए यही छोड़ता है कि चलो इसको अभी संभाल के रख लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप इसको परेशानी कहिए या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो है जो दिल के करीब है और उसको सुलझाने की हमारी कोशिश रहती है।

मुस्कुराकर मिला करो हमसे। लेकिन ये भी सच है कि होता है असर बातों में, वो भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। ये तो बात आप मानते हैं, पर हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। कभी कभी क्या ये एहसास होता है कि कौन है बेकरार हमारे लिए।

अगर ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और साया बन के उभरती है, और वो ये कि कहीं ये सब चीजें झूठी तो नहीं, एक गलत फहमी तो नहीं, हमारा सिर्फ एक ख्वाब तो नहीं, सिर्फ एक बात तो नहीं। और जैसे ही सुबह होती है, हम उसको फिर से रख देते हैं। चलो आगे आने वाले टाइम में फिर बात करेंगे।

लेकिन कुछ बातें और हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए, वो जिसकी लंबे गेसु है पहचान गए पहचान गए। हाँ साथ हमारे इंशा भी इस घर में थे मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम न लो, इंशा जी सौदाई हैं।

दिन और रात कितनी दूरी है, लेकिन फिर भी लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं। दिन और रात दोनों में कितना अंतर है, लेकिन कुछ न कुछ दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। और जब दोनों मिलते हैं तो शायद कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, जैसे कि गुलाम अली साहब की गजल है।

चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तुम अच्छे लगते हो। और अब बताओ कि तुम कैसे हो। ये ख्याल अपने आप में बड़ा शानदार है। फिलहाल तो बजने वाले हैं 5, समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट

0: कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिवी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The Governor of West Bengal, R.N. Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kabir Guru Rabindranath Tagore. In Keralam, the decision on the Chief Minister will be announced by the Congress High Command in New Delhi after consulting reports submitted by AICC observers. KPCC President Sunny Joseph said a resolution empowering the AICC President to select the Congress Legislative Party leader was unanimously adopted at the Legislative Party meeting held in Thiruvananthapuram yesterday. KPCC President Sunny Joseph said the observers who will return to Delhi will submit their findings to the national leadership of the party. In Assam, the BJP-led NDA government will take oath for a third consecutive term on the 12th of this month. A high-level preparatory meeting regarding the swearing-in ceremony was held in Guwahati yesterday in the presence of senior BJP leaders. Addressing a press conference after the meeting, state BJP President Dilip Saikia informed that the oath-taking ceremony will be held at the Veterinary College playground at Khanpara in Guwahati. He said Prime Minister Narendra Modi will attend the event as the chief guest. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a brainstorming session with officials of Department of Commerce and Department for Promotion of Industry.

भोर सुहानी 5:11 और ठीक 34 सेकंड हो गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और भोर हमेशा सुहानी ही होती है।

सकती है। कभी गौर कीजिएगा, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह इतनी रौनकें लेके आती है कि अपने आप से ही लगता है कि शायद पूरी चारों तरफ जो प्रकृति है वहां से दुआएं निकल रही हैं।

मरम्मत मुकद्दर की कर दो। उफ, कुछ लाइनें इतनी अच्छी होती है ना कि लगता है कि उस लाइनों में इबादत है, और उन लाइनों को पढ़ने के बाद ही यूं एहसास होता है कि जो शायद हमने दुआ मांगी थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे पास हम जो चाहते हैं उसके लिए अल्फाज नहीं होते, और जब वो अल्फाज मिल जाते हैं तब लगता है कि हाँ यही वो वाली बात है। भोर सुहानी है ये।

और इन मधुभरी हवाओं को महसूस करने के लिए सुबह उठना पड़ता है। जी हाँ, और तब जाकर के आपको वो फ्रेशनेस नजर आएगी और एक उत्साह समझ में आएगा कि हाँ आखिर सुबह उठने के लिए इतना जोर क्यों हमेशा से दिया जा रहा है। कुछ तो बात होगी।

ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढने से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती? मिलती है ना। और अगर आशा और विश्वास की बात की जाए तो असल में वो तो मृग तृष्णा है एक तरह से। मतलब हम जितना ढूंढेंगे उतना आगे चले जाएगा, भागते जाएगा, या यूं कहें कि एक मणि है जो हमारे अंदर छुपी हुई है और उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। ध्यान से एक लंबी सांस लेते हुए आराम से बैठिए। सुबह सुबह की जो हवा है, सुबह का जो सूरज है, उसको देखिए। प्रकृति के साथ जितना हो सके उतना तारतम्य बिठा के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, तो आशा और विश्वास दोनों आपके आजू बाजू होंगे और आप महसूस करेंगे इस बात को कि हाँ, ये बात कितनी अच्छी है। भोर सुहानी है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।